श्रोताओं नमस्कार। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज शनिवार है, राष्ट्रीय शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः काल के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। सुबह की 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से कल लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है।
2: अब जैसे जालंधर है, यहाँ की पहचान खेलकूद से है, तो जालंधर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आप आनंदपुर साहब स्टेशन जाएंगे तो वहाँ तख्त श्री केशगढ़ साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर श्री काली मंदिर के दर्शन होंगे। यानी हमारे स्टेशन आप हमारे संस्कृति सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अम्बाला रेल सेवा और अमृत शेरहटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सेवा, उनके जीवन स्तर में सुधार और प्रगति के नए अवसर सृजित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिक देवोभव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। यह सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि यह कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि यह यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। खेलों में हॉकी इंडिया आज से देशभर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ दिलीप तिर्की ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंची। इसके परिणाम स्वरूप क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया, जिससे सिंधु को वॉकओवर मिल गया। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, भारत हमारा महान देश है जहाँ विविधता में एकता की मिसाल मिलती है। यहाँ की संस्कृति, परंपराएं और वीरों का इतिहास हमें गर्व से भर देता है।

श्रोताओ, जलाधिपति वरुण देव समस्त सृष्टि के जीवनाधार एवं पावन जल तत्व के अधिष्ठाता माने गए हैं। उनकी कृपा से नदियां प्रवाहित होती हैं, धरती हरिताभ होती है और जीवन पल्लवित और पुष्पित होता है। तो आइए, इस भक्ति रचना के माध्यम से हम वरुण देव के श्री चरणों में श्रद्धा की पुष्पांजलि अर्पित करें।

श्रोताओं, सच्ची भक्ति का सार यही है कि निष्काम प्रेम, अटूट श्रद्धा और पूर्ण समर्पण से भगवान भी भक्त के वश में हो जाते हैं। भक्त और भगवान का यह दिव्य संबंध प्रेम, विश्वास तथा करुणा का अनुपम संदेश देता है।

श्रोताओ, गुरु नानक देव की दिव्य वाणी, मानवता को अटूट आस्था, अचल धैर्य और लोक मंगल का अमर संदेश देती है। नानक नाम चढ़दी कला, अर्थात प्रभु नाम का स्मरण जीवन में उत्साह, साहस और आत्मबल का अक्षय स्रोत है। आइए नाम सिमरन, सेवा और सद्भाव को अपनाकर सर्वदा भला के पावन आदर्श को चरितार्थ करें।

0: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। इसके अलावा आप हमारे केंद्र को सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। आइए सुनते हैं चिंतन।
1: हर मनुष्य के जीवन में एक अदृश्य पुण्य का दीप जलता है। यह दीप हमारे कर्मों से रोशनी पाता है। दुखियों की सहायता, सेवा और सम्मान इस दीप को जलाए रखते हैं, किंतु जिस घर में माता पिता का आदर होता है वहां यह दीप तेज रोशनी से जगमगाता है, और जहां उपेक्षा होती है वहां यह मंद पड़ जाता है। मरुभूमि के किनारे बसे एक छोटे से गांव में भीलू नाम का युवक रहता था। उसके पिता बूढ़े हो चुके थे और माँ अक्सर बीमार रहती थी। भीलू मेहनती था पर मन में असंतोष भरा रहता था। उसे लगता था कि उसकी गरीबी का कारण माता पिता की कमजोरी है। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने कहा, जिसके घर में पुण्य का दीप प्रज्वलित है उसके मार्ग की बाधाएं स्वयं हटती है। भीलू ने यह बात सुनी पर उसे यह सब अंधविश्वास लगा। समय बीतता गया। भीलू शहर काम की तलाश में चला गया। वहां धन तो मिला पर मन अशांत रहा। माँ पिता गांव में अकेले पड़ गए। एक रात भीलू को स्वप्न आया, उसके घर का दीप बुझ रहा है और अंधेरा फैल रहा है। वह घबरा कर उठा। अगले ही दिन वह गांव लौटा। उसने देखा कि माँ बुखार में तप रही है, पिता लाठी के सहारे कुएं से पानी ला रहे हैं। भीलू का हृदय पिघल गया। उसने पहली बार उनके पैरों को छुआ और बोला, मैं अंधा था, मुझे क्षमा कीजिए। भीलू ने शहर की नौकरी छोड़ दी। वह माता पिता की सेवा करने लगा, दवा लाता, खेत संभालता, रात को उनके पास बैठकर बातें करता। कहते हैं उसी समय गांव में बारिश हुई, सूखी धरती हरी होने लगी। साधु फिर आए और बोले, तेरे पुण्य का दीप जल उठा है। यह कथा गांव वालों के लिए प्रतीक बन गई। कर्म का उजास घर से शुरू होता है। इस लोक कथा का पहला नैतिक संदेश है, कर्म की शुरुआत घर से होती है। हम अक्सर पुण्य को मंदिर, दान या तीर्थ से जोड़ते हैं, पर लोक कथा बताती है कि माता पिता की सेवा स्वयं में सबसे बड़ा पुण्य है। यह सेवा बाहरी दिखावे से नहीं, भीतर की संवेदना से होती है। भीलू ने जब अपने माता पिता को बोझ समझना छोड़ा, तभी उसके जीवन का अंधेरा कम हुआ। दूसरा संदेश, उपेक्षा का अंधेरा। आधुनिक जीवन में वृद्ध माता पिता का अकेलापन एक गंभीर सामाजिक समस्या बन गया है। आर्थिक प्रगति के साथ संवेदनात्मक दूरी बढ़ी है। लोक कथा का बुझता दीप हमें चेतावनी देता है कि उपेक्षा केवल दूसरों को नहीं, हमें भीतर से भी रिक्त कर देती है। संबंधों में अंधेरा फैलने लगे तो बाहरी रोशनी अर्थहीन हो जाती है। तीसरा संदेश, प्रायश्चित और परिवर्तन की संभावना। लोक कथाएं मनुष्य को निराशा में नहीं छोड़ती, वे आश्वासन देती हैं कि परिवर्तन संभव है। भीलू ने गलती समझी और अपने कर्म बदले। नैतिकता का सौंदर्य इसी में है कि मनुष्य

0: अपने आचरण में सुधार कर सके। आज के संदर्भ में यह संदेश महत्वपूर्ण है। यदि हम कभी अपने माता पिता के प्रति असंवेदनशील रहे हों तो आज भी लौटकर संबंधों को संवारा जा सकता है। चौथा संदेश, प्रकृति की नैतिकता का संबंध। कथा में बारिश और हरियाली का आना प्रतीकात्मक है। जब घर में करुणा लौटती है, जीवन में समृद्धि लौटती है। यह अंधविश्वास नहीं, मनोवैज्ञानिक सत्य है। परिवार में प्रेम होगा तो मन शांत होगा। शांत मन बेहतर निर्णय लेता है। बेहतर निर्णय जीवन की दशा सुधारते हैं। लोक कथा इस सत्य को प्रकृति के रूपक में कहती है। पांचवा संदेश, सफलता का मापदंड। भीलू शहर में धन कमा रहा था पर भीतर से खाली था। गांव लौटकर उसने सेवा को चुना, तब उसे संतोष मिला। यह हमें सफलता की परिभाषा पर पुनर्विचार करने को प्रेरित करता है। केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं, संबंधों की गरिमा और मन की शांति भी सफलता का अंग है। माता पिता के प्रति आदर, सेवा और कृतज्ञता हमारे जीवन को भीतर से प्रकाशित करती है। यह दीप जब जलता है तो बाहरी उपलब्धियां अर्थपूर्ण बनती हैं। लोक कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि पहले घर उजाला करो, तभी दुनिया रोशन लगेगी।
1: आप सुन रही थी चिंतन, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। खेती की बातें, आइए इसके अंतर्गत सुनते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी। वाचक स्वर संध्या कोठारी।
2: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती की अगर बात करा तो सभी दूर प्राकृतिक खेती को बोलबालो छे। अने भाई हूँ क्यों नहीं होनू भी चाहिए, आप सब नक मालूम छे कि हम जो रासायनिक खाद न रासायनिक दवाई न कुछ छिड़काव करी रहा, ये सब चीज़ न हम खाई रहा है। देखो इतनी बड़ी बड़ी जान लेवा बीमारी न हुई रही, तो एक बचावना का लेन हमको बचना का लेन, देखो फिर से हमको प्राकृतिक खेती का तरफ चलना पड़ेगा। अब प्राकृतिक खेती सबसे बड़ी बात यह है भाई हूँ कि वो काम लागत हमको कहीं भी नहीं लगने वाली है। तो जो भी उगोगो, जो हमारो अनाज उगोगो, वो हमको ये समझो कि अपना खेती अपना आप हमको देगी। थोड़ा बहुत हमको काम जरूर करना पड़ेगा, पुराना जमाना में मेहनत करता था, लेकिन हमको शुद्ध अन्न दाल चावल हमारा गेहूँ सब हम खाता था। और हमारा देखो बूढ़ा ठाड़ा मनुष्य जो है बहुत अच्छी लंबी आयु अच्छी स्वस्थ हुई न जीवता था, यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन आजकल का ही हो गए कि बहुत सारी परेशानी न, बड़ी बड़ी जानलेवा बीमारी न, कि भाई जिनको नाम लेने से भी हमको डर लगे और नाम अगर कभी लेवा तो भी घबराहट आने लगी जाए कि भाई भगवान करे कभी दुश्मन कभी ऐसी बीमारी नहीं होए। तो भाई हूँ प्राकृतिक खेती की हम आपसे बात नहीं कर रही थी, प्राकृतिक खेती करा वो काम का है जो संसाधन है वो भी हमको प्रकृति देगी। जैसा कि जो हमको बीज बावना वो भी जो प्राकृतिक रूप से जो हमारा उगाया हुआ बीज है और ओका मसी जो रखे लो अनाज है वो जज बीज होएगो। और ये बीज भी हमारा कई जगह उपलब्ध है, अगर हम जानकारी लेवा तो हमको मिल ही जाएगा। साथ में हमको जब हमारा जो बीज बोवागा वो खाद भी लगे, तो खाद का लेन भी हम जो हमारा किसान भाई है वो पशुधन जैसे पुराना जमाना से पालता आ रहा है कि हमारा खेती में निकले लो अवशेष क्षेत्रों रहे कि हम हमारा किसान जो छे वो पशु न का पाली सकन। तो पशु पाला और सबसे बड़ी बात छे हमारी देसी गाय। देसी गाय को जो गोबर छे वो काम इतना पोषक तत्व रहे कि वो हमारा खेती का लेन पर्याप्त रहे। अगर देसी गाय को गोबर मिली जाए, मलमूत्र मिली जाए, मूत्र जो हमारो गाय न को भैंसी न को हमारा घर में जो छे छिलका निकल सब्जी ना का छिलका छे खानों को सामान कुछ कुछ बचेल रहे इन सब का हम मिले ना। और जो खाद बनावन उना खाद का अगर हम हमारा प्राकृतिक खेती कराना उमर डाला तो देखो हमको बाजार बिल्कुल नहीं जानो है कि हमका खाद लेना जानो। यो हमारो घर को खाद और यो घर को खाद ज हमका हमारी खेती में डालनो और देखो वो उत्पादन हमका करनो। साथ में जब हमको दवाई रखो कहीं को काम पड़ तो गौमूत्र एक ऐसो छे कि इल्ली कीट कीड़ा सब नक मार दे, हम अगर गौमूत्र को छिड़काव कर देवांगा तो भी हमारा जो पत्ता छे वो बिल्कुल बढ़िया अच्छा और रोग रहित रहेगा।

श्री राम अवतार की कई कथाओं में एक कथा आदि पुरुष मनु तथा उनकी पत्नी शत्रुपा से संबंधित है, जिन्हें प्रभु ने एक अद्भुत वरदान दिया था। हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के फलस्वरूप मनु को भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। भक्त ने भगवान से अपनी मनोकामना प्रकट करते हुए उनके चरणों में ऐसी प्रीति मांगी जैसी पिता के हृदय में पुत्र के लिए होती है। उन्हें ये वांछित वरदान मिला। वर देते हुए श्री हरि ने कहा, स्वर्ग के बहुत से सुख भोग कर कुछ काल बीत जाने पर आप अवध के राजा होंगे और तब मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। एक अन्य कथा राजा प्रताप भानु की है। उसके दो पुत्र हुए, प्रताप भानु और अरिमर्दन। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु को राज्य सौंपकर भगवत भजन के लिए वन की राह ली।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग रविंद्र साठे के स्वर में, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। कार्यक्रम विवरण में आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद यानी प्रादेशिक समाचारों के ठीक बाद 7:20 से आप सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे 8:30 से। 9:00 लोक संगीत में सुनेंगे आप नारायण लाल सिसोदिया के गाए लोकगीत। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ ये कार्यक्रम होगा 9:10 पर। शास्त्रीय संगीत में 9:40 पर हम आपको सुनवाएंगे विदुषी कल्पना झोकरकर का शास्त्रीय गायन। राग होगा सालग वराली तोड़ी। जिले की चिट्ठी सुनते हैं आप 10:00 रिले होती है आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। 10:05 पर आप सुनते हैं श्रोताओं की पसंद के फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। दिन में 11:00 से लेकर दोपहर 3:00 तक के कार्यक्रम रिले करेंगे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, जिनका विवरण इस प्रकार है। दिन में 11:00 होगा फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। इस घंटे की खास खबरें आप सुनेंगे दिन में 11:58, दोपहर 12:58 और दोपहर 2:58 पर। फिल्म संगीत सुनिए दोपहर 12:00 संग्रहालय से। यह कार्यक्रम होता है दिन में 12:30 पर। महिला कार्यक्रम सुनते हैं आप दोपहर 1:00। लोक संगीत 1:30 पर। 1:45 से सुनते हैं आप सुगम संगीत और 2:00 और 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। हमारी सांध्यकालीन सभा का आरंभ होता है युवावाणी कार्यक्रम के साथ और आज के इस कार्यक्रम में क्रम होगा फोन इन प्रोग्राम हेलो फ्रेंड्स। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 5:45 पर। शाम 6:00 हम आपको सुनाएंगे विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे विजन 2047 में शिक्षा की भूमिका। इसके अलावा भेंट वार्ता श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती ममता चंद्रशेखर से युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए योजनाओं पर विशेष चर्चा। इसी कार्यक्रम में योजना के अंतर्गत आप सुनेंगे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। शाम 6:30 पर सुगम संगीत में हम आपको सुनवाएंगे अखलाक वारसी को। 6:45 से लोक संगीत में आप सुनेंगे इंदर सिंह चौधरी और साथियों के गाए लोकगीत। खेती गृहस्थी ये कार्यक्रम होता है शाम 7:20 पर। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता प्राकृतिक खेती कैसे करें, दुर्गा शंकर बारचे से संध्या कोठारी की बातचीत।

0: सुर्खियों में ये कार्यक्रम रिले होगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रात्रि 8 बजे। दिल ने फिर याद किया, ये कार्यक्रम होता है रात्रि 8:15 पर। चित्रगीत हम आपको सुनाएंगे रात्रि 9:15 पर। और राष्ट्रीय चित्र पत्रिका चित्र भारती रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 9:30 पर। दिल्ली केंद्र से ही रिले होगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, समय होगा रात्रि 10 बजे। हम आपको फिर याद दिला दें, शाम 6 बजे आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंटवार्ता श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती ममता चंद्रशेखर से युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए योजनाओं पर विशेष चर्चा। कार्यक्रम विवरण में आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः सायंकाले पंजाबस्य जालंधर नगरात् आभासीय माध्यमेन देशस्य 20 राज्येषु पुनर्विकसितानां 75 रेलस्थानकानां उद्घाटनम् अकरोत्। एतेषां स्थानकानां अमृत भारत स्थानक योजनायाः अन्तर्गतम् आधुनिकीकरणं जातम्। एषा योजना विश्वस्य बृहत्तमासु स्थानक पुनर्विकास योजनासु अन्यतमा अस्ति। प्रायः 70.5 लाख कोटि रूप्यकाणां व्ययेन विकसितानि एतानि स्थानकानि यात्री सौविध्यैः समलंकृतानि सन्ति। पुनर्विकसितेषु स्थानकेषु पंजाबस्य जालंधर कैंट SAS नगरम, श्री मुक्तसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब इत्येतेषां स्थानकानां समावेशः अस्ति। तदतिरिक्तं गुजरात ओडिशा दक्षिण रेल क्षेत्राणां अनेकानि स्थानकानि अपि अत्र सम्मिलितानि सन्ति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री करटोली अम्बाला रेलसेवां अमृतसर वाराणसी संत रविदास एक्सप्रेस चेत्येताभ्यां हरितध्वजं प्रदर्शितवान्। ह्यः जालंधरे प्रधानमंत्रिणा लोकार्पितानि राष्ट्राय समर्पितानि च एतानि पुनर्विकसितानि स्थानकानि एते द्वे रेलसेवे च रेलमार्गावसंरचना परियोजनानां भागाः सन्ति। एतासां परियोजनानां व्ययः 70.5 लाख अस्ति। अवसरेस्मिन् प्रधानमंत्री अवदत् यत् 75 पुनर्विकसित रेलस्थानकानां उद्घाटनं भारतीय रेल विभागस्य विगतेषु कतिपय वर्षेषु अभवत्, तीव्र परिवर्तनस्य द्योतकं च अस्ति।

0: जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना। और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: पूर्वान्ये एव प्रधानमंत्री हरियाणा राज्यस्य जिंद रेल स्थानकात् भारतस्य प्रथमाय हाइड्रोजन इत्यनेन चालित रेलयानाय अपि हरित ध्वजं प्रदर्शितवान्। एतत् रेलयानं जिंद सोनीपत रेल स्थानकयोः मध्ये संचरिष्यति। अथ एकोन नवति किलोमीटर मिता दूरता प्रायः द्विहोरायां पूर्णं करिष्यति।

0: वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ह्यः एस्टोनिया देशस्य राजधान्यां ताल्लिन नगरे तत्रत्य विदेशमन्त्रिणा मार्गुत साह्यकना इत्यनेन सह मेलनं विहितवान्। उभाभ्याम नेतृभ्याम भारत एस्टोनिया देशयोः मध्ये व्यापार निवेश अंकिकीय परिवर्तन साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी चेत्येषु क्षेत्रेषु सहयोगस्य सुदृढीकरण विषये विचार विमर्श कृतः। अनन्तरं साह्यकना इत्यस्य उपस्थितौ मन्त्रिणा भारत एस्टोनिया व्यापार मञ्चम् अपि अभिसंबोधितम्। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः गतरात्रौ पश्चिम बंगाल राज्यस्य त्रिदिवसीयायां यात्रायां सिलिगुड़ी इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। सिलिगुड़ी नगरस्य बागडोगरा विमानस्थानके आगमनावधौ पश्चिम बंगालस्य मुख्यमन्त्रिणा सुवेन्दु अधिकारिणा तस्य स्वागतं विहितम्। श्रीशाहः अद्य जुमागाछ नगरस्य सीमाचौकी इत्यत्र वीएसएफ इत्यस्य 18वां बटालियन इत्यस्य भ्रमणं करिष्यति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतीय क्रीडिका तथा द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री पीवी सिंधुः अद्य प्रातः टोक्यो नगरे जापान ओपन क्रीडायाः महिला एकलस्य उपांत्य चक्रीय स्पर्धायां चीन देशस्य चेन युफेई सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अम्बाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
2: हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय से पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौत की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया है। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन यूफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची हैं। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्स पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। श्रोताओं, हम आपको बता दें अब से कुछ ही देर बाद यानी प्रादेशिक समाचारों के ठीक बाद 7:20 से आप सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल। 9:10 से हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। 10:05 से सुनते हैं आप श्रोताओं की पसंद के फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। और इस कार्यक्रम में आप भी हमें फोन करके अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो फोन करना ना भूलें 10:05 से 11 बजे के बीच और सुने अपनी पसंद का गीत। आज युवावाणी कार्यक्रम में शाम 5 बजे आज का क्रम होगा फोन इन प्रोग्राम हेलो फ्रेंड्स। शाम 6 बजे हम आपको सुनवाएंगे विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे विजन 2047 में शिक्षा की भूमिका। इसके अलावा भेंटवार्ता श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती ममता चंद्रशेखर से युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए योजनाओं पर विशेष चर्चा। खेती गृहस्थी कार्यक्रम आप सुनते हैं शाम 7:20 पर। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे दुर्गा शंकर बारचे से भेंटवार्ता, प्राकृतिक खेती कैसे करें।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: युवाओं

0: के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
4: क्या?
3: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
4: वो कैसे?
3: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: और सुनेंगे कैसे?
3: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
5: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
6: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को है। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
7: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: महात्मा गांधी एक नाम नहीं, एक विचारधारा है जिसके बिना हमारा जीवन, हमारी नैतिकता और हमारे मूल्य शून्य है।
1: सबको सम्मति दे भगवान।
0: आइए चलें उस राह जो राह दिखाई बापू ने।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में देश को दी पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात। करीब 14,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने जालंधर छावनी रेलवे स्टेशन से देश भर के 75 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का किया शुभारम्भ। इनमें प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, सांची और शिवपुरी सहित 13 स्टेशन शामिल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने धार जिले में बलराम कृषि महोत्सव को किया वर्चुअली संबोधित। किसानों से आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने की अपील की। और प्रदेश के 44 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। डिंडौरी और उमरिया में भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हरियाणा के जींद में करीब 14,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली, जिसे पीएम मोदी ने जींद रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जींद के बाद प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क अवसंरचना से जुड़ी 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया।
1: भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पंजाब के जालंधर छावनी रेलवे स्टेशन से देश भर के 75 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। इनमें प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, सांची और शिवपुरी सहित कुल 13 स्टेशन शामिल हैं। इस मौके पर सांची में राज्यपाल मंगूबाई पटेल, टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और अशोकनगर में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने टीकमगढ़ जिले को करीब 189 करोड़ रुपए के 72 विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने टीकमगढ़ में नया मेडिकल कॉलेज बनाने

0: भी घोषणा की।
1: आपने कहा मेडिकल कॉलेज टीकमगढ़ में बनाया जाएगा, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। बच्चों को पढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत जल्दी यहाँ मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करने आएंगे, सभी व्यवस्थाओं के बलबूते पर, और उद्योग धंधे भी सभी प्रकार के लगना चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए? तो जोरदार ताली बजा करके जो हमारे हरिशंकर जी ने कहा और जितने मित्र कह रहे हैं उन सबके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार है।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की जुमागात सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे जवानों से संवाद करेंगे और पहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वे सीमा सुरक्षा से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। श्री शाह 3 दिन के दौरे पर हैं और कल रात सिलीगुड़ी पहुंचे थे। आज वे सीमा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी करेंगे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 3 दिवसीय अशोकनगर दौरे के तहत आज चंदेरी पहुंचेंगे। वे यहां शहरी जल वितरण योजना और नए चिकित्सालय भवन जैसे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। वहीं कल श्री सिंधिया ने अशोकनगर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जिले के विकास के लिए 21 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को एजेंडे में शामिल किया गया है। इनमें सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य और खेल से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इससे पहले उन्होंने दिशा समिति की बैठक में जिले में चल रही करीब 5,200 करोड़ रूपये की विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा की थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल धार जिले में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअली संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने किसानों से आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने बताया कि समान नागरिक संहिता को लेकर व्यापक जन संवाद किया गया है और आगामी विधानसभा सत्र में इसे लागू करने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। महोत्सव में किसानों को कृषि यंत्रीकरण और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन नाम से एक राष्ट्रव्यापी जल संरक्षण अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य मानसून से पहले और मानसून के दौरान वर्षा जल के संचयन को बढ़ावा देना है। अभियान का नारा है, बारिश का पानी जहां गिरे जब गिरे वहीं सहेजें। अभियान के तहत छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने, पुराने तालाबों, कुओं और बावड़ियों के जीर्णोद्वार और रिचार्ज पिट तथा चेक डैम बनाकर भूजल रिचार्ज करने पर जोर दिया जा रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2026 के लिए चयनित अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थियों को 18 से 20 जुलाई तक एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर प्रोफाइल, पंजीयन और दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके बाद 19 से 21 जुलाई तक जिला स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। विभाग ने कहा है कि तय समय में प्रक्रिया पूरी न करने पर अभ्यर्थी चयन से बाहर हो जाएंगे। राज्य सरकार ने फिजूल खर्ची रोकने के लिए सख्त कॉस्ट कटिंग नीति लागू की है। वित्त विभाग ने इस संबंध में कल दिशा निर्देश जारी किए। अब सरकारी विदेश यात्राओं पर तत्काल रोक लगा दी गई है। वहीं महंगे सरकारी कैलेंडर, डायरी और वीआईपी स्वागत समारोहों के खर्च पर भी रोक लगाई गई है। अधिकारियों को अब हवाई यात्रा में केवल इकोनॉमी क्लास का उपयोग करना होगा। प्रदेश के जेल विभाग में करीब 10 साल बाद पदोन्नति हुई है। जेल मुख्यालय ने 40 अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं। सहायक जेल अधीक्षकों को अब उप जेल अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। जेल मुख्यालय में आयोजित समारोह में महानिदेशक जेल डॉ. वरुण कपूर ने पदोन्नत अधिकारियों को नई रैंक प्रदान की। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने गुणवत्ता सुधार के लिए राज्य स्तरीय मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रकोष्ठ का गठन किया है। ये प्रकोष्ठ राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की तर्ज पर स्थापित किया गया है। टैलेंट सर्च 2026-27 अभियान के तहत भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में बैडमिंटन और टेनिस चयन ट्रायल्स आयोजित हुए। बैडमिंटन ट्रायल्स में 75 खिलाड़ियों ने और टेनिस ट्रायल्स में 18 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। जो खिलाड़ी कल ट्रायल्स में शामिल नहीं हो सके उन्हें आज एक बार फिर से मौका दिया जाएगा। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने प्रदेश के 44 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया है। डिंडौरी और उमरिया जिले में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 19 जुलाई से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जिससे बारिश तेज होने की उम्मीद है। वहीं भोपाल, इंदौर सहित कई जिलों में आज हल्की बारिश का मौसम बना रहेगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल

बोर्ड ने रोहित शर्मा के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भविष्य को लेकर चल रही अटकलों को खारिज कर दिया है। बोर्ड ने कहा है कि रोहित शर्मा लॉर्ड्स में होने वाले तीसरे वनडे मैच के बाद भी टीम इंडिया के लिए खेलते रहेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मध्य प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की। खंडवा जिले में संचालित दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तहत कलेक्टर ने ग्राम नागचून सुरगांव निपानी का दौरा कर अभियान का निरीक्षण किया। झाबुआ कलेक्टर ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मोर डुंडिया का निरीक्षण कर शैक्षणिक और आवासीय व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आगर मालवा जिला विकास समन्वय और दिशा की बैठक में देवा सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी और राजगढ़ सांसद रोडमल नागर शामिल हुए। जिला कोषालय नर्मदापुरम में IFMIS केयर्स के तहत दो दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। नगर पालिका परिषद मंदसौर की PIC बैठक कल नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी बंशीलाल गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। डिंडौरी कलेक्टर के निर्देशन में जिले में संचालित नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के अंतर्गत कल जिले के विभिन्न स्थानों पर नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का सदाबहार फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम सुनहरी पल में। कार्यक्रम का पहला नगमा हम आपको सुना रहे हैं राहुल देव बर्मन की संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है आपकी कसम।

लीजिए सुनिए राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। समीर का लिखा हुआ ये गीत है और संगीत नदीम श्रवण का।

0: भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी यानी AIC द्वारा मध्य प्रदेश के आगरमालवा, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, भिंड, भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, डिंडोरी, गुना, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी, मैहर, मंडला, मंदसौर, मऊगंज, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, पांडुर्णा, पन्ना, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, अरहर, तुअर, ज्वार, कोदो कुटकी, मूंगफली, तिल, कपास, मूंग, उड़द की फसल का बीमा किया जा रहा है।
1: किसी भी प्रकार की जानकारी, मार्गदर्शन, आवेदन से जुड़ी सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है।
0: 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल हाय या नमस्ते लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलें, क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। सुरक्षित फसल, खुशहाल किसान। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

सुनहरे पल कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं जतिन ललित के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

अब हम आपको सुना रहे हैं अलका याग्निक की आवाज में जानवर फिल्म का गीत। गीतकार है समीर और संगीतकार आनंद मिलिंद।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस।
5: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से इस समय प्रसारित हो रहा है सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल, और

यह है इस कार्यक्रम का आखिरी नगमा, एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में साजन फिल्म से। समीर का गीत, संगीत नदीम श्रवण का।

0: अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम सुनहरे पल, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और फिर उसके ठीक बाद आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, दो नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
1: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
2: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अम्बाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
1: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
2: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री

0: रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन 3 परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का पहला चरण है। इसके अलावा हटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
2: मैं यह कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से यह कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
3: वर्किंग टू स्ट्रेंथन ईच अदर्स,
4: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
1: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचावास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
5: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है, और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था, बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पे बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाया।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम चार में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
7: हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
8: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है समस्या यह है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने एसआईआर से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है। एसआईआर में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है कमजोर मानसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देशभर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम संजय मट्टू। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi inaugurates 75 redeveloped railway stations across the country under Amrit Bharat scheme. Also flags off 2 new train services. Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in West Bengal today to review security and launch development initiatives. UN Human Rights Agency voices concern over wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Calls for probe into deaths of protesters. In Japan Open Badminton, PV Sindhu faces Chen Yufei of China in semi-final of women's singles in Tokyo, and in FIFA World Cup, France and England to lock horns for third place at Miami tonight. Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated 75 redeveloped railway stations across 20 states from Jalandhar in Punjab last evening. These stations have been modernized under the Amrit Bharat Station Scheme, which is one of the world's largest station redevelopment programs. Developed at a cost of about 1,570 crore rupees, these stations have been transformed into modern passenger-friendly facilities. Redeveloped in the spirit of Virasat Bhi, Vikas Bhi, the stations incorporate elements reflecting local culture, heritage and architecture. On the occasion, Mr. Modi flagged off the Kartoli-Ambala train service, which will improve connectivity across Punjab, Haryana and Himachal Pradesh. He also flagged off the Sant Ravidas Express between Amritsar and Varanasi, establishing a direct rail link between two of India's most revered spiritual and cultural centres. He also inaugurated the 30.9-kilometre-long Package 6 of the four-lane Greenfield Delhi-Amritsar-Katra Expressway. Speaking on the occasion, Mr. Modi said the inauguration of the 75 redeveloped railway stations reflects the rapid transformation that Indian Railways has undergone over the past few years.
10: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया. आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है. अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है. आज ऐसे ही 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है. जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है.
9: Earlier in the day, India got its first hydrogen-powered train when Prime Minister Modi flagged the passenger service between from Jind Railway Station in Haryana. The train will run between Jind and Sonipat Railway Stations and cover the 89-kilometre distance in 2 hours. Union Home Minister Amit Shah will today visit the BSF's 18th Battalion Border Outpost at Jumagach in West Bengal, located near the India-Bangladesh border, to inaugurate and lay the foundation stone for several BSF-related development projects. The Home Minister will also chair a meeting in Siliguri to review border management and security-related issues in the state. More from our correspondent.
11: Union Home Minister Amit Shah arrived at Baghdogra last night on a 3-day visit to West Bengal. Today he will visit two border security force camps in North Bengal and address a

0: But with many firsts, he didn't know how special he was. And with that, it's back to you, Sanjay.
1: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates 75 redeveloped railway stations across the country under Amrit Bharat scheme. Also flags off two new train services. Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in West Bengal today to review security and launch development initiatives. UN Human Rights Agency voices concern over wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Calls for probe into deaths of protesters. PV Sindhu enters into final of Japan Open Badminton Tournament. And in FIFA World Cup, France and England to lock horns for third place at Miami tonight. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। साथियों नमस्कार। जिंदगी में कुछ गीत ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। कुछ गीत हमें प्यार की पहली धड़कन याद दिलाते हैं, कुछ बचपन की शरारतें तो कुछ मौसम की वो खूबसूरत शामें जिन्हें हम कभी भूल नहीं पाते। तो तैयार हो जाइए अगले कुछ पलों तक संगीत, यादों और खूबसूरत एहसासों की दुनिया में खो जाने के लिए। साथियों जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, बादल आसमान में मुस्कुराते हैं और दिल किसी अपने को याद करने लगे, तब समझ लीजिए कि मौसम अपना जादू दिखा रहा है। प्रेम का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है। इसमें शब्द कम और एहसास ज्यादा बोलते हैं। कभी एक मुस्कान, कभी एक नजर और कभी सिर्फ किसी का साथ ही पूरी दुनिया को खूबसूरत बना देता है। आज का पहला गीत भी ऐसे ही प्यार और मौसम की मिठास से भरा हुआ है। यह गीत सुनते ही हर दिल रोमांटिक होता है। तो आइए मौसम के इस जादू में खो जाइए।
3: 2-1 लेट्स स्टार्ट द फन।

वाह क्या बात है, सचमुच कुछ गीत समय के साथ पुराने नहीं होते बल्कि और भी खूबसूरत लगने लगते हैं। उम्मीद है इस गीत ने आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर ला दी होगी। अब बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। दोस्तों, जब प्यार सच्चा होता है तो उसमें किसी तरह की शर्त नहीं होती। दिल बस यही चाहता है कि जिससे मोहब्बत हो उसकी हर खुशी अपनी खुशी बन जाए। प्यार में इजहार भी होता है और इंतजार भी, मुस्कान भी होती है और कभी कभी आंखों की नमी भी। अब पेश है एक ऐसा गीत जिसमें मोहब्बत का इकरार पूरे दिल से किया गया है, सुनिए।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। साथियों, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जिसे आप दिल से चाहते हैं तो यकीन मानिए

यह गीत की हर पंक्ति जो आप सुनने वाले हैं उसी के लिए बनी हुई है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं कि फिर वो सिर्फ यादों में नहीं बल्कि हमारी हर धड़कन में बस जाते हैं। उनकी हंसी हमारी मुस्कान बन जाती है, उनका साथ हमारी सबसे बड़ी ताकत। ऐसे ही खूबसूरत एहसासों को बयां करता ये गीत।

साथियों, उम्मीद है आपने भी इस गीत के साथ खूब आनंद लिया होगा। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत, लेकिन बेहद खूबसूरत गीत।

0: अभी आप सुन रही थी फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लोक संगीत का आरंभ करने से पहले सुनिए ये संदेश।
1: भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी यानी AIC द्वारा मध्य प्रदेश के आगरमालवा, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, भिंड, भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, डिंडोरी, गुना, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी, मैहर, मंडला, मंदसौर, मऊगंज, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, पांडुर्णा, पन्ना, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, मक्का बाजरा, अरहर, तुअर, ज्वार, कोदो कुटकी, मूंगफली, तिल, कपास, मूंग, उड़द की फसल का बीमा किया जा रहा है।
2: किसी भी प्रकार की जानकारी, मार्गदर्शन, आवेदन से जुड़ी सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 1-4447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है।
1: 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल हाय या नमस्ते लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलें, क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। सुरक्षित फसल, खुशहाल किसान। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: श्रोताओं, लोक संगीत में आइए सुनते हैं नारायण लाल सिसोदिया और साथियों के गाए मालवी लोकगीत। आरंभ में सुनिए इनके स्वर में ये मालवी लोक भजन।

0: लोक संगीत में आप सुन रही थी नारायण लाल सिसोदिया और साथियों के गाए मालवी लोकगीत। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ,
2: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए तालाबों के संरक्षण और विकास के लिए प्रयासरत पॉन्डमैन के नाम से प्रसिद्ध रामवीर तंवर के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही है नीति शुक्ला।
3: जल ही जीवन है, ये कहावत तो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसे सही मायने में समझकर और इसके लिए काफी अच्छा काम किया है आज की हमारी इस शख्सियत ने, जिनसे कि हम आपको मिलवाने वाले हैं। मैं हूँ आरजे नीति और हमारे आज के जो गेस्ट हैं, इन्हें पॉन्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने तालाब के संरक्षण के लिए, उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए काफी अच्छा काम किया है। और यहाँ तक कि इनका जिक्र मन की बात प्रोग्राम में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। तो आइए स्वागत करते हैं रामवीर तंवर जी का। बहुत बहुत स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद
3: रामवीर जी। आपको पॉन्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लेकिन कब इसकी आपने शुरुआत की? क्या आपने सोचा कि अब तालाबों का संरक्षण करना है, इन्हें पुनर्जीवित करना है?
4: देखिए, ये अचानक से ऐसी कोई घटना नहीं है जिसकी वजह से मैंने काम किया हो। इस तरह की घटनाएं किताबों में अच्छी लगती हैं, लेकिन ये है, मेरा मानना है कि वो धीरे धीरे धीरे धीरे ना कोई भी इनिशिएटिव आपको अपनी ओर खींच लाता है, और उसके लिए जिम्मेदार होती है कई बार आपकी चाइल्डहुड यादें, बचपन में आपने जो देखा है और जवानी में आप जो नहीं देख पा रहे। मैं 10th क्लास तक अपने गांव में भैंसों को चराने जाता था जंगल में, और मैंने अपना पूरा होमवर्क किसी तालाब के या नहर के किनारे किया। मुझे याद है मेरे गांव से और जंगल जाते समय पे एक नहर पड़ती है बहुत छोटी सी, और हमें वो नहर क्रॉस करनी होती थी, अदरवाइज तो 2-3 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था। जब हम जाते थे, मैं 3री-4थी क्लास में जब था तो तैरना नहीं आता था, बहुत छोटा बच्चा था, तो हम भैंस की पूंछ पकड़ के क्रॉस करता था मैं, और कई बार भैंस जो है वो बीच नहर में जाके लेट जाते थे, तो हमें भी लेटना पड़ता था उसके साथ, तो उस वजह से तैरना सीखा। लेकिन आई एम सो सैड टू टेल यू कि वो नहर अब एक नाला है, और वो ऑफिशियली नाला है। वहां पे सिर्फ अभी पूरे शहर का इंडस्ट्रियल वेस्ट और म्युनिसिपल वेस्ट वहां से बहके जाता है। आप वहां किनारे 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते, जबकि उस नहर का पानी कई बार हमारे मुंह में चला जाता था, पेट में चला जाता था। मुझे कभी याद नहीं है कि हम बीमार हुए हों। वही नहर, मैं कई बार जब वहां से गुजरता हूं तो आज अपने रुमाल को नाक पे रख के गुजरता हूं, दुख होता है। जब मैं 11वीं क्लास में गांव से बाहर 20 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाता था बस में, डेली मुझे 25-30 किलोमीटर जाना था, 25-30 किलोमीटर आना था, तो वहां जब मैं रास्ते में ये देखता था तो कि जो भी रोड के किनारे के तालाब है वो धीरे धीरे धीरे धीरे लैंडफिल साइट बनते जा रहे हैं। क्योंकि आदत होती है कि जब भी हम जाते हैं हाथ में जो भी कचरा होता है वो सबसे पहला निशाना हमारी बनती है कोई नाली, नाली नहीं मिली तो नाला, नाला ना मिले तो नहर, नहर नहीं मिली तो तालाब। तो आज भी आप गांव में देखिए तालाब सबसे इजी टारगेट है कचरा फेंकने के लिए। तो जब मैं बाहर निकला गांव से और मैंने देखा कि ये मेरे गांव की समस्या नहीं है, ये तो सब जगह सेम इश्यू होता जा रहा है। जब मैं अपना ग्रेजुएशन में था, कॉलेज डेज में था, तो पॉकेट मनी के लिए मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। मेरे पास 2 स्टूडेंट थे और दोनों भाई थे, उसके पिताजी ने कहा पूरे दिन इधर उधर कंचा खेलते हैं, सारे दिन उधर जाते हैं, तो तुम अगर इनको पास करवा दो 33% से तो मैं तुम्हें जो है इनाम दूंगा। मैंने उनको पढ़ाया और उनके 70% आ गए, तो उन्होंने इतना प्रचार किया कि मेरे पास 40-50 बच्चे आ गए। वो ऐसे प्रचार करते थे, किसी का बच्चा पास नहीं हो रहा हो तो रामवीर के पास भेजते पास हो जाता क्योंकि मुझे मैथ फिजिक्स से बहुत प्यार था। तो मेरे पास इतने सारे बच्चे हुए, वीकेंड पे हमने एक्टिविटी करना शुरू किया। एक्टिविटी क्या थी कि गांव में नए नए समर सर्विल लगे थे, पंप सबके घर में समर सर्विल पंप है, एक गिलास पानी की जरूरत है तो वो 1000 लीटर पानी निकालेंगे। छोटे बच्चे को नहाना है तो उसको बाल्टी नहीं लाएंगे, उसके लिए बस समर सर्विल का स्विच ऑन कर देंगे, जाओ बेटा नहा लो। अब 10000 लीटर पानी में बच्चा नहा रहा है, सोचिए जो 5 लीटर बच्चा नहा सकता था वो 10000 लीटर में नहा रहा है, और वो ड्रिंकिंग वाटर उसकी कॉस्ट जोड़ देंगे 20 रुपए के हिसाब से तो लाखों रुपए में बैठ रही है वो। पूरे परिवार की इनकम 10000 रुपए महीना है और पानी बहा रहे हैं 5 लाख रुपए का। तो हमने डिसाइड किया खेल खेल में कि जो भी हमारे गांव में सबसे ज्यादा पानी बर्बाद करता है उसके घर के सामने हम जल ही जीवन लिख के आएंगे चुपचाप। वो हमारी एक्टिविटी थी और वो हम वीकेंड में करने वाले थे। जब वो 1 महीना किया, 2 महीना किया, बहुत सारी गालियां भी खाई, कई पेरेंट्स ने अपने बच्चे हटा लिए। हमने सोचा था अच्छा पढ़ाते हो तुम, तो इनको ऐब करना सिखा रहे हो, लड़ाई करना सिखा रहे हो लोगों के साथ। तो कुछ बच्चे हट गए, कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ ने बहुत अप्रिशिएट भी किया। नेक्स्ट फेज में हमने क्या किया कि एक जगह हम बैठ के मीटिंग करने लगे, गांव की जो चौपाल बनी हुई है चौपाल पे किया हमने, उसका नाम रखा जल चौपाल, और हमने उस ग्रुप का नाम दिया था जागरूक युवा समूह। जब हमने मीटिंग किया और सब कुछ हुआ तो कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ लोग आए। एक बार क्या हुआ, किसी ने फोटो क्लिक करके मीडिया में लगाया, अखबार में आया, अखबार से डीएम साहब के पास

0: डीएम साहब ने कॉल किया उन भैयाओं के पास कि उन बच्चों को बुला के लाओ, हमको बुलाया, उन्होंने अप्रिशिएट किया और कहा कि अगली बार मैं आऊंगा।
1: अच्छा।
0: वो अगली बार आए तो हम तो 20 लोग थे, वो आए तो 500 लोग इकट्ठा हो गए। देन आई रियलाइज कि ये जो हम कर रहे थे ये कोई छोटी चीज नहीं है, जिस काम के लिए खुद डीएम साहब, कलेक्टर साहब आपके गाँव में आ सकते हैं, जिन्होंने अभी तक गाँव देखा ही नहीं हमारा और उनको पता चला। देन आई रियलाइज कि वी आर डूइंग समथिंग बिग। और वहां से ये फिर मैंने कॉलेज किया, 2 साल जॉब के साथ भी मैंने यही किया, अवेयरनेस कैंपेन चलाया, लेकिन अवेयरनेस कैंपेन थोड़ा बड़ा हो गया टाइम के साथ। और फिर मैंने सोचा कि जॉब छोड़ के फुल टाइम अभी मैं ये करूँ। वहाँ से निकल के धीरे धीरे यहाँ तक पॉन्डमैन की जर्नी शुरू हुई।
1: तो पॉन्डमैन की जर्नी इतनी आसान तो नहीं रही होगी, कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे, तो किस तरह की मुश्किलें सामने आई?
0: शुरुआती दौर में क्या था, आपके पास पैसा नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे, आपके पास टीम नहीं थी, आपके पास नॉलेज नहीं थी, आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे, आपके पास कोई रेफरेंस नहीं था जिसको आप ये बोल सके कि मैंने वो काम किया है जी, आपको लोग क्यों ट्रस्ट करेंगे। इंडिया में क्या है, वाटर इज स्टेट सब्जेक्ट, कोई भी वाटर बॉडी है, तालाब है, पोखर है, कुआं है, कुछ प्राइवेट हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आप उसको बिना परमिशन के गंदा तो कर सकते हैं लेकिन बिना परमिशन के साफ नहीं कर सकते हो। साफ करना है तो आपको एनओसी लानी पड़ेगी। तो एनओसी के लिए हम चक्कर काटते थे, हमसे हर पूछता था एनओसी तब देंगे, पहले बताओ एक्सपीरियंस क्या है तुम्हारा। अब एक्सपीरियंस हो तो बताए, हमने तो जीरो एक्सपीरियंस, हमने कभी तालाब ही साफ नहीं किया। गांव वालों से बात करें वो कहते थे कि यार तुमने कभी किया ही नहीं कुछ, तो ये कैसे करोगे। तो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट नहीं था जिसको हम उदाहरण के तौर पे बता सके कि हमने वहाँ पे किया है, उसको देखिए। दूसरा, आप तालाब साफ करेंगे आप मैनुअली कितना कर लेंगे, 5 किलो कचरा हटा लेंगे, 100 किलो हटा लेंगे, लेकिन बड़ा अगर आपको इम्पैक्ट करना है तो मशीन चाहिए, आपको डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, मैन पावर चाहिए, टूल्स चाहिए, उसके लिए हमारे पास फंड नहीं था। हमने क्या किया कि जितना हमारे बस की है उससे करते हैं। तो जो भी सोशल मीडिया से, कॉलेज से जितने लोग जुड़े थे अपने साथ, उन सबको हमने साथ जोड़ा और क्लीन अप ड्राइव शुरू किया। मुझे याद है जब हम पहले दिन क्लीन अप ड्राइव किया था तो हमें लगा था बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन मैं और मेरा दोस्त दो ही रह गए कोई नहीं आया, हम दो ही लोग हो गए क्योंकि बारिश हो रही थी उस दिन। है ना, हम दोनों को तो जुनून था, सबको थोड़ी ना। हम गए वहाँ पे, हमने फावड़ा शुरू किया। अब बहुत सारे लोगों के साथ तो आपके अंदर हिम्मत होती, लेकिन हम तो दो ही लोग थे। और जब वहाँ पे हम तालाब साफ कर रहे थे, कोई भी हमसे निकल रहा था क्यों कर रहे हो, कहाँ से हो, तो हमारे पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम जवाब दे सके कि हम ये कुछ करना चाहते हैं। कोई भी आता था, हाँ भाई कौन हो, क्यों साफ कर रहे हो, तो हम कहते थे जी नगर पालिका से है। अच्छा अच्छा, वो उधर भी करके जाना। मैंने कहा हाँ जी बाबू जी करके जाएंगे।
1: अच्छा, तो रामवीर जी मैं ये पूछना चाहूंगी कि बात तो सही है कि आपको सफाई का किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि जो कचरा होता है वो किसी भी तरह का कचरा हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ वो कपड़ा और पॉलिथिन बैग हो, उसमें मेडिकल वेस्ट भी हो सकता है, तरह तरह के केमिकल्स हो सकते हैं, कांच हो सकता है। तो किस तरह के प्रिकॉशंस आप लेते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको सामने आई?
0: देखिए, हम शुरुआत में कोई एक्सपर्ट तो थे नहीं कि हम बता सके मेडिकल वेस्ट है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये प्लास्टिक वेस्ट है, तो हमारे लिए तो सब एक प्लास्टिक में बंद कचरा है, हम तो सबको ऐसे ही उठा के फेंक देते। तालाब क्या है, वो सिंक होल है, आपके घर में कुछ भी निकलेगा ना, आपके रजाई, गद्दे, जूते, चप्पल, कांच, जो भी है बस उसमें डाल दो जाके, चाहे वो नाला मिल जाए उसमें डाल दो, तालाब मिल जाए उसमें डाल दो। जब हम तालाब को रिस्टोर करते हैं, और कई बार हम जब डीवॉटरिंग करके उसको खाली करते हैं पूरे तालाब को, ताकि नीचे से खुदाई कर सके वापस से, आप यकीन मानिए कई बार 1 से 1.5 मीटर की एक लेयर मिलती है, पूरी कचरे की लेयर मिलती है। मान लो यही बोतल है, आप इसको फेंकिए तालाब में, अब 2 चांस हो सकते हैं, या तो ये इसमें ढक्कन लगा हुआ है और हवा भरी हुई है तो ऊपर तैरेगा, या इसका ढक्कन खुला हुआ है तो पानी भरेगा जाके नीचे बैठ जाएगा। तो जब हमने तालाब को खाली किया तो 1 से 1.5 मीटर की हमें लेयर मिली, और उस लेयर में सिर्फ बोतल नहीं है, उसमें सब कुछ है, उसमें जूते हैं, उसमें चप्पल है, उसमें कांच है, घर का बचा हुआ सामान है, बहुत सारी मूर्तियां हैं, तमाम सारी चीजें हैं जो सालों से वहीं पे पड़ी पड़ी सड़ रही हैं। और कई सारे तालाबों में तो ऐसा भी हमने देखा, क्योंकि जैसे जलकुंभी और सिल्ट और गाद और सिलज हो जाती है तो जानवर भी फंस के मर जाते पानी पीने के चक्कर में, लेकिन उसमें गाद इतनी सारी हो जाती है, उस कचरा डलते वहीं फंस जाते हैं। तो कई तालाबों में सहता हुआ हमने पानी निकाला तो नीचे ऐसे कंकाल के कंकाल खड़े हुए मिले, जो नीचे फंस गए थे, पानी में डूब गए थे वापस, ऐसे पड़े हुए मिले। बहुत दुख लगा उनको देख के हमें, क्योंकि गांव वाले को लगता था भैंस चोरी हो गई है, भैंस चोरी नहीं हुई थी, भैंस डूब के मर गई थी तालाब में।
1: जब आप कचरा उठाते हैं, आपकी टीम जाती है किसी लोकेशन पर, तो किस तरह से वो कलेक्शन करते हैं कि उन्हें हार्मफुल इफेक्ट से?
0: देखिए, उसके लिए तो सेफ्टी टूल्स होते हैं, एक स्पेशली ग्लव्स आते हैं जो इस तरह के वेस्ट को एक तरह से उठाने के लिए काम आते हैं, वहाँ पे प्रॉपर मास्क, और हमारे पास ना एक ड्रेस होती है प्रॉपर जो पूरा पहन लेते हैं तो यहाँ तक आती है वो बहुत मोटी होती है, प्लस उसमें पानी भी नहीं घुसता है, सेफ टिकट होती है, तो उसी को पहन के वो तालाब में घुसते हैं। एक आपके कपड़े भी गंदे नहीं होते, प्लस आपको नहीं पता कि पानी

0: में क्या केमिकल घुला हुआ है, तो वो भी आपके टच में नहीं आता है और वो उसी तरह से फिर वो उठाते हैं। अब तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नगर पालिका गाड़ियों में भी अलग अलग बॉक्स बने हुए होते हैं, क्योंकि हम कचरे को निकाल तो सकते हैं लेकिन उसको अपनी मर्जी से डिस्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं क्या करूंगा, एक्स जगह से उठा के वाई जगह पर डाल दूंगा, बात तो एक ही हुई। तो इसलिए हम जब भी कोई तालाब करते हैं तो वो एक उसमें मल्टीपल पार्टी होती है, एक ट्राई पार्ट एग्रीमेंट होता है, एक होता है कॉर्पोरेट या स्पॉन्सर, एक होता है हम एग्जीक्यूटिंग पार्टनर, एक होता है वहां का एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जहां पे भी उनका निस्तारण एक प्लांट है वहां तक उसको लेके जी जी। लेकिन अभी क्या है, टाइम के साथ हमें भी नॉलेज हुई है तो उसको अच्छे से सेग्रीगेट करते हैं, और जिस तरह से उसका एक आधुनिक तरीका होना चाहिए उसको सेग्रीगेट करने का, निस्तारित करने का, उसी को उसी से निस्तारित किया जाता है। क्योंकि तालाबों में सिर्फ दो तीन तरह का ही वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, इनऑर्गेनिक वेस्ट है। ऑर्गेनिक वेस्ट तो तालाब के अंदर चला जाता है, स्लज ले लेता है। इनऑर्गेनिक वेस्ट जूते चप्पल प्लास्टिक ये सारे, हमने क्या है कुछ स्टार्टअप्स के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है, वो प्लास्टिक उनको देते हैं, उस प्लास्टिक से हमें वो बेंच ट्री गार्ड मेज उसको मोल्ड करके वापस से पिंगला के वो हमें देते हैं, और उसी बेंच को हम तालाब किनारे रख देते हैं वापस से, ताकि उसी बेंच पे बैठ के लोग शाम को फिर तालाब को निहारे।
1: तो पूरा आपने एक ये सिस्टम क्रिएट कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली वो अच्छे तरह से वो जो कचरा है वो जा रहा है और स्टार्टअप उसे किसी अच्छे फॉर्म में लेकर वापस कर रहे हैं। तो जब आप तालाबों को पुनर्जीवन देने की कोशिश करते हैं, उनकी सफाई करते हैं, तो लोकल्स का किस तरह से सपोर्ट मिलता है या विरोध करते हैं, क्या रिएक्शन?
0: देखो लोकल दोनों तरह के ही है। जिन लोगों ने तालाब के किनारे घर बनाया हुआ है उनका हमेशा सपना रहता है कि अगले साल 100 गज और कब जाएंगे, उससे अगले साल 100 गज और एंक्रोचमेंट करेंगे। उनका जिनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है ना तालाब को बचाने की, वो सबसे ज्यादा तालाब को कब्जाने की फिराक में रहते हैं, और ये 90% सक्सेस रेट है मेरी इस बात का। आप कहीं भी जाके देखिए तालाबों को उन लोगों ने कब्जाया हुआ है जो तालाब के किनारे पे रहते हैं, क्योंकि वो उस जगह को अपनी मानने लगते हैं। उनका डायरेक्टली कोई फायदा नहीं हो रहा है तालाब से, इनडायरेक्टली तो बहुत सारे हैं भाई, पर्यावरण बच रहा है, आसपास का माहौल ठंडा होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट मिलती है। डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली तब मिलता था जब पानी पीते थे उस तालाब से, जब उसमें नहाते थे, जब उसमें से मटका भर के लाते थे, तो इसलिए अब उसको लैंडफिल की तरह यूज करते हैं। ऐसे लोग तो हमेशा विरोध करते हैं जो उसको कब्जाना चाहते हैं, कुछ भी करके आपका काम रुकवाना चाहते हैं। दूसरे टाइप के लोग हैं जो थोड़े अवेयर हैं, वो सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा है कि सपोर्ट करने वाले लोग अभी भी भारत में विरोध करने वालों से ज्यादा है, इसलिए शायद हमारा काम चल भी रहा है। दूसरा जो अलग अलग टाइप के लोग मिले, कुछ लोग हैं जैसे आज हमने तालाब पे काम शुरू किया, शाम तक आ जाएंगे, पहले ये बताइए पैसा कहाँ से मिला, क्यों कर रहे हो, वो सारे लोग है। कुछ होते हैं जो अच्छी सलाह भी देते हैं कि भाई यहाँ पे ये पेड़ लगाइएगा, क्योंकि मुझे लगता है हम लोगों को इसलिए उसमें पार्टिसिपेट कराते हैं, इसलिए हम जन भागीदारी करते हैं उसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि तालाब एक दिन में तो मरा नहीं होगा, तालाब को मरने में 30-40-50 साल लगे हैं, और तालाब को मरते हुए उन्हीं लोगों ने देखा है जो उस गांव में रहते हैं, इसलिए उस तालाब के बारे में सबसे ज्यादा, चाहे उसकी हिस्ट्री हो चाहे मरने की कहानी हो, उन्हीं लोगों को पता है जो वहां पे रह रहे हैं, इसलिए हम उसको पार्ट बनाते हैं और हम बताते हैं कि आपको ही रेस्टोर करना है, हम तो सिर्फ आपको सपोर्ट करने आए हैं। तो दोनों तरह के लोग मिलते हैं, बहुत सपोर्ट भी करते हैं, बहुत विरोध भी करते हैं।
1: तो जैसे आपने एक बार किसी तालाब की सफाई कर दी, उसको पुनर्जीवन मिल गया, तो बाद में उसकी कौन देखभाल करता है?
0: अब मान लो अगर हम घर बना रहे हैं, या मेरा खुद का खेत है, या मेरा खुद का प्लॉट है, हमेशा वही देखभाल करेगा जिससे उसकी इनकम जुड़ी हुई है, या जो ऑनर है उस जगह का। तालाबों के साथ इश्यू क्या है, तालाबों का कोई ऑनर नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं जब तालाबों को रेस्टोर करते हैं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि तालाबों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाए। सेल्फ सस्टेनेबल बनाए मतलब तालाब अपने मेंटेनेंस का खर्चा खुद निकाले, तालाब अपने लिए इनकम करे। सिंगाड़ा कहाँ से आता है? तालाबों से। लोटस कहाँ से आता है? तालाबों से। मछली कहाँ से आती है? तालाबों से। और आजकल ये बिहार में तो मखाना देखिए, तालाबों से। बहुत सारी चीजें हैं जो तालाबों से आती है। और अब दिल्ली में, गुड़गांव में तो तालाब इको टूरिज्म के लिए, आप तालाब के किनारे रेस्टोरेंट खोलिए और एक दूसरी जगह खोलिए, तालाब किनारे वाले के इनकम ज्यादा होगी। तो तालाब अपने लिए इनकम करना सीख, तो तालाबों की इज्जत भी बढ़ेगी, और इज्जत बढ़ेगी मतलब तालाब के किनारे वाले जो रेस्टोरेंट है या कोई भी चीज है वो आपको मेंटेन करेंगे। तो इसलिए हम तालाबों को इस तरह से एक्वा कल्चर, इको टूरिज्म, टूरिज्म या किसी न किसी एक्टिविटी से जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि उसका अगर कोई 5 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं तो वो 50,000 रुपए तालाब के मेंटेनेंस पे खर्च करें। अदरवाइज तो फिर हम अपने ऊपर ले लीजिए भाई, अगर हम ये उम्मीद करके चलें कि मैंने तालाब को रिस्टोर कर दिया और अब जनता इसको खुद ही मेंटेन कर लेगी, तो हम भी जनता है। हम महीने में कितनी बार जाते हैं आसपास के तालाबों को मेंटेन करने के लिए, मैं कितनी बार जाता हूँ, आप कितनी बार जाते हैं, आप और जो इस तरह की बातें

0: करते हैं वो कितनी बार जाते हैं। तो तालाबों को हमेशा वही मेंटेन करते हैं जिनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे कुछ फायदा।
1: तो जैसे आपने किसी तालाब को रिवाइव किया और कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद आप पलट कर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर पक्षी आने लगे, जीव जंतु आने लगे, एक जनजीवन वहाँ पे पनप रहा है, तो देखकर कैसा फील होता है, क्या इमोशंस होते
0: हैं? बहुत अच्छा लगता है।
1: कोई एक्सपीरियंस भी हो तो बताइए।
0: हम क्या है, हमारे एक USP है तालाब रेस्टोर करने का। हम जब भी कोई तालाब बनाते हैं तो उसके बीच में नेस्टिंग आईलैंड बनाते हैं।
1: अच्छा।
0: बीच में छोटे छोटे टापू बनाते हैं, उस टापू पे वहीं की लोकल नेटिव घास भी लगाते हैं। उसका हमारा जो पर्पज है नेस्टिंग आइलैंड बनाने का, वो ये है क्योंकि हमें लगता है कि देखो पिछले 50-100 साल में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आई है। आजकल तो जो घरों में फिल्टर है वो भी AI वाले आ रहे हैं, लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजी आई किसके लिए है? इंसान ने बनाई है, इंसान के लिए आई है। आज से 100 साल पहले एक तालाब जिसमें इंसान भी उतना ही डिपेंड था उस तालाब पे और एक पक्षी भी उतना ही डिपेंड था। इंसान के पास तो पानी आ गया, पाइपलाइन से आ गया, RO से आ गया, रिमोट से आ गया, लेकिन उसके लिए तो आज भी उतना रिलेवेंट है वो तालाब। तो जैसे ही मेरी पूर्ति हुई, जैसे ही मेरी जरूरत खत्म हुई, अब मैं तालाब को पाट दे रहा हूँ, अब मैं तालाब को मार दे रहा हूँ, अब मैं तालाब को कूड़ा घर बना दे रहा हूँ? नहीं भाई, आपके लिए ही तो टेक्नोलॉजी आई है, उनके लिए थोड़ी ना आई है। वो तो आज भी तालाबों पर उतने डिपेंड है। दूसरा, अभी पॉपुलेशन उतनी है, ट्रैफिक साउंड उतना है, तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि अब डेवलपमेंट क्या है, बिल्कुल या तो तालाब जो है वो शहर के बीच में आ गए या रोड किनारे आ गया, पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आइलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पे बैठने की व्यवस्था करते हैं
1: पक्षियों के।
0: बिल्कुल। आप और मैंने अभी तक 100 से ज्यादा आइलैंड बनाए। आप इस साल बनाइए आइलैंड और अगले साल देखिए, कम से कम आपको 100 बर्ड्स मिलेंगे, एक्वेटिक बर्ड्स मिलेंगे, बहुत सुंदर सुंदर बत्तखें मिलेंगे, क्योंकि बीच में फिर आप वो ना घोंसला रख सकती है, बीच में वो अपना नेस्ट बना सकती है, बीच में अपने बच्चों को पाल सकती, अपने बच्चों को ट्रेन कर सकती है। मैं अभी एक महीने पहले गया था एक तालाब पर, ग्रेटर नोएडा में हमने वो डेवलप किया था दुजाना गांव में। मैंने बीच में देखा तो मिट्टी के ना बहुत सारे छोटे छोटे होल थे नेस्टिंग आइलैंड के ऊपर, वहां बत्तखों ने अपने बच्चे छिपाए हुए थे और पूरा तालाब एकदम बत्तखों से भरा हुआ है। आप सोचिए, अगर वो बीच में नहीं होता, किनारे पे तो कोई नहीं रखेगा, रखेंगे भी तो कुत्ते बिल्ली खा जाएंगे, कोई बच्चा उठा लेगा। तो जब भी मैं एक ऐसे तालाब पे जाता हूँ जो मैंने 2 साल पहले रेस्टोर किया था और आज पूरा पक्षियों से भरा हुआ है, बत्तखों से भरा हुआ है, जलीय जीवों से भरा हुआ है, उसको देख के जो तसल्ली मिलती है दिल को, बुरा नहीं लगता कि मैंने जॉब छोड़ दी।
1: अब मैं इसी पे आ रही थी कि इतना मुश्किल रहा होगा कि जॉब छोड़ के आप फुल टाइम इस काम में लग रहे थे, अपने डिसीजन से ज्यादा मुश्किल रहा होगा घर वालों कन्विंस करना, उन्हें समझाना, क्योंकि आप अच्छी पढ़ाई लिखाई कर चुके थे, तो उसके बाद कैसे कन्विंस किया अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को?
0: क्या है, 5 भाई बहन है, अभी मैं सबसे छोटा हूँ, और मेरी मम्मी बताती है कि हम 5 नहीं, हम 10 भाई बहन थे, 10 में से 5 नहीं रहे, 5 बचे, और 5 जो भी नहीं रहे वो गरीबी के कारण नहीं रहे। 5ों में से भी मैं ऐसा हूँ जिसने 11th क्लास में पढ़ाई की, पहली बार घर का सबसे छोटा, क्योंकि मेरे बाद तो नेक्स्ट जनरेशन शुरू होने वाली थी, हमारे बच्चे आने वाले थे, तो आई वॉज द पर्सन जिसने 11वीं क्लास में एडमिशन लिया और मैं कॉलेज गया पहली बार, और जिसने पहली बार MNC में जॉब भी की। तो मेरे घर वालों के लिए तो कितना बड़ा अचीवमेंट था कि कोई कॉलेज गया है। जब मैं कॉलेज गया था तो मैं कॉलेज में घुसने के अगले दिन ही मेरे इतने सारे रिश्ते आने वाले थे, क्योंकि रिश्तेदारियों में कोई था नहीं जो कॉलेज
1: पढ़ा लिखा और MNC में
0: जॉब कर, जबकि जो मेरे साथ के थे वो बता रहे हैं कि मेरे दादाजी वहाँ के ग्रेजुएट थे, मेरे परदादाजी वहाँ दरोगा थे, और मैं वहाँ पहली बार कॉलेज में जा रहा हूँ। वहाँ फिर मुझे शर्म लग रही थी कि हम कितने पीछे हैं, लेकिन मेरे घर वालों को लग रहा था कि हम कहाँ पहुँच गए चांद पे। प्राउड फील कर रहे थे, घर वालों को उम्मीद थी। और जब जॉब लगती है किसी की, पहली बार कोई जॉब करता है तो अलग बात होती है। तो जब मैं जॉब छोड़ रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि जॉब छोड़ना मेरे लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आपके पास खोने को कुछ है ही नहीं तो आपको डर किस बात का, जॉब ही तो अगले साल फिर लग जाएगी, यहाँ छोड़ के कहीं और लग जाएगी। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जस्टिफाई कैसे करूँ। तो उन दिनों में क्या था, ये 2016 से 18 जॉब किया था, तो 18 में जब मैंने जॉब छोड़ी तो नक्सली वाला कुछ चल रहा था इधर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की तरफ, झारखंड की तरफ। मैं जॉब छोड़ चुका था और मैं जॉब छोड़ने के एक महीने तक मैं घर से उसी समय निकलता था जिस समय जॉब के लिए निकलता था।
1: अच्छा।
0: और उसी समय घर पे आता था जिस समय जॉब से आता था,
1: तो क्या बताया
0: ताकि घर वालों को रियलाइज ना हो।
1: अच्छा।
0: और मैं करता क्या था उस बीच की, कहीं पे कोई पर्यावरण का सेमिनार हो रहा है, एक दो भैया थे जो काम कर रहे थे उनके ऑफिस पे जाके बैठता था, कहीं ऐसा प्रोग्राम चल रहा है उसको जाके सुनना है, और कई बार उधर से मेट्रो में बैठ के आता था, यहाँ एक CP में बीच में गोल चक्कर है बहुत बड़ा सा, उस पे जाके बैठ जाता था। तो वो मेरा काम था। तो मैंने फिर एक दिन ऐसे ही कहा अपनी मम्मी से कि वहाँ जो है मेरा ट्रांसफर उधर हो रहा है छत्तीसगढ़। तो मम्मी ने पूछा छत्तीसगढ़ कहाँ पड़ता है, क्योंकि मम्मी तो हमारी कभी स्कूल देख यकीन है कैसा होता है।

0: नागपुर, उन्होंने छत्तीसगढ़ का उन्होंने अपने नोएडा के बाहर कभी जाके नहीं देखा। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा छत्तीसगढ़ वही जगह है जहाँ पे आजकल नक्सली और बहुत हमले हो रहे हैं जो टीवी में देखा था। तो उसने कहा नहीं नहीं बेटा वहाँ नहीं जाना, तुम जॉब छोड़ दो कहीं और ढूंढ लो।
1: अच्छा।
0: तो मैंने कहा ठीक है कल छोड़ दूंगा।
1: तो मैंने पहले आपने पूरा वो भूमिका तैयार की उसके बाद,
0: क्योंकि जस्टिफाई करने में मुझे समय लगा उसको कि उनको बताऊं कैसे, है ना। मैं बोलूंगा क्या हाल दो, मेरी जॉब मेरा डिसीजन वो वाला नहीं है, बट हम गांव के लोग हैं, हमें पेरेंट्स को भी साथ लेके चलना है, को भी बुरा नहीं फील कराना है, उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई है हमसे हमारे। लेकिन पिताजी इस काम से बिल्कुल ना खुश थे, वो मुझसे नहीं कहते थे लेकिन मेरी मम्मी को बहुत डांटते थे, तुम्हारी वजह से ये कर रहा है, तुम बोलती नहीं हो, कुछ ही है, घर का नाश हो जाएगा, ये है वो है।
1: तो ऑब्वियसली लगता है कि बेटा इंडिपेंडेंट हुआ, जॉब कर रहा है,
0: छोड़ के गलत डायरेक्शन में जा रहा है, है ना, उनके लिए गलत डायरेक्शन थे। और कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि बच्चा इनसिक्योर फील्ड की तरफ। तो कई बार ऐसा होता था कि न्यूज पेपर में मेरा आता था, आज इंटरव्यू देकर आया हूं तो कल आएगा ही आएगा, तो मैं गली के बाहर खड़ा हो जाता था, न्यूज पेपर वाले को रोकता था, वो पेज फाड़ लेता था और बोलता था हाँ तुम ले जाओ इसको। तो पिताजी तक नहीं पहुंचता था, लेकिन भाई गांव में आया तो गांव वाले खुद ही आ जाते थे, आते तुम्हारे लड़के का।
1: तो वो बताइए मुझे घटना कि जब मन की बात में पीएम मोदी ने आपका जिक्र किया तो फिर क्या माहौल था, आपने सुना था वो?
0: नहीं, मैं तो सुन नहीं पाया था उस दिन, मैं अपने घर पे ही था और लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। मेरा भतीजा आया था, मैं ऊपर था फर्स्ट फ्लोर पे, वो ग्राउंड फ्लोर पे था, तो वो भगा भगा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है। तो मैंने तुरंत लैपटॉप साइड में रखा और मैं भगा भगा नीचे गया, और जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया। तो मैंने उसको बोला कि तुम मजाक क्यों करते हो, अरे नहीं अंकल अभी देखा था, सच में देखा था मैंने। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था।
1: अच्छा।
0: और बार बार बज रहा था, मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे, कॉल थे, मेरे जितने भी लोग मुझे जानते थे आसपास के तो सब लोग कॉल करके बधाई देना चाहते थे। तो जब मैंने एक दो मैसेज पढ़ा तो फिर मुझे अपने भतीजे की बात पे यकीन आया कि हाँ वो सही कह रहा था। उसके बाद से जो लोग कुछ मजाक उड़ाते थे क्या ये ऐसा काम करते हो, ये करते
1: वही लोग,
0: तो मेरे पास एक जस्टिफिकेशन और आ गया।
1: हाँ।
0: कि जब प्रधानमंत्री जी तारीफ कर सकते हैं तो आप कौन हो कि मजाक उड़ाने वाले।
1: और आपके पिताजी का क्या रिएक्शन था?
0: देखो गांव में ना हमारे एक बेटा और पिताजी के बीच में इस तरह के कन्वर्सेशन होते नहीं है, उनको मनी मन खुशी हुई होगी लेकिन उन्होंने कभी कहा नहीं कि बेटा आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ऐसा सिर्फ हम टीवियों में देखते हैं कि पिताजी कहते हैं जाके।
1: तो जब इतने बड़े लेवल पे आपकी तारीफ आ गई और सब कुछ अच्छा चलने लगा तो आपने अपने पिताजी को फिर कैसे कन्विंस किया?
0: मैं तो क्या करता था कि जैसे शुरू में जब तालाबों की बात आती थी तो हमारे पिताजी चाहते थे कि तुम कुछ भी करो लेकिन ऐसा काम करो जिससे पैसा आए, तो मैं इसलिए पढ़ाया था कि तुम पैसे कमा सको। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैं जब भी तालाबों के बारे में पूछते थे तो मैं कहता था मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मछली पालन में बहुत पैसा आए।
1: अच्छा।
0: इससे मछली पालन करेंगे और करोड़ों रूपये कमाऊंगा। तो उस बात से खुश हो जाते थे, अच्छा मछली पालन का काम करना है। मैंने कहा हाँ जी, मैंने सुना उसमें बहुत पैसा है, एक साल ट्राई कर लेता हूँ, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मेरे पिताजी को किसी भी काम से कोई दिक्कत नहीं है जिससे पैसा आए, तो इसलिए मैंने तालाबों के काम को मछली पालन से जोड़ के मैंने उनको जब बताया तो ही साइड की ठीक है भाई, मछली पालन में मैंने भी सुना है बहुत पैसा है।
1: तो कभी फिर ट्राई किया आपने सच में मछली पालन?
0: नहीं, मेरे साथ के करते है ना।
1: अच्छा।
0: मैंने मछली पालन कराया, अगर तालाबों को सस्टेन कराना था तो किसी न किसी तरह से एक्वा कल्चर से जोड़ना है, अदरवाइज तो आज आप तालाब साफ करेंगे अगले साल फिर उतना ही भर जाएगा। आप एक साल में तालाब ही तो रेस्टोर कर सकते हैं, लोगों का माइंडसेट थोड़ी ना रेस्टोर कर सकते हैं, जो लोग कचरा फेंक रहे हैं उनको दिमाग को थोड़ा ना अंडू कर सकते हैं कि आज से कचरा फेंकना बंद, क्योंकि आदत खराब होती है धीरे धीरे, धीरे खराब होती है तो धीरे धीरे सही भी होती है। अब हमारा हाथ चलता ही नहीं है डस्टबिन की तरफ, अब तो माननीय प्रधानमंत्री ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है और ये स्वच्छ भारत मिशन चलाया तो थोड़ा थोड़ा आदत में आ रहा है डस्टबिन की तरफ, अदरवाइज तो फेंकने की तरफ ही चलता है। मैं तो जब कॉलेज में जाता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, बच्चों को उदाहरण देता हूँ कि भाई अगर मैं आपको आज होमवर्क देके आऊँ, होमवर्क देके जा रहा हूँ कि आपको नेचुरल सीनरी ड्रॉ करके लानी है कल, तो मुझे पता है 90% बच्चे क्या ड्रॉ करके लाएंगे, दो पहाड़ पीछे से उड़ता हुआ, एक पक्षी आगे झोपड़ी, एक छोटा सा पॉन्ड, सूरज निकल रहा है, कहाँ से आया ये, है ना, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही बनाते आ रहे हैं। लेकिन अब वो सब झूठ है, अब ऐसे तालाब नहीं बचे हैं, अब तालाबों की असली पिक्चर बनाइए ना कि तालाब कैसे कचरे से भरे हुए हैं।
1: तो अब तक आपने कितने तालाब साफ किए हैं और उन्हें पुनर्जीवन दिया है?
0: अभी तक तो हम 100 से ज्यादा तालाब कर चुके हैं।
1: अच्छा।
0: और ये 100 तालाब कोई बड़ा है कोई छोटा है, है ना, कोई 50-50 एकड़ के भी है जिसमें एक में से भी 50 तालाब निकल सकते हैं छोटे छोटे है। क्या जैसे उत्तर भारत में आप रहेंगे तो यहाँ पे अगर 500 एकड़ की भी कोई वाटर बॉडी है ना, ह्यूज वाटर बॉडी, उसको भी तालाब ही बोलेंगे।

0: वैसे आमतौर पर तालाब एक छोटी वाटर बॉडी है और झील बड़ी वाटर बॉडी है, लेकिन यहाँ पे उत्तर भारत में आप चाहे कितनी भी बड़ी वाटर बॉडी ले लीजिए उसको तालाब ही बोलेंगे। उदाहरण के लिए कहता हूँ भोपाल का बड़ा तालाब, आप उसको इस किनारे खड़ा होकर देखिए आपको दूसरा किनारा ही नजर नहीं आता और वो समुन्दर लगता है आपको, लेकिन नाम क्या है, बड़ा तालाब, उससे थोड़ा छोटा होता तो छोटा तालाब। तो इसलिए यहाँ अपने झील भी रिवाइव करिए तो वो भी तालाब ही है। तो ऐसे कर करके हमने 100 से ज्यादा तालाब अभी तक रिवाइव किए और अभी हम 11 स्टेट्स में काम कर रहे हैं एक साथ।
1: अच्छा।
0: हमने गांव से शुरू किया था लेकिन अभी हम उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, पौंडीचेरी, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, एवरीवेयर वी आर वर्किंग।
1: आने वाले समय में किस किस जगह को कौन से तालाब आपने टारगेट किए कि अब यहाँ पर काम करें?
0: नहीं, टारगेट हम नहीं करते हैं, हम क्या है अगले साल के लिए हमेशा एक नई लिस्ट बनाते हैं।
1: अच्छा।
0: और वो लिस्ट बनती है लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग। भाई मान लो आप स्पॉन्सर हैं, आप किसी गांव से निकले हैं और आप यूएस में रहते हैं और आपके पास अभी पैसे की कोई कमी नहीं है और आप बोलते हैं मुझे अपने गांव के तालाब की बहुत याद आती है, मैं जिस तालाब में नहाया हूं अभी वो एकदम कचरा घर बन चुका है, मैं इसको रिवाइव कराना चाहता हूं।
1: अच्छा।
0: तो हमारी टीम जाती है, उसको रिवाइव करती है, जो खर्चा होता है वो देते हैं।
1: अच्छा, तो इस तरह से फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है और
0: फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है। दूसरा है कुछ कॉर्पोरेट है, मान लो मैं एक कंपनी हूं और मैंने इस जिले में एक अपनी कंपनी लगाई हुई है और मैं पूरा मेरा प्रोडक्शन ग्राउंड वाटर से है, मान लो मैं कोल्ड ड्रिंक की बना रहा हूँ, मैं पैक्ड वाटर बना रहा हूँ, तो मैंने ऊपर वाला प्लॉट खरीदा है उस जिले का या उस गांव का, मैंने नीचे का पानी नहीं खरीदा है, क्योंकि जब मैं वाटर एक्सट्रैक्ट करता हूँ, स्पेशली ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करता हूँ, तो वो उसी प्लॉट का पानी नहीं कि निकल के आता है, वो वहां से 1 किलोमीटर के दूर का भी पानी आता है, वो 500 मीटर दूर का भी, लेकिन वो तो आपने खरीदा नहीं है, आपने तो सिर्फ वो प्लॉट खरीदा है। तो फिर आपकी एक कॉर्पोरेट जिम्मेदारी बनती है कि जिस क्षेत्र का आप रिसोर्सेस यूज कर रहे हो, जिस पर पब्लिक का हक था, यहाँ की हवा पर पब्लिक का हक है, जितना एक कंपनी के मालिक का हक है उतना ही गांव के एक आदमी का हक है, तो आप कम्युनिटी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो फ्री में, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस सोसाइटी के लिए, उस क्षेत्र के लिए आप कुछ करें। इसीलिए CSR लाया गया, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो बड़े कॉर्पोरेट है वो अपने प्रॉफिट का 2% निकाल के अलग रखते हैं और उस क्षेत्र के लिए खर्च करते हैं जहां पे उनका प्लांट काम कर रहा है, और ये मैंडेटरी है, ये हर कॉर्पोरेट को करना ही करना है। हम क्या करते हैं, उन कॉर्पोरेट को बोलते हैं कि भाई आपकी फैक्ट्री यहाँ पे है, आपसे 20 किलोमीटर दूर एक तालाब है जो गांव वाले रिवाइव कराना चाहते हैं और हम उसको रिवाइव करने के लिए रेडी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है हमें सपोर्ट करने की। तो वो CSR के अंतर्गत जरूरी है, सब मदद करते हैं, कुछ कॉर्पोरेट हमारी मदद करते हैं और ऐसे करते करते अभी तक हमारा 60 से ज्यादा कॉर्पोरेट पार्टनर्स हमारे बन चुके हैं अलग अलग क्षेत्र।
1: जैसे मेरे जैसे कोई आम जन के लोग अगर जुड़ना चाहें सफाई के या रिवाइव करने के लिए तो वो क्या कर सकते हैं?
0: देखो, शुरुआत तो घर से होती है। अगर तालाब में जो कचरा है वो भी हर इंडिविजुअल का ही कचरा है ना, किसी ने जाके एक ट्रक कचरा तो डाला नहीं है एक साथ, तो हमारा हर घर से एक एक बोतल निकलती है जब वहाँ पे एक ट्रक कचरा होता है। तो जब मैं स्कूलों में जाता हूँ, मैं बच्चों को बोलता हूँ अगर आपने 5 किलो प्लास्टिक स्कूल में इकट्ठा कर लिया तो मतलब आपने 1 स्क्वायर मीटर पॉन्ड आपने साफ
1: कर लिया। बेहतर है कि उसे गंदा ही ना किया जाए।
0: हाँ, तो तालाब को रिवाइव करने के 2 तरीके हैं, एक आप जाके तालाब से कचरा निकाले, एक आप तालाब में कचरा जाने ही ना दे। तो जब आप जाने नहीं देते तो वो ज्यादा एफिशिएंट होता है और ज्यादा काम का होता है, इसलिए हम स्कूल के बच्चों को जोड़ते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे ही बदलाव ला पाएंगे, इसके अलावा और कोई, क्योंकि जब आप बड़े पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं और एक छोटे पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं, मतलब अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो बड़े पेड़ का सक्सेस रेट बहुत 5-10% होता है, बड़े पेड़ नहीं बच पाते, छोटे पेड़ तो आप लगाते ही रहते हैं, जंगल लगाइए, तो वो एडॉप्ट कर लेते हैं नई जगह को, उनको अंदर सीखने की क्षमता होती है। तो इसलिए हम बच्चों को जाके बहुत सारी वर्कशॉप करते हैं, हम बच्चों के साथ जाके बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो तालाबों को गंदा ना हो।
1: मतलब हर बड़े काम की शुरुआत जो है वो छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे बदलाव से की जा सकती है। रामवीर जी, आप यहाँ पर आए और हमारे पॉडकास्ट में इतने सहज तरीके से आपने इतनी अच्छी बातें बताई जल संरक्षण के बारे में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप भी ये छोटे छोटे बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं, कचरा कम फैलाएं ताकि जो हमारी वाटर बॉडीज है वो गंदी ना हो। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए नीति को, नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे तालाबों के संरक्षण और विकास के लिए प्रयासरत पॉन्डमैन के नाम से प्रसिद्ध रामवीर तंवर के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत में आइए सुनते हैं विदुषी कल्पना झोकरकर का शास्त्रीय गायन। राग है सालक वराली तोड़ी।

आप सुन रही थी विदुषी कल्पना झोकरकर का शास्त्रीय गायन, राग था सारग वराली तोड़ी। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। इसके अलावा आप हमारे केंद्र को सुन रहे हैं प्रसार भारती न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। सुबह के 10 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है जबलपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुरभि तिवारी, वाचन स्वर दीपा सिंह। जिले की चिट्ठी में बात सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जबलपुर में राष्ट्रपति ने लोगों से योग को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने की अपील की। उन्होंने जिले के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में

0: शिक्षा, शोध और भारतीय संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया। इसके बाद राष्ट्रपति ग्वारीघाट पहुंचकर मां नर्मदा की आरती में भी शामिल हुए। वहीं रानी दुर्गावती के 462वें बलिदान दिवस पर राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जबलपुर एयरपोर्ट का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। समारोह में वीरांगना को श्रद्धांजलि और सशस्त्र सलामी दी गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने देश का पहला एकीकृत डिजिटल न्याय मॉडल शुरू किया है। इससे पुलिस, अदालत, जेल और फॉरेंसिक विभाग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। साथ ही प्रथम नाम की एआई प्रणाली भी शुरू की गई है, जो मामलों की संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करेगी। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद और मंत्री राकेश सिंह ने निर्माणाधीन रानी दुर्गावती फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। करीब 7 किलोमीटर लंबा यह फ्लाईओवर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद करेगा। वहीं जल्द ही जबलपुर से कोलकाता के बीच सप्ताह में 3 दिन सीधी उड़ान शुरू होने की तैयारी है। इससे व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी फायदा मिलेगा। इसी बीच जबलपुर के मटर और सिंघाड़ा को जीआई टैग मिला है। इससे इन उत्पादों की अलग पहचान बनेगी और किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है। महिला सुरक्षा के क्षेत्र में भी जबलपुर को बड़ी उपलब्धि मिली है। यूएन वुमेन की सेफ सिटीज परियोजना के लिए देश में सिर्फ जबलपुर का चयन हुआ है। इस योजना से महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थान और सुरक्षित बनाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत जबलपुर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें नए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र और लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि दी गई। श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। जिले में नशे से दूरी है जरूरी 2.2 अभियान भी शुरू हो गया है। 30 जुलाई तक स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। अब बात स्थानीय निकायों की। राज्य वित्त आयोग की समीक्षा बैठक में पंचायतों और नगर निकायों की आय बढ़ाने, पारदर्शी वित्तीय व्यवस्था और सौर ऊर्जा जैसे विषयों पर चर्चा हुई। पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय में सतर्कता विभाग की समीक्षा बैठक हुई। अधिकारियों से पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करने की अपील की गई, ताकि यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। शिक्षा और पर्यावरण की बात करें तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई। इसमें पर्यावरण संरक्षण, जल बचाव और भारतीय ज्ञान परम्परा पर विशेषज्ञों ने विचार साझा किए। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिए हैं कि दूसरे राज्यों से आकर जबलपुर में काम करने वाले सभी डॉक्टरों के लिए प्रदेश का वैध मेडिकल रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस को ऑपरेशन सेफ क्लिक 2.2 अभियान जारी है। स्कूलों में विद्यार्थियों को साइबर ठगी से बचने और जरूरत पड़ने पर 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत करने की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में जीआरपी का ऑपरेशन हमदर्द भी जारी है। रेलवे स्टेशन पर रहने वाले निराश्रित लोगों की पहचान कर उन्हें परिवारों और सरकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और अब कृषि की खबर। कृषि विभाग की टीम ने प्राकृतिक खेती और खरीफ फसलों की तैयारियों का निरीक्षण किया। किसानों को बेहतर बीज, संतुलित उर्वरक और कम पानी वाली फसलों की जानकारी दी गई। विज्ञान और उद्यमिता से जुड़ी दो अच्छी खबरें भी हैं। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में कृत्रिम आंख लगाने की तकनीक का सफल प्रयोग हुआ। वहीं महिला उद्यमिता और डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देने पर भी मंथन हुआ। मौसम की बात करें तो जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। खरीफ फसलों की बुआई को फायदा हुआ है। बरगी बांध में पानी की आवक अभी धीमी है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। अंत में बात उन लोगों की, जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर स्वरोजगार की नई कहानी लिखी है। जबलपुर के अभिषेक भावे ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से मिले ऋण से अपना कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान खड़ा किया। आज की तारीख में उनका टर्नओवर सालाना 15 लाख रुपए तक पहुंच गया है। वहीं जबलपुर की ही शैल पटेल ने आजीविका मिशन से मिली मदद से चाय नाश्ते की दुकान शुरू की, जो पति के निधन के बाद उनके परिवार का सहारा बनी है। इतना ही नहीं, ग्रामीण आजीविका मिशन की बैंक सखियों की बदौलत अब गांव में ही बैंकिंग की सुविधा मिल रही है। परखेड़ी गांव की क्षमा ठाकुर जैसी बैंक सखिया बायोमेट्रिक मशीन से लोगों को नकदी निकासी और जमा जैसी सेवाएं दे रही है। जबलपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे जबलपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुरभि तिवारी का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का। यह प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
2: मीडियम वेव 462.9 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
3: हेलो MH हॉटलाइन।

0: स्वागत है सभी श्रोताओं का फरमाइशी फिल्मी गीतों के सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन में। स्वीकारे आपके रेडियो दोस्त योगेंद्र पांडे का स्नेह भरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम का पहला फोन कॉल लेने से पहले हम अपने सभी सुनने वाले श्रोताओं को बता दें कि आप भी हमें इन नंबरों पर फोन करके अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। और हमारे वीर श्रोता जिनकी फरमाइश पिछले कार्यक्रमों में पूरी हो चुकी है, उनसे बार बार अनुरोध है कम से कम 2 माह इंतजार करें ताकि हमारे नए श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़कर अपनी पसंद का गीत सुन सकें। नए श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे तो कार्यक्रम की रोचकता और खूबसूरती भी बढ़ेगी। फिलहाल लेते हैं आज का पहला फोन कॉल। हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: नमस्ते।
0: नमस्कार। स्वागत है आपका एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपकी पसंद का गीत जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे आप क्या करते हैं। अच्छा, और साथ में रेडियो भी सुनते हैं। कैसा लगता है रेडियो सुनना? और रेडियो के माध्यम से जो कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं और वो कार्यक्रम जब आप तक पहुंचते हैं तो वो कार्यक्रमों की प्रस्तुति और कार्यक्रमों का जो प्रस्तुतीकरण है वो कैसा लगता है, आप कैसा महसूस करते हैं सुनने के बाद?
1: अच्छा लगता है सर, अच्छा लगता
0: है। हम आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट तक पहुंचा रहे हैं, सुनिए आपके रेडियो सेट पर।

0: हेलो एम एच हॉटलाइन,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन बात कर रहे हैं?
1: जी, मैं श्रीपाल गोयल, हरियाणा भादोहा से।
0: गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम एच हॉटलाइन कार्यक्रम में। और सबसे पहले अपनी पसंद का गीत बताएं।
1: ये फिल्म है जिसका गाना है मेरे ख्वाबों का हर एक मंजर उड़ा दे।
0: जिस फिल्म का
1: जी
0: बताइए गोयल जी, क्या करते हैं
1: आप? काम करते हैं बस
0: जी।
1: जा
0: आपसे थोड़ा सा अनुरोध करेंगे, आपके पास जो रेडियो सेट या आप जो है जिसमें सुन रहे हैं कार्यक्रम, उसको थोड़ा सा दूर करेंगे तो आपकी आवाज़ हम तक बिल्कुल सही तरीके से पहुंच पाएगी।
1: सर, मैं अभी ड्यूटी जा रहा था, रास्ते में था और कॉल ट्राई कर रहा था, कॉल भी लग गई।
0: अच्छा, कॉल लग गई तो रास्ते में ही, मतलब ड्यूटी जाते समय किससे जा रहे थे, बाइक से जा रहे थे या कार से?
1: सर, ट्रेन से। अभी तक
0: अच्छा, ट्रेन से। तो आपने लगाते लगाते ट्राई कर लिया और फोन लग गया।
1: हाँ जी, जी जी बिल्कुल।
0: कैसा लगता है जब फोन कनेक्ट हो जाता है और बात हो जाती है?
1: तो काफी अच्छा लगता है। तो यही हमारी इच्छा होती है कि आपसे बात हो जाए, अपनी पसंद का गाना सुनने को मिल जाए, तो सुकून मिलता है।
0: बहुत सुकून मिलता है। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि हमारी पसंद का गीत तो हम कहीं भी सुन सकते हैं, या सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे या कहीं पे भी सुन सकते हैं, लेकिन जब वो फरमाइश के तौर पर एक रेडियो के माध्यम से जब वो गीत आता है तो उस समय क्या महसूस होता है, थोड़ा बताइए हमारे सभी श्रोताओं को।
1: सर, सबकी इच्छा होती है कि उसका नाम रेडियो पे आए, संतोष सुन रहा है इस टाइम पे, काफी श्रोता ट्राई कर रहे हैं, उनकी भी कॉल लगेगी अभी।
0: बिल्कुल, ये तो बड़ी मशक्कत का काम है कि लगातार फोन लगाते रहना, फोन का कनेक्ट होना और उसके बाद अपनी पसंद का गीत सुन पाना। तो अभी आपका फोन भी लग गया और गीत भी तैयार है, हम पहुंचा रहे हैं आप तक, सुनिए।
1: धन्यवाद।

0: हेलो, एम एच हॉटलाइन।
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: नमस्कार,
1: मैं बात से बोल रही हूँ, रुपड़िया।
0: आपसे एक बार फिर से निवेदन करेंगे, आपका रेडियो सेट थोड़ा सा दूर करके बात करेंगे तो आपकी आवाज़ हम तक आ पाएगी। जी बताइए, आपका नाम बताएं।
1: मेरा नाम हीरू पड़िया।
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं बात से बोल रही हूँ, जिला धार।
0: धार से अपनी पसंद का गीत हम को बताए। जी, सुहागरात फिल्म का ये गीत है, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में।
1: हाँ जी,
0: बताइए आप क्या करते हैं?
1: मैं छोटी सी दुकान है सर जी, हम दोनों जाना है, बच्चे अपने, हमारा दो मियाँ बीवी है और मेरे परिवार है सर,
0: और
1: जेवर है ये। हाँ,
0: दुकान के साथ साथ रेडियो भी दुकान में ही सुनते हैं?
1: हाँ, हम रेडियो ही सुनते सर, हम टीवी का नहीं, सब वो नहीं है।
0: कौन सा केंद्र आप सबसे ज्यादा सुनते हैं आकाशवाणी का?
1: आकाशवाणी, युवाणी सब सुनते हैं, खेती है, किसान सब सुनते हैं।
0: कौन सा केंद्र ज्यादा सुनते हैं आकाशवाणी का? इंदौर सुनते हैं, खंडवा सुनते हैं या और भी कोई दूसरा?
1: हाँ, जी सर।
0: कौन सा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है?
1: खेती गृहस्थी,
0: उसमें खेती से संबंधित जानकारी आती है।
1: किसान की बेटी हूँ ना सर जी।
0: जी जी बिल्कुल।
1: हमको पसंद है, रेडियो टीवी के देता हमको शौक नहीं, इतना हम रेडियो ज्यादा सुनते हैं।
0: बिल्कुल। और
1: सुबह भजन आते 9 बजे।
0: हाँ, लोक संगीत में।
1: हाँ, लोक संगीत।
0: आपकी पसंद का गीत हम आज आप तक पहुंचा रहे हैं, सुनिए।

0: हेलो, एम एच हॉटलाइन।
1: हेलो सर जी को राधे राधे।
0: राधे राधे।
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ सर, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: स्वागत है केसरी जी आपका इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले हम आपकी पसंद का गीत जो है वो आप बताएं हमें।
1: अनुरोध अनुरोध मूवी से सुनवा दीजिएगा सर,
0: बोल बताएं
1: आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर।
0: एक बार फिर से, आप अनुरोध करेंगे या रेडियो सेट अगर पास में हो तो उसको थोड़ा
1: नहीं
0: सा।
1: नहीं नहीं सर,
0: जी
1: मोबाइल ऐप पर सुनते हैं हम तो।
0: एक बार
1: और
0: वापस से बोल बताएं।
1: आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर।
0: जी बिल्कुल। तो केसरी जी बताइए क्या करते हैं आप, अपने बारे
1: सर
0: में
1: मैं
0: बताएं।
1: आर्टिस्ट हूँ, पेंटर।
0: पेंटिंग का कार्य करते हैं,
1: जी हाँ,
0: तो पेंटिंग किस तरह की, थोड़ा सा सभी को
1: वॉल
0: बताएं।
1: पेंटिंग,
0: जी
1: दीवार लेखन, चित्रकारी हुई, ये काम है सर अपना। और प्लस में खेती भी है गांव पर। जी
0: अच्छा, तो वॉल पेंटिंग में आप संबंधित कार्य जो रहता है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या किस तरह से अपने
1: हाँ
0: पास।
1: सर,
0: जी
1: कौन जहाँ भी हम काम करते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट नंबर लिख देते हैं नाम के साथ, जब कभी किसी को आवश्यकता लगती है तो वो कॉन्टेक्ट कर लेते हैं।
0: कितना समय हो गया आपको करते हुए।
1: ये सर 15 से 16 15 16 साल के करीब हो गए सर।
0: 15-16 वर्षों से कर रहे हैं, मतलब कि इस कार्य में आपकी बिल्कुल महारत है।
1: हाँ सर, इसमें महारत तो कभी किसी को कमी तो रह ही जाती है,
0: जी
1: क्योंकि
0: जी
1: सीखने में सर जितना सीखते जाओ उतना ही कम है। और मेरे हिसाब से तो कोई पेंटर ये नहीं कहेगा कि हम परफेक्ट हो गए हैं
0: बिल्कुल, किसी भी कार्य में हम करते हैं तो
1: सर।
0: ये तो बिल्कुल सही बात है कि जितना हम करते जाते हैं उतनी निपुणता आती जाती है।
1: निपुणता आती जाती सर। और कहते हैं कि तुलसी इस संसार में, भांति भांति के लोग, तो बहुत सारे पेंटर हैं, उनमें सब अलग अलग कलाएं रहती हैं, तो उनमें अपन जब देखते हैं तो अपने को सीखने को मिलता है कुछ ना कुछ सर।
0: क्या बात है। और इसी तरह आपका कुछ गीत भी है कि लोग आते हैं लोग जाते हैं, और इन्हीं आने जाने चलने में आपकी फरमाइश हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनिए।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन, श्री पांडे साहब, सादर सप्रेम, प्यार है, नमस्कार।
0: नमस्कार, और बताइए कौन बात कर रहे हैं और अपना कहां से बात कर रहे हैं?
1: मानवर, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा श्री मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। मानवर, आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल बढ़िया है, और हम भी उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे। और ब्रज भूमि से बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे हम, लेकिन आपकी पसंद का गीत बताएं।
1: मानवर, आज अभिनेता राजेश खन्ना साहब की पुण्यतिथि है। मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है आनंद, मन्ना डे साहब ने गीत को गाया है।
0: जी,
1: जिंदगी कैसी है पहेली है, कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए, ये गीत सुनना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल
1: एमएच हॉटलाइन पर।
0: बिल्कुल सही आपने कहा भी और गाया भी कि जिस तरह से ये फिल्म है और इस गीत के जो बोल हैं वो बिल्कुल ज़िंदगी पे बैठते हैं। और ये एक जीवन है, शुरुआत से लेकर अंत तक कभी हंसना चलता रहता है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, और इसी क्रम में हमारा जीवन जो है चलते रहना चाहिए, लेकिन उदास नहीं होना चाहिए।
1: जी जी, जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए।
0: बिल्कुल, और साथ ही साथ में जानना चाहेंगे, आप ब्रजभूमि से तो मथुरा, मेन मथुरा से आप बात कर रहे हैं या मथुरा के आसपास कहीं से?
1: जी, मैं बिल्कुल मथुरा शहर नगर निगम के अंदर हूँ।
0: जी जी,
1: और आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ शांतनु कुंड के आसपास से।
0: बिल्कुल, और मथुरा के आसपास जो कुछ कहते हैं ना कि 5100 वर्ष पुरानी बात है जब भगवान कृष्ण ने लीला करी थी ब्रजभूमि में, तो आपकी मथुरा के आसपास कोई ऐसा स्थान बताएं जहां पर आज भी उनकी लीलाओं के कुछ अवशेष दिखते हैं और देखने के बाद बड़ा अच्छा भी लगता है।
1: जी, हमारे घर से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूर पर गोवर्धन है,
0: जी,
1: जहां पर भगवान ने गिरिराज महाराज को अपने उंगलियों पे उठाया था।
0: जी जी,
1: और इंद्र देवता के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाया था।
0: जी जी,
1: और दूसरा यहाँ पर निधि वन है, जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि शाम के वक्त निधि वन के सारे जीव जंतु पशु पक्षी बाहर हो जाते हैं और वहाँ भगवान कृष्ण की लीलाएं आज भी होती है रात में।
0: बिल्कुल।
1: और कोई भी उस दृश्य को देखता नहीं, ना उधर कोई जाता है, ऐसा गुप्त रहस्य वहाँ पर है। और कहते हैं कि जो उस दिव्य दृश्य को देख लेता है वो इतना अभिभूत और मगन हो जाता है कि शुद्ध बोध हो जाता है, लोग उसे पागल कहते हैं।
0: क्या बात है, मतलब आज भी इतने वर्ष पूर्व अगर आज भी हम उस धरा पर, उस भूमि पर अगर महसूस करते हैं तो हमें वो सारा जो चलचित्र है वो दिखाई पड़ता है।
1: जी, यहाँ पे कहते हैं कि डाल डाल और पात पात पर राधे राधे कृष्ण कृष्ण होए, और राधा रानी का यहाँ पे अभिनंदन स्वागत किया जाता है जब हम आपसे मिलते हैं या हमसे मिलते हैं, तो राधे राधे के अभिवादन से होता है। और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर, कहते हैं कि ब्रज रस की महिमा भारी, इसमें खेले कृष्ण मुरारी।
0: कुछ आपके मथुरा के आसपास नंदगांव करके भी एक स्थान है, वहां पर भी कुछ अवशेष हैं क्या?
1: जी, नंदगांव और बरसाना है, नंदगांव है और जितने मथुरा है, यहाँ पर बहुत सारे उनके लीला स्थली, क्रीड़ा स्थली, और जो उनके अपने सखाओं के साथ में उन्होंने क्रीड़ाएं की हैं वो सब आज भी उनके प्रतीक रूप में विद्यमान है, और वहाँ पर एक न एक दिव्य और भव्य मंदिर अवश्य बने हुए हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी जानकारी दी, और उस जानकारी के साथ साथ
1: कि सर यहाँ पर अवतार स्थली है भगवान कृष्ण की, और जब कंस को उन्होंने मारा तो विश्राम घाट पे विश्राम किया था, वहाँ आज भी विद्यमान है।
0: जी जी,
1: और इस तरह से गोवर्धन गिरी महाराज ने उन्हें बताई दिया है, और बरसाना में है, नंदगांव में है, उनके बहुत सारे गोकुल में है, महावन में है, ये सब इनके प्रत्येक रूप में बहुत ही अच्छे लगते हैं। जब भी आप आएंगे तो आनंद की अनुभूत होती है, बहुत ही और अभिभूत करने वाला दृश्य होता है।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी जानकारी दी, और हाँ, हम इस बारे में बात करेंगे तो बिल्कुल ये लीलाएं और इनके बारे में बात करना खत्म नहीं होगा, जबकि हमारा समय भी जो है हमें बाध्य करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपका गीत पहुंचा रहे हैं, सुनिए।
1: जी, धन्यवाद।

0: हेलो मैच हॉटलाइन।
1: हेलो नमस्कार,
0: नमस्कार।
1: मैं अमल बसुमतारी बात कर रहा हूँ, रंगापारा सोनीतपुर असम से।
0: असम से
1: जी जी
0: अमर जी बात कर रहे हैं।
1: अमल बसुमतारी।
0: अमल जी,
1: जी जी
0: अमल जी स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और
1: बहुत बहुत
0: सबसे
1: धन्यवाद,
0: पहले
1: मैं आज
0: अपनी
1: पहली बार
0: पसंद का
1: आपके
0: गीत
1: प्रोग्राम में
0: बताइए।
1: कॉल लगा चुका हूँ।
0: पहली बार फोन लगा आपका?
1: जी जी पहली बार, काफी दिनों से कॉल लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कॉल लगा नहीं पा रहे थे।
0: बिल्कुल, हम बात करेंगे इस बारे में। पहले अपनी पसंद का गीत बताएं।
1: फिल्म का नाम रहेगा कुरुक्षेत्र,
0: हाँ जी
1: और इसमें आपका आना दिल धड़कना, ये गाना तो कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में।
0: बिल्कुल, हाँ जी। अब बताइए, पहली बार फोन लगा और कितने समय ट्राई किया आपने?
1: मैंने तो अभी मैं 50 बार डायल किया था, इसके बाद फोन लग गया।
0: और इसके पहले कब से ट्राई कर रहे हैं?
1: इससे पहले तो मैं 2-3 महीने से ट्राई करते रहते हैं लेकिन मिला नहीं है।
0: मिला नहीं,
1: जी जी
0: आज जाके मिला,
1: जी
0: क्या बात है।
1: और असम भी, असम का मौसम भी बहुत अच्छी है,
0: हाँ
1: सुहाना मौसम है, बारिश हो रहा है टिप-टिप।
0: बिल्कुल।
1: जी, और आपका यहाँ का मौसम कैसा है बताइए थोड़ा।
0: अभी यहाँ पर बादल हैं लेकिन बारिश पिछले 7-8 दिन से नहीं हुई है। उसके पहले अभी हुई थी बारिश, लेकिन अभी बादल हैं। बट बारिश जैसा भी कुछ मौसम जो है वैसा नहीं बना है कि बारिश हो।
1: मैं इस गाने को किसी दोस्तों को डेडिकेट कर सकता हूँ।
0: बिल्कुल बताइए।
1: सबसे पहले हमारे असम का ही भाईकुन मुंडा और विमल बसुमतारी, रमेश पात्रो, जगेंद्र रंगती,
0: हाँ जी
1: नीलोफर द्वारा,
0: हाँ जी
1: सौरभ द्वारा, देवाशीष
0: हाँ जी
1: हजूरिका और रुखुबेली नेथा, और हमारे हेलो फॉर्मा चेक्टा ग्रुप के दोस्त है भगवान सिंह परमार, रमेश प्रजापति, श्रीपाल गोयल, दिलीप पाउजा, गंगाधर साबनकर जी, गौतम राय बोले, और हमारे पुरुषोत्तम कुमार है, और शिवा लोहार, राकेश और पूरन वर्मा को डेडिकेट रहेगा।
0: क्या बात है, पूरी लिस्ट आपने
1: और
0: बिल्कुल
1: आपको
0: सामने रख रखी थी।
1: जी, हमें इन दोस्तों से फोन से भी बातचीत होते हैं, फोन से बातचीत करके तो बहुत अच्छा लगते हैं।
0: तो आपकी पसंद का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सुनिए।

0: हेलो, एम एच हॉटलाइन
1: हेलो सोडलाम, गजेंद्र गजेंद्र अहिरवार सागर से बोल रहे सर।
0: जी। गजेंद्र जी, स्वागत है। बताइए अपनी पसंद का गीत।
1: रंग फिल्म का समझा देना,
0: रंग फिल्म का गीत बोल बताएं।
1: तुझे ना देखने से चैन मुझे आता नहीं।
0: क्या बात है, क्या करते हैं गजेंद्र जी आप?
1: कुछ नहीं सर, इंदौर में काम करते कंपनी में, फार्मा कंपनी।
0: अच्छा,
1: तो अभी गांव पे आए थे छुट्टी पे।
0: हाँ,
1: हाँ सर,
0: ठीक है। आपकी पसंद का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सुनिए।
1: ठीक।

0: हेलो एम एच हॉटलाइन।
1: हेलो,
0: अनिल जी, आवाज़ कट कट के आ रही है, थोड़ा सा ऐसा आपसे निवेदन है कि कहीं थोड़ा नेटवर्क में हो जाए तो व्यवस्थित हमको सुनाई दे। हीरो फिल्म का प्यार करने वाले कभी डरते नहीं।
1: हाँ, ये वाला जी। एक
0: जी
1: और हम करना चाहेंगे,
0: जी
1: फोन लगता है, उनसे थोड़ा अनुरोध है,
0: जी
1: वो थोड़ा रुक के फोन करें, 15 दिन या 20 दिन के नए नए श्रोता जुड़ पाएंगे और रुक सकता है। हर रोज श्रोता फोन कार्यक्रम से रुक सकता प्राप्त हो जाएगी, हो सकता है कि कार्यक्रम भी बंद हो जाए, कार्यक्रम चालू होता है, श्रोताओं से अनुरोध है।
0: बिल्कुल, अनिल जी का जो कहना है वो बिल्कुल सही है कि कम से कम, जी अनिल जी का कहना बिल्कुल सही है कि कम से कम 2 महीने तक का जो है वो इंतज़ार करें, उसके बाद ही फिर अपनी नई फरमाइश के लिए फ़ोन करें, क्योंकि इससे कार्यक्रम की रोचकता बढ़ती है। जी अनिल जी, बिल्कुल आपकी पसंद का गीत जो है, जी बिल्कुल हम आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंचा रहे हैं, सुनिए।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो नमस्कार। नमस्कार आदरणीय जी। नमस्कार, मैं जबलपुर एमपी से अशोक सिंह बात कर रहा हूँ। सर जी कैसे हैं आप?
0: बढ़िया। और अशोक जी, आपका स्वागत है एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।
0: जी, सबसे पहले अपनी पसंद का गीत बताएं।
1: कर्तव्य मूवी का, धर्मेंद्र की।
0: जी जी, बोल बताएं।
1: चला बाबू तू कैसा दिलदार निकला।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा गीत है।
1: बाबू तू कैसा दिलदार निकला, चोर चमड़ी की मैं तानेदार।
0: जी, इस फरमाइश के पहले आप कार्यक्रम के बारे में कुछ बता रहे थे।
1: कार्यक्रम सर बहुत अच्छा लगता है आपका, आपकी पेशकश भी बहुत अच्छा है। सभी उद्घोषकों की जितनी तारीफ करे कम है। और अच्छा सुनाई देता है इधर
0: तो वाले पे। चूंकि जबलपुर से बात कर रहे हैं तो जबलपुर के अलावा इंदौर कितने समय सुन पाते हैं?
1: इंदौर समय सर यही बीच बीच में सुनते हैं, उबाड़ी वगैरह जी आपका, और हर जगह जुड़ा रहता हूँ ना सर।
0: और लगभग सभी जगह अपनी फरमाइश जो है वो प्रयास करते हैं कि पूरी हो।
1: सर जी, सर
0: तो अभी कितने महीनों बाद इंदौर में फोन लगा है?
1: इंदौर में सर 1 महीने हो गया होगा।
0: और हमारे सभी श्रोताओं से हम ऐसा अनुरोध करते हैं कि कम से कम 2 माह तक रुकना है, तो आपसे भी ऐसा आग्रह है कि आप 2 माह तक रुकने के बाद ही फिर फोन लगाएं ताकि नए श्रोता जुड़े और आपकी पसंद का गीत हम आप तक पहुंचा रहे। सुनिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गाए कर्तव्य फिल्म के इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों के सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन से आपके रेडियो मित्र योगेंद्र पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की पसंद के फरमाइशी फिल्मी गीतों का लाइव फोन इन प्रोग्राम MH Hot 9 मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। दिन के 11 बजने को है। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा।
1: आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया है आकांक्षा श्रीवास्तव ने। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आकांक्षा आपके साथ। श्रोताओं आज हम जो बोएंगे वही कल हमारी आने वाली पीढ़ी काटेगी। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हम अपने बच्चों को सुख सुविधाएं तो दे देते हैं, लेकिन वो कौन सी ऐसी एक सीख, ऐसी वैल्यू है जो हम उन्हें विरासत में देना भूल रहे हैं या देना चाहते हैं? वो कौन सा ऐसा सबक है जो उन्हें जिंदगी की धूप छाँव में आगे बढ़ाना हम सिखाएंगे? क्या वो सब्र है, मेहनत है या दूसरों का सम्मान? तो

0: आज फोन इन प्रोग्राम में होगी बात इसी बात पर। तो फोन उठाइए, नंबर लगाइए। हमारा फोन नंबर है 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। तो बताइए अपनी राय अपने हिसाब से कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या सीख देना चाहते हैं।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी मैडम, संतोष कुमार राव बात कर रहा था, आदिवासी बहुल क्षेत्र उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: संतोष जी कैसे हैं आप?
1: मैम बहुत अच्छे हैं। लगातार प्रसार भारती के ऐप पर AIR ऐप के माध्यम से OTTP और साथ में DTH के माध्यम से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण सेवा में इन सभी कार्यक्रमों का आनंद देते हैं, जिसके नाम है बात आपकी गीत हमारी। फोन करें, गीत सुने और वतन कराग जैसे कार्यक्रमों का आनंद उठाते हैं। मैडम
0: बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हैं, हमसे जुड़े हुए हैं सभी माध्यमों से, और आज कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बिल्कुल मैम, आपका बहुत बहुत आभार। विषय बताइए ताकि विषय से संबंधित बात कर पाए इसका।
0: जी संतोष जी, हम अपने बच्चों को बहुत सारी सुख सुविधाएं तो दे देते हैं, लेकिन वो कौन सी एक ऐसी सीख है जो हम उन्हें विरासत में देना चाहते हैं, क्या इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, विरासत में अगर कुछ चीजें मिलने वाली होती है तो माता पिता का स्नेह प्यार और नाना नानी का, दादी दादी दादी दादों का जो संस्कार होता है वो सबसे प्रथम आता है। बच्चों को ऐसे संस्कार देने चाहिए जो विनम्रता का सीख भी पढ़ाए और बड़ों का आदर भी करना सिखलाए। बच्चों में अच्छी आदतें हमारे संस्कारों में ही आता है, इसलिए बच्चों को स्नेह प्रेम पूर्वक अगर समझाई दी जाए तो बच्चे आगे चलकर आपका सम्मान भी कर पाएंगे और दूसरों को भी मान रख पाएंगे।
0: जी ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन कई बार क्या होता है हम संस्कार तो दे देते हैं लेकिन उन संस्कारों के तले कहीं ऐसा तो नहीं होता कि बच्चे दब जाते हैं? जैसे संस्कार में कई बार वो अपनी बात भी कहना भूल जाते हैं या नहीं कह पाते हैं कि कहीं मम्मी पापा को बुरा ना लग जाए। हो सकता है कभी वो बच्चा किसी परेशानी में हो लेकिन इसी डर के कारण कि या उन्हें बुरा ना लगे, वो मुझसे गुस्सा ना हो, नाराज ना हो और वो बताना ना चाहे।
1: जी मैम, मैडम ये होता है जैसे एकल परिवार हो गया, खास करके जब मम्मी पापा होते हैं अपने कामों के लिए जब मतलब ऑफिस जाते हैं, बच्चा अकेला सहमा हुआ घर में बैठा रह जाता है। लेकिन यदि अगर संयुक्त परिवार होता है, जैसे दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए और बड़े छोटे भाई बहन हो गए साथ में, तो उनसे अपनी बात वो रख पाते हैं। ऐसे में चाहिए कि घर में अच्छे से घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके पास बच्चों को मोटिवेशन मतलब उनके पास रहना चाहिए, ताकि वो अपनी बातें खुलकर कह सकें। और बच्चे तो इतने प्यारे मासूम होते हैं जो अपनी बातें स्वयं रख पाते हैं। आज की डेट में अगर बच्चों को देखा जाए तो अपनी बातें खुद अपने टीचर से भी बताते हैं, अपने दोस्तों को भी बताते हैं। ऐसे में बच्चों को सीख जरूर दें ताकि वो अपनी बातें खुलकर कह पाए।
0: जी संस्कारों के साथ ये सीख भी देना जरूरी है कि अपने मन की बात आप हमसे बेझिझक कह सकते हैं।
1: जी बिल्कुल मैम, और यही मोटो है आज के विषय का। बहुत ही प्यारा सा विषय आपने आज के इस कार्यक्रम में रखा है और आपकी बातें जो है बहुत ही सार्थक और समर्थ है और इसमें हम भी अपनी सहभागिता कर पाते हैं। बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम होता है बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम। पूरी टीम को हमारा बहुत बहुत आभार और धन्यवाद रहेगा।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सराहना करने के लिए। धन्यवाद संतोष जी, नमस्कार।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आपका स्वागत है। किन से हमारी बात हो रही है?
1: जी नमस्कार।
0: नमस्ते
1: जी मैम, मैं सचिन बात कर रहा हूँ, जिला संभल ग्राम सिरसा से।
0: सचिन जी सिरसा से, कैसे हैं आप?
1: मैम हम अच्छे हैं, आप बताइए कि आप कैसे हैं? आकाशवाणी मध्य प्रदेश में सभी लोग कैसे हैं?
0: जी सभी बहुत बढ़िया हैं। सचिन जी, आज हमारा विषय है, आप अपने आने वाली पीढ़ी को क्या सीख देना चाहते हैं?
1: मैम हम तो अपने आने वाली पीढ़ी को वो वाली सीख देना चाहते हैं जो कि पुराने जो लोग थे वो अपने देश के लिए बलिदान हो गए, कि कैसे उन्होंने अपना तन मन से देश के लिए रक्षा की और अपने न्यौछावर हो गए देश के लिए।
0: जी
1: तो ऐसी ऐसी चीजें अपने देश के बारे में भी आने वाली पीढ़ी को बताना चाहिए।
0: ये तो हो गई देश की बात, कि देश के बारे में हमें उन्हें बताना बहुत जरूरी है कि हमारे पूर्वजों ने इस देश की रक्षा के लिए, उसके सम्मान के लिए क्या क्या किया।
1: हाँ जी।
0: लेकिन आप अपने बच्चे को या अपने आसपास के आने वाली पीढ़ी को, नौजवानों को क्या और ऐसा संदेश देना चाहते हैं जिससे वो अपने जीवन को बेहतर बना सके?
1: देखिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सभी अपनी ईमानदारी से इस देश की रक्षा करें और अपने छोटे बड़ों का आदर करें, अपनी ईमानदारी से रहें देश के।
0: अच्छा, आजकल आपने देखा होगा कि ये जो नई जनरेशन है वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाती है, स्ट्रेस ले लेती है छोटी छोटी बातों का, तो इससे आप उन्हें कुछ बताना चाहेंगे, सिखाना चाहेंगे?
1: देखिए सबसे पहले तो यदि कोई बात को लेकर परेशान है तो सबसे पहले अपने माता पिता, अपने बड़ों को बताना चाहिए।
0: जी डिस्कशन बहुत जरूरी है,
1: तो उसे अपने घर परिवार में साझा करना चाहिए, का निवारण करना चाहिए, जैसे भी समाधान हो।
0: जी, और उनके लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, कि उन्हें हमें ये सिखाना होगा कि हारना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि हार कर खड़े होना असली जीत है।
1: जी।
0: जिससे वो अगर अपनी हार को लेके स्ट्रेस में आते हैं तो उससे दूर हो।
1: हाँ, जी, जी।,
0: जी।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: मैं रानी तलिया छतरपुर मध्य प्रदेश से आपका नियमित श्रोता रशीद अहमद खान बात कर रहा हूँ जी।
0: रशीद जी, कैसे हैं आप?
1: एकदम सही है मैम, आप लोगों का आशीर्वाद एकदम सही करना।
0: आशीर्वाद हमारा नहीं, ईश्वर का है जो हम सभी पे अपनी इनायत बरकरार रखे हुए है
1: जी। सब ईश्वर की कृपा सबके साथ होना चाहिए
0: जी। रशीद जी, आज है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, जिसमें हमारा विषय ये है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या सीख दे रहे हैं। आप अपने आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: संदेश हमारा आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये है, पहले तो अपन ये संकल्प दिलवाते हैं लोगों को कि IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, ये बनेंगे। सबसे पहला संकल्प ये होना चाहिए हम एक अच्छे इंसान बनेंगे।
0: बहुत बढ़िया, क्या बात है।
1: फिर इसके बाद डिसिप्लिन, माता पिता का सम्मान, गुरुजनों का सम्मान, मतलब जिसको अपन एक शब्द में कहें कि अच्छे संस्कार
0: जी,
1: वो अपन देना चाहते हैं नई पीढ़ी को, संस्कारित करना चाहते हैं
0: जी। बहुत अच्छी बात है,
1: आगे चल के बहुत सी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है।
0: ये तो हमने संस्कारों की बात कर ली, इसमें मेन मुद्दा हमारा संस्कार ही है
1: जी,
0: है ना। इन संस्कार ये है कि अच्छे इंसान बने वो, उनमें हिम्मत रहे, उम्मीद की किरण भी उनके अंदर होनी चाहिए, खुद पर विश्वास सबसे ज्यादा होना चाहिए कि वो अच्छा कुछ कर सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ये मतलब तीन चार गुण जो है कि मतलब एक अनुशासन है, ईमानदारी है, आज्ञाकारिता है, ना मतलब अपना लक्ष्य निर्धारित करके उसी तो सिलो धीमे धीमे चले लेकिन प्रयास करते रहे।
0: बिल्कुल,
1: अगर अपन उदाहरण दें कछुए और खरगोश की कहानी सारे लोगों ने सुनी है
0: जी,
1: भले ही धीरे चलेंगे लेकिन जीत धीरे चलने वाली और नियमित चलने वाली की होती है। लगातार प्रयास करते रहें तो विजय मतलब मिलती है
0: जी। इसका संबंध सीधे बच्चों की पढ़ाई से है रशीद जी।
1: फॉलो करते रहे बच्चे, एक बार हम कहते हैं कि मतलब सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है मैम,
0: मेहनत जरूरी है,
1: प्रयास करना ही पड़ेंगे, मेहनत करना ही पड़ेगी
0: जी।
1: ये हम चाहते हैं नई पीढ़ी अपने मेहनत करती रहे और अपनी ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ते रहे तो ईश्वर अच्छा करेगा।
0: बिल्कुल, आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत
1: है हम। पेरेंट्स उसमें मतलब थोड़ा सा वर्कलोड दे देते हैं कि इतने परसेंट चाहिए हमें कि 99 तो घड़ी वरना छड़ी, ये नहीं होना चाहिए।
0: ये नहीं होना चाहिए, परसेंट के पीछे मत भागिए।
1: सिर्फ पढ़ाई का वो अपने मतलब वैल्यूएशन थोड़ी है अपना, अपने पूरी लाइफ का वैल्यूएशन कर रहा डिग्री नहीं, सर्टिफिकेट डिग्री है वो, एक शिक्षा संस्थानों के प्रमाण पत्र भर है वो। लाइफ बहुत बड़ी चीज है और लाइफ में बहुत से उद्देश्य है, खाली डिग्री लेना उद्देश्य नहीं है मैम, क्योंकि बहुत बड़े बड़े विद्वानों को देखा जाए उनके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं थी लेकिन उन्होंने वो काम करके दिए जो बड़े बड़े डिग्री वाले नहीं कर पाए,
0: क्योंकि उनका उद्देश्य सफल होना नहीं, वो संतुष्ट थे। तो हमें भी बच्चों को यही सिखाना होगा, सफल होना है लेकिन सिर्फ सफल होना नहीं सिखाना है, एक अच्छा और संतुष्ट इंसान बनना भी हमें उन्हें सिखाना होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो संतुष्ट होना तो सबसे बड़ी चीज है, संतोष सबसे बड़ा धन है। तो इस तरह से अगर बच्चे काम करेंगे नई पीढ़ी तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और मिलती है, बहुत से उदाहरण अपने सामने हैं। परिस्थितियों से घबराना नहीं है, धीरज रखना है, संयम रखना है और अपने ईमानदारी के साथ अपने आगे बढ़ते जाना है। माता पिता गुरुजनों का सम्मान अपन को अवश्य करना है, उसी से अपनी राह अपनी आगे आसान होती आएगी।
0: बहुत सही, बिल्कुल सही बात कही आपने रशीद जी। सभी श्रोता सुन रहे होंगे और वो भी यही कहना चाहेंगे कि हाँ, हमें बड़ों के सम्मान के साथ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ना है, सफल जीवन जीना है संतुष्टि के साथ।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं जो मिला उसको स्वीकार कर रहे हैं, जो अपन चाह रहे हैं वो खोजने के चक्कर में जो अपने पास है उसका भी अपन आनंद नहीं ले पाते
0: जी। उसे गंवाना नहीं है, संजो कर रखना है, साथ लेकर चलना है जो हमारे पास है।
1: बिल्कुल, जो अपने पास है उसी को स्वीकार करें। ये हम नहीं कह रहे कि बड़े स्वप्न ना देखें, बड़े स्वप्न देखना भी जरूरी है
0: जी। स्वप्न देखेंगे तभी तो उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे हम,
1: लेकिन स्वप्नों की अंधी दौड़ में अपन इतने ना खो जाएं कि जो अपने पास है उसको भी अपन भूल जाएं। जो ईश्वर ने दिया है उसे स्वीकार करें और उसी को मैं अपने संतुष्ट हो गए, एंजॉय करें और आगे के लिए अपन कोशिश करते रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद रशीद जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा
1: जी।
0: धन्यवाद आपका।
1: ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू।

0: हेलो नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, मैं दमोह से बोल रहा हूँ, कृष्ण घी वाला।
0: किशन जी?
1: कौन बोल रही हैं?
0: जी, मैं आकांक्षा बोल रही हूँ। कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: किशन जी, आज हम बात कर रहे हैं कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या सीख देना चाहते हैं।
1: युवा पीढ़ी के लिए ये है मेरा संदेश कि आप ईमानदारी के साथ सत्य बोलते हुए ही कार्य करते जाइए। अगर हम कहीं पर भी बनावटी बात करेंगे, झूठ बोलेंगे, तो उसको फिर संभालने के लिए हमें और भी अधिक बोलने पड़ते हैं झूठ। इसलिए जो जिससे भी बात हो रही है उसको सत्य करें। सच्ची बात को याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो मालूम है जो चीज है वो सत्य सत्य ही रहती है। एक और, अपने काम को बड़े लगन से करें। यदि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो विषय भी आपने दिया हुआ है उसको बड़े ध्यान से और निष्ठा के साथ पढ़ते जाएं, और माता पिता और बड़ों के प्रति पूरा सम्मान रख हमेशा रख। यही मेरा अपने छोटे बेटों के बच्चों को संदेश है।
0: बहुत बड़ी और सही सीख देने की बात आपने कही है किशन जी, क्योंकि बुजुर्गों की दी हुई सीख वो छांव है जो कड़ी धूप में भी हमारे पैर नहीं जलने देती।
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा ही होना चाहिए।
0: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि आपकी दी हुई सीख सुनने वाले सभी युवा श्रोता, सभी श्रोता मानेंगे, समझेंगे, सराहेंगे। आपने हमसे बात की, इसका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्ते।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आपका स्वागत है। किनसे हमारी बात हो रही है?
1: दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहा है दीदी, मनोज नामदेव।
0: मनोज जी कैसे हैं? मनोज जी
1: बिल्कुल दीदी बढ़िया हैं, आपका आशीर्वाद है, भगवान कृपा से बढ़िया हैं, आकाशवाणी भोपाल का साथ है बराबर।
0: ये साथ आपका हमेशा बना रहे यही हमारी आकांक्षा है। मनोज जी, आज हमारा बात आपके गीत हमारे में सवाल ये है, आप अपने आने वाली पीढ़ी को, नई जनरेशन को, युवा पीढ़ी को कोई सीख देना चाहते हैं जीवन से जुड़ी?
1: आज का टॉपिक बढ़िया है, आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनको मैं एक ही जनरेशन देता हूं और उनको सिखाता भी हूं कि जो अपनी संस्कृति धरोहर है उनको ना तो भूलें और उनको आत्मा में जो हम बसाए हुए हैं आप भी उनको बसाए रखें, क्योंकि आज की जो नई युवा पीढ़ी है उनको तो पता ही नहीं है कि जो अपनी संस्कृति जो धरोहर है वो होती क्या है, या तो वो किताबों मिलती है मान लो। तो बच्चों को मैं यही शिक्षा देता हूँ कि जो अपनी संस्कृति धरोहर है उनको आप ऐसे ही सजो के रखें।
0: जी, ये तो हो गई धरोहरों की बात कि हाँ हमें अपनी सभ्यता संस्कृति, ये जो हमारी धरोहर है उन्हें बचा के रखना है, लेकिन उन्हें एक अच्छा इंसान बनने के लिए आप क्या सीख देना चाहते हैं?
1: जी बिल्कुल दीदी, अच्छा इंसान अपने हर माता पिता का यही दायित्व होता है कि उनकी अच्छी बढ़िया शिक्षा हो और शिक्षा के साथ साथ उनको ऐसी लाइन पकड़ाई जाए जो अपने पैरों पे आगे चके वो खड़े हो सकें। हर माता पिता की यही लालसा रहती है कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें,
0: अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छे इंसान बने, और उनमें सब्र होना भी जरूरी है। आप देख रहे हैं आजकल के युवाओं में सब्र नहीं होता।
1: बिल्कुल दीदी, सही बात है, ये बिल्कुल कहें कि बच्चों को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हर चीज सब्र करना चाहिए, गम अपन जो कहते हैं गांव की भाषा गम खाना चाहिए।
0: जी, असल में आजकल के बच्चे कि जल्दी से सब कुछ हासिल करना चाहते हैं।
1: बिल्कुल सही बात,
0: तो उन्हें ये समझना होगा कि जिंदगी के बड़े फैसले और बड़ी सफलताएं वक्त लगता है उनमें।
1: बिल्कुल दीदी,
0: आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। नमस्ते
1: दीदी, आपको भी दिल से धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आपका स्वागत है। कौन बोल रहा है?
1: मैडम जी, ग्राम पिपरिया तहसील भगवान जिला रायसेन।
0: पिपरिया से जगत सिंह जी, आज है कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या शिक्षा देना चाहते हैं, क्या सीख देना चाहते हैं, इस बारे में आप कुछ कहेंगे?
1: जी, अगले बारी पीढ़ी में ये है मैडम जी, अच्छी बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी उनको बातें बताओ कि अपन को ये करना है, कि किसी से ज़्यादा गुस्सा नहीं होना है, अच्छी बात सुनो, अच्छी समझो बात, अच्छी पढ़ाई लिखाई करो।
0: ये आपने बहुत बढ़िया बात कही है कि गुस्सा नहीं करना है। देखिए, हम बहुत सी चीज़ें तो सिखा देते हैं, लेकिन गुस्से पे कंट्रोल करना ये बच्चों को हम नहीं बता पाते हैं,
1: जी
0: है ना। कई बार क्या होता है, उनकी हम सारी इच्छाओं को तो पूरा कर देते हैं, तो उसके कारण मान लीजिए कभी हम उनकी बात पूरी नहीं कर पाते हैं तो उनमें गुस्सा आने लगता है, बहुत तेज़ गुस्सा आता है बच्चों को।
1: जी, क्या पहले ही से सिखाना पड़े थे जब बच्चों को, जब सही रहता है, बाद में नहीं सीख पाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं
0: जी
1: नहीं सीख पाते हैं।
0: जी ये हमें बताना होगा कि छोटी छोटी सी बातों पे गुस्सा नहीं करते हैं।
1: जी,
0: ये बहुत अच्छी और अलग बात आपने हमसे कही जगत सिंह जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो चलिए अपनी नई पीढ़ी के हुनर को तराशने के लिए अगली कॉल लेते हैं। नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। किन से बात हो रही है हमारी?
1: धन्यवाद महोदया, मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हरिविलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
0: हरिविलास जी, आज है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, जिसमें आज का हमारा विषय है कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या सीख देना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं?
1: आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, उनका भविष्य अच्छा बने, कर्णधार बने, वो भावी अच्छी शिक्षा मिले उन्हें, देश के प्रति उनके प्रति हमेशा प्रेम बना रहे, देशभक्ति पे बल बल जाए, बोलो यही सिखाना चाहते हैं।
0: ये तो बात बिल्कुल सही है कि हमें उन्हें अच्छा इंसान बनाना है, देश के बारे में बताना है, लेकिन उनमें भी कई छोटी छोटी सी खामियां आजकल हम देखते हैं जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कि बच्चे परसेंटेज की दौड़ में लगे हुए हैं, मुझे इतना परसेंट बनाना है, अच्छे नंबर लाना है, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार कहीं कभी कभी उनकी ये सफलता की जो दृष्टि है वो उन्हें कमजोर कर देती है, उनमें स्ट्रेस आ जाता है
1: जी,
0: तो डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे आजकल।
1: लगी हुई है जी, जैसे कि मोबाइल की इंटरनेट की लत भी लगी, उससे भी दूर रखना है उन्हें, ये सीख देना, संस्कार देना है, इस तरह के कई अवगुण आते हैं, उनसे तो दूर रखना है बच्चों को।
0: बहुत बढ़िया, ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि ये
1: और
0: जो
1: उन्हें सदमार्ग पे चलना ही सिखाना है, संस्कार देना, बस यही अपना फर्ज है।
0: देखिए, टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमसे ज्यादा अच्छे

0: से वो कर लेते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन हमें
1: जी
0: उन्हें ये सिखाना होगा कि स्क्रीन टाइम और रियल टाइम में बैलेंस कैसे करना है।
1: बैलेंस करना है, इसलिए जीवन पंग तो बन जाए, फिजिकल एक्टिविटी भी होना जरूरी है। अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे जीवन का पंग बन जाएगा भी।
0: जी बिल्कुल सही।
1: पर परिवार में संवादहीनता आएगी, परिवार भी नहीं जुड़ पाएंगे वो अच्छी तरह से।
0: और देखिए ये सीख तो हम ही दे सकते हैं ना अपने बच्चों को,
1: जी
0: है ना, तो ये हमें समय समय पे उन्हें बताते रहना होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बाकी तो
1: बताना
0: बच्चे
1: होगा।
0: आजकल खुद ही बहुत समझदार हैं, लेकिन ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो अगर हमारी आंखों के सामने होती हैं तो हमें कई बार उन्हें रोकना होगा, टोकना होगा और समझाना होगा।
1: जी वो पाश्चात्य सभ्यता की चकाचौंध में थोड़ी भटकते हैं, उनके भटकने से बचाना होगा।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, आपने हमसे बात की, बहुत अच्छी बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, नमस्कार,
0: नमस्ते।

0: हेलो नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किनसे हमारी बात हो रही है?
1: अलका,
0: अलका जी, कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: मैं भोपाल से बोल रही हूँ।
0: अलका जी, आज कार्यक्रम में हमारा विषय है कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या सीख देना चाहती हैं। कोई ऐसी बात है जो आप चाहेंगी कि आपके बच्चे या आने वाली पीढ़ी वो काम ऐसा करे?
1: वैसे तो आज की जो पीढ़ी है, आने वाली, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, समझदार भी बहुत है।
0: जी
1: बहुत कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं, जैसे वो लोग आज की टेक्नोलॉजी और इन सब में बहुत ज्यादा है तेज।
0: जी
1: पर मैं फिर भी अपने, जैसे हम लोगों का एक्सपीरियंस होता है, उससे मैं कुछ बातें चाहती हूँ कि बच्चों में होनी चाहिए।
0: जैसे
1: जैसे बच्चे सबसे पहले तो अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट करें।
0: बहुत बढ़िया, बहुत सही बात आपने ये कही है।
1: हाँ, उन्हें वास्तविक जीवन के अनुभव हैं, बुक्स हैं, लोगों से सीधे बातचीत, कहीं अधिक मूल्यवान है इन चीजों से जो वो स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हैं। उन्हें सिर्फ अपने दोस्त

0: सोना, खाने में आप अपने घर का जो स्वास्थ्यवर्धक पौष्टिकदायक हमारा खाना है वो खाएं, जैसे हमारे फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, इन सबको करके सिर्फ एक वीक तक पूरे कॉन्शियस होकर उसको फील करें कि हमारे हेल्थ के ऊपर वो क्या प्रभाव डालता है।
1: क्या बात है।
0: उनको अपने कल्चर, हेरिटेज, अपना ट्रेडिशन, मतलब उसमें प्राउड फील, गर्व महसूस होना चाहिए कि हम भारतीय हैं।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी और अच्छी बातें आपने बताई हैं। लेकिन एक बात ये भी है ना, जब तक हम वो चीज़ फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे देख के सीखते हैं, हमारे सिखाने पे वो सीख नहीं लेते हैं। कई बार बच्चा जितना देखता है उतना सीखता है। तो इसके लिए हम
0: बिल्कुल
1: पेरेंट्स
0: बिल्कुल
1: को भी
0: हाँ
1: ये करना होगा कि आप भी वही करें जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे करें।
0: बिल्कुल। और एक सबसे बड़ी चीज और मैं चाहूंगी कि बच्चे, पेरेंट्स भी, जब आपने बोला है ये सही बात है, बिल्कुल जैसा हम करेंगे बच्चे बिल्कुल मिरर होते हैं, जैसे
1: बिल्कुल
0: देखते हैं उसी तरह से फॉलो करते हैं वो।
1: जी,
0: एक बच्चे मतलब हम लोग हम्बल भी रहे, जो हमारी माँ प्रकृति है उसके प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए हमेशा। मतलब आप हवा, पानी, जल, वायु, ये सब कुछ तो आप वहीं से ले रहे हो,
1: जी
0: उसको जिस तरह से मतलब हमें पूरी तरह से कृतज्ञ, ऐसे हम्बल रहना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए उनके लिए।
1: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे थॉट्स हैं अलका जी आपके, बहुत अच्छे विचार हैं। निश्चित ही आपने अपनी जनरेशन को ये चीज़ें दी हैं, तभी आप ये कह पा रही हैं कि और भी जो बच्चे सुन रहे हैं वो इन चीज़ों पर अमल करें।
0: बिल्कुल की कोशिश यही रहती है, बोले बच्चे सीखे हमें देखकर बोलने से ज्यादा।
1: बहुत अच्छा अलका जी, आपने बहुत अच्छी बातें करी हैं। उम्मीद करते हैं ऐसी ही अच्छी सीख आप और अपने आस पड़ोस के लोगों में, आस पड़ोस के बच्चों को सिखाने का प्रयास करेंगी। आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू।
1: तो श्रोताओं, आज के इस फोन इन प्रोग्राम का निचोड़ यही है कि चाहे हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को कितनी भी सीख दें, बच्चे वो नहीं सीखते जो हम कहते हैं, बल्कि वो सीखते हैं जो हम करते हैं। इसीलिए सबसे बड़ी सीख हमें खुद उनके सामने एक मिसाल बनकर देनी होगी। और साथ ही बच्चों को देना होगी उम्मीद, हिम्मत और इंसानियत का पाठ, और ये भी कि वो खुद पर विश्वास करें, सब्र करें और मेहनत करें। एक दिन उन्हें वो सब मिलेगा जो वो चाहते हैं। इसी के साथ आज का कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे यहीं समाप्त करने की आकांक्षा को दीजिए अनुमति, और आप बने रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन प्रोग्राम बात आपके गीत हमारे, प्रस्तुत किया था आकांक्षा श्रीवास्तव ने। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: संसद के सोमवार से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज भारत के पहले निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 ने अपनी पहली परीक्षण उड़ान भरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहली बार है जब भारतीय निजी कंपनी द्वारा देश में ही डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है। श्री मोदी ने स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। राज्य सरकार ने फिजूल खर्ची रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें सरकारी विदेश यात्रा, महंगे सरकारी कैलेंडर, डायरी, वीआईपी स्वागत समारोह, हवाई यात्रा, होटल्स में होने वाली बैठकों सहित कार्यशालाओं पर पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ ही व्हीकल पुलिंग नीति भी अनिवार्य की गई है। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन नाम से एक राष्ट्रव्यापी जल संरक्षण अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य मानसून से पहले और मानसून के दौरान वर्षा जल के संचयन को बढ़ावा देना है। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि रोहित शर्मा लॉर्ड्स में होने वाले तीसरे वनडे मैच के बाद भी टीम इंडिया के लिए खेलते रहेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच ये मुकाबला कल लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। पहला पत्र शामिल कर रहे हैं कोटवा, नारायणपुर, बालापट्टी, बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की। दुबिया नेवदा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय की। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज, ज्योति और बाबू रियांश ठाकुर की। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा की। महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप और केशव पटेल की। बक्सर बिहार से सरफुरुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी की। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी की। सरीमपुर बक्सर से आसमा खातून अंसारी, राज एसडी अंसारी, मेहताब अंसारी और आफताब अंसारी और महराज अंसारी की। सुनना पसंद किया है बेताब फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार का गाया हुआ। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

अगला अनुरोध शामिल कर रहे हैं आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ और शाइना शर्मा की। देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा और गणेश मिस्त्री की। अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, किशोरी बोस, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू, ढुंडुन और उनके परिवार के सदस्य। इंदौर से सपना संगीता रोड से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया की। बरसात फिल्म का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया हुआ। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर ने गीत लिखा।

अगली ख्वाहिश टावर स्ट्रीट न्यूटन छिंदवाड़ा से निसार खान, उमेश गुप्ता, रफीक खान, अमरनाथ जतन नायक और महेश शुक्ला की है। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले और महसवाड़ी मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोड़कर की है। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, पोतरा मुजतबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर की। सुनना पसंद किया है विरासत फिल्म का गीत, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है। जावेद अख्तर ने गीत लिखा, अनु मलिक की धुन है।

0: फिल्म विरासत के इस गीत के लिए मिली जुली फरमाइश थी सारणी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि वाघ, पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल की। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमंद्र और सम्मति पंचोलिया की। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, सरोजनी और कुंती साहू की। तो आज कार्यक्रम में बस इतने ही गीत शामिल किए। आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: सुनते रहिए मालवा किसान आकाशवाणी इंदौर।

0: और
1: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: अरे रेवती ताई, या रविवारी आपल्याला उज्जैनला चलायचं आहे, तयार रहा बरं का।

0: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं। और झूलते झूलते सुनते हैं
0: मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: अरे दीदी धीरे धीरे।
1: बड़े अच्छे लगते हैं।
0: क्या

0: और
1: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं संग्रहालय से इस कार्यक्रम में कामिनी काय कांतारे की तीसरी कड़ी।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का तीसरा भाग। अभी तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि महल छोड़कर चले जाते हैं और वृक वन से निकलकर पैठार गांव पहुंच जाते हैं। उधर अवंती में रानी पिंगला चिंतित हैं। राजपुरोहित देवज्ञ उन्हें ध्यान करके बताते हैं कि राजा भर्तृहरि इस समय दक्षिण दिशा में हैं तथा वो अस्त्र विहीन हैं। उनके पास वाहन भी नहीं है। महामात्य तथा रानी अत्यंत चिंतित हो जाते हैं कि उनका प्रिय अश्व नीलमणि का क्या हुआ। महामात्य देवज्ञ को स्वर्ण मुद्राएं देना चाहते हैं तो वे कहते हैं इसे आचार्य नागदत्त के आश्रम में पहुंचा दें। आज हम आचार्य नागदत्त के आश्रम चलेंगे।

0: अवंती से नलवा की ओर जाने वाले एक मार्ग ग्राम्यांचल में बस्ती से कुछ हटकर स्थित है आचार्य नागदत्त का सेवाश्रम, एक सुचर्चित चिकित्सा केंद्र। नागदत्त इसके संचालक हैं। उनके नेतृत्व में त्रिलोचन सहित कई भेषज्ञ और चिकित्सक इसकी देखभाल करते हैं। अनेक छात्र, शिष्य और सेवक उनके मार्गदर्शन में चिकित्सा और सेवा कार्य में उनका हाथ बटाते हैं। आश्रम की प्रतिष्ठा कुष्ठ रोग के उपचार के लिए है, लेकिन अन्य रोगों का शमन भी वहां होता है। औषधियों उपचारों के अनुसंधान हेतु कार्यशाला एवं प्रयोगशालाएं हैं। जड़ी बूटियों की कृषि वहां के खेतों में की जाती है। विशाल परिसर में फैले हुए सेवाश्रम में दीनहीन, परित्यक्त और निराश रोगीजन एक परिवार में रहते हुए अपने जीवन का एक नया अध्याय खुलने की प्रतीक्षा करते हैं। शरीर से अशक्त, गूंगे, बहरे, अंधे, लूलों की बुझदी आंखों में आशा की नवल दीप्ति का आश्रय है नागदत्त का यह सेवाश्रम। तभी वहां एक घोड़ा आता है।
1: अरे भैया,
2: अरे अरे अरे अरे, अरे, अरे, अरे, अरे कितना प्यारा है, कितना सुंदर बलिश।
0: क्या हुआ, कहां से आया, इसका स्वामी कौन है, कितना सुंदर और बलिष्ठ, अवश्य ही कहीं से भटक कर आया है। हटो, हम भी देखें।
3: इस असाधारण अश्व का स्वामी निश्चित ही कोई ऐश्वर्य पुरुष होगा। मित्र, यह आया कहां से? संभवतः रात में किसी ने इस जगह बांध दिया होगा।
4: आहत और क्लांत है, किंतु फिर भी चपल और जीवंत, बहुत मूल्यवान प्रतीत होता है। सज्जा भी मणि माणिक और रजत स्वर्ण के उपादानों से की गई है।
1: अरे मित्र, अशु की देह भर में घाव हैं, क्षत बिक्षत घाव भी 2-3 दिन पहले के लगते हैं। मित्र, इन पर मृतिका लेप आवश्यक है, बरसाती कीटों और मक्खियों से सुरक्षा के लिए।
4: बिल्कुल।
3: कैसा होगा इनका स्वामी, जिसने इसका न तो उपचार किया और न ही इसे छोड़ने के बाद वापस आकर इसकी सुधि ली। लो, ब्रह्मचारी चंद्रसेन आ रहे हैं, संभवतः कुछ व्यवस्था हो ही जाएगी।
5: अरे, बहुत पीड़ित लगता है, बार बार अपनी टापें उछाल रहा है, जैसे अपनी आर्त विकलता और पीड़ा को व्यक्त कर रहा हो। मुंह से तो कुछ कहेगा भी कैसे, पशु है ना। कोई जाकर आश्रम में सूचित कर दे।
4: क्या लाभ, आश्रम में मनुष्यों के चिकित्सा की व्यवस्था है, पशु चिकित्सा एक अलग अनुशासन है।
1: अरे मित्र, हम इसे मक्खियों कीटों के कोप से बचा सकते हैं, व्रणों पर मिट्टी का लेप कर दें और आसपास धुआं कर दें।
4: हाँ, बिल्कुल ठीक।
3: स्याता, तब तक इसका स्वामी यहाँ पहुंचे और ज्ञात हो सके कि अश्व कैसे आहत हुआ।
5: आप लोग देखें कि क्या हो सकता है। मैं भेषक त्रिलोचन को सूचना करता हूं। और देखिए, यहां भीड़ ना लगाइए, हटिए यहां से, पशु को विकल होकर अधिक कष्ट होता है। त्रिलोचन संभवतः आचार्य की पर्णकुटी में गए हैं।

0: प्रणाम करता हूँ आर्य।
1: सुशांत रहें। अरे त्रिलोचन, आप ही असमय विराजें।
0: उपचार है तो आज कम लोग आए हैं।
1: अच्छा,
0: जो आए भी हैं वो उस अश्व के निकट उत्सुकता से एकत्र हैं जिसे कोई आश्रम के द्वार पर विगत रात्रि बांध गया है।
1: क्या
0: सुना है? दुर्लभ अश्व है और घायल है। चंद्र मुझे उपचार के लिए बुलाने आया था, मैंने सोचा आपको भी बता दूं।
1: अच्छा किया।
0: बहुत सारे लोग वहां जमा हो गए हैं आज।
1: स्वाभाविक नहीं है,

0: जानते हो बेशक त्रिलोचन, यहां जो रोगी, दुखी, वृद्ध, वंचित आश्रम के आश्रय में है, वे भी तो हैं मनुष्य ही। महीनों वर्षों से अपने परिवार समाज से कटकर इस एकांत में अपना समय अथवा आयु व्यतीत कर रहे हैं। कीड़ों से बिलबिलाते गली कुश्त का रोगी भी मरना नहीं चाहता। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? एक अदृश्य विवशता है, घटना विहीन एक रास्ता, खूब तो होती ही है। सब में कुछ नया पाने, नया करने की इच्छा होती है
1: जी।
0: जीवन में रंजन का भी स्थान है। मुझे लगता है कि धर्मचर्या के साथ आश्रम में मनोरंजन का भी अवसर जुटाना चाहिए कुछ।
2: आर्य,
0: सूचना
2: थी कि मुनि अनंत सागर से सेवा आश्रम में पधारने वाले।
0: उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था, संभवतः कहीं मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण कहीं रुक गए हों। तुम्हें तो यह ज्ञात ही है कि सेवा आश्रम के प्रेरक वही हैं।
2: क्षमा करें आर्य, जैन मुनि प्रायः चातुर्मास में संचरण नहीं करते।
0: वो रूढ़िवादी मुनि नहीं है भद्र, उन्हें परोपकारवादी कह सकते हैं। वो सेवा को तपश्चर्या मानते हैं। मिलोगे तो जान जाओगे। और हां, तुम भी अश्व को जाकर देख लो, मैं कुछ देर में पहुंचता हूं वहां। तुम गए नहीं वत्स त्रिलोचन?
2: आपके साथ ही चलूंगा।
0: अच्छा,
2: जिज्ञासाओं को लेकर बैठे रहने की दृष्टता कर गया। आरे, मुझे तो यह भी ज्ञात नहीं कि आप कौन हैं, कहां से हैं, इस आश्रम की स्थापना कैसे हुई। एक रहस्य जैसा है यह आश्रम और इसका संचालन।
0: वत्स, रहस्य कुछ भी नहीं है, जो है वो सामने है, खुला हुआ, ताक झांक की आवश्यकता ही नहीं है, कोई भी देख सकता है।
2: आचार्य, मैंने जीवन में बहुत ऐश्वर्य देखा है, खूब सुविधाएं भोगी हैं, उकताने की सीमा तक, कदाचित उन्हीं के फलित का सामना कर रहा हूं और आज निपट अकेला। मां भागिनी, पिछड़े हुए 10 वर्ष बीत गए।
0: मनुष्य दुखों के बीच ही अपने सुख का संचार रचता है। ये इच्छा ही दुख से लड़ने और उसे पराजित करने का संकल्प जगाती है। सुख की यही खोज उसे अपने दुख को कम करने, उसे बांट लेने की प्रेरणा देती है। मैं देखता हूं बेशक त्रिलोचन, तुम्हारा मन आज सुस्थिर नहीं है। चलो, मैं भी चलता हूं उस रहस्यमय अश्व को देखने।

0: पर्ण कुटीर से निकलकर त्रिलोचन और नागदत्त आश्रम की उस ओर चल देते हैं जहां अश्व बंधा है।
1: त्रिलोचन, तुमने अभी कहा कि तुम मेरे विषय में कुछ नहीं जानते, तो जान जाओ मेरे पास गोपनीय कुछ भी नहीं है, प्रदर्शन योग्य भी नहीं है। पाप पुण्य, धर्म अधर्म, कर्म को कर्म। हां, तुम्हारे बारे में जानकर भी मुझे अच्छा लगेगा। एक बात और है वस्त्र लोचन, यहां आश्रम में जितने दीनहीन, उपेक्षित, व्यथित हैं, सबकी अपनी अपनी व्यथा कथा है। कुछ की त्रासदी तो अत्यंत रोचक है।
2: प्रणति महोदय।
1: अरे चंदन राय जी, आप कैसे हैं? आपका रोग कैसा है? चिकित्सा से लाभ तो हो रहा है ना? रोग क्या फिर से उभर आया?
2: वही बात है, देखो ना, मैं इस आश्रम पर भार बनता जा रहा हूं नागदत्त।
1: निराश ना हो।
2: मुझ जैसे लुंजे बीमार को महाकाल के द्वार से उठा लाए हो तुम नागदत्त। बताओ ना, जिसे परिवार ने मरने के लिए छोड़ दिया, उसका भार तुम सब लोग ढो रहे हो।
1: सब बिसरा दीजिए, भूल जाइए चंदन राय जी। हाँ ये बताइए, श्वास रोग की कितनी कृपा है आप पर। एक

0: औषधि विकसित हुई आश्रम में, सेवन करके बताइएगा कि कितनी प्रभावशाली है।
1: ओहो, तो परीक्षण होगा मुझ पर?
0: जी
1: उचित है, उचित है। दुष्प्रभाव से मृत्यु भी हो गई तो रोगग्रस्त विकलांग वृद्ध का भार भी तो कम हो जाएगा ना पृथ्वी से।
2: क्या कह रहे हैं चंदन भाई जी?
1: सही कह रहा हूँ भाई।
2: ऐसे कैसे हम आपका साथ छोड़ने देंगे? ये सूखे हाथ जिनके स्पर्श से मिट्टी में प्राणों का संचार हो जाता है, ये आंखें जो वृक्षों और वनस्पतियों में रंग और रस भरती हैं, कान जो ऋतुओं की पदचाप चीनते हैं, आपका होना तो आश्रम के जीवन का होना है। आचार्य श्री कहते हैं कि यहाँ की ऊसर पथरीली जमीन आपके गुण और समर्पण से ही संपन्न हुई।
1: अरे बंधु, मैं अनपढ़ भूमिया, किंतु जब तक पत्नी जीवित रही वह पेट भरती रही, उसकी मृत्यु के पश्चात संतानों ने उपेक्षा की, फिर अनदेखी और अंत में अपमान।
0: त्रिलोचन, हम सबके संसार की कहानियां हमारे आसपास हैं। वो कितना शुभ दिन होगा जब ये स्वस्थ निरोग होकर अपने अपने घर परिवार में लौटे।
3: मैं कभी नहीं लौटूंगा उस नीच मती बांधवों के बीच, स्वार्थी, अमानुष, दुष्ट। हाँ, एक बार मिलूंगा अवश्य उनसे जाकर, यह दिखाने कि यही है वह देह जो कभी यौवनाओं को मोहित करती थी, जिसे मैं इत्र चंदन पुष्प की गंध में सराबोर रखता था। वही शरीर पहले अशोभन हुआ और फिर अशुभ अस्पृश्य। किसे विश्वास होगा कि मैंने अनेक प्रख्यात मल्लों को भूमि सुंघाई? कौन पहचानता है मुझे आज?
2: आप दक्षिणापथ के चालुक्य राज के यशस्वी मल्ल इस दशा में? ओह
0: हाँ, वही है। परंतु तुम इन्हें कैसे जानते हो? बंधु कर्ण कुंडल, अधीर मत होइए, आप निश्चय ही आरोग्य प्राप्त करोगे। और हाँ, हम सबके साथ इसी आश्रम में रोगियों की सेवा भी करना है आपको।
3: मुझे विश्वास है आर्य, आपकी अनुकंपा से मुझे पुनर्जीवन मिलना ही है।
0: वत्स त्रिलोचन, तुम कर्ण कुंडल को कैसे जानते हो? स्वयं भी क्या दक्षिण पत्र से हो? यद्यपि तुम्हारे आचार्य ने अपने पत्र में स्पष्ट लिखा था कि तुम्हारे अतीत के संबंध में कोई जिज्ञासा न रखी जाए, वंश गोत्र ग्राम की कोई पूछताछ न की जाए, पर तुम्हें देखकर मेरी उत्सुकता बढ़ती जाती है। कभी उचित समझो तो बता देना कि कहां से यहां तक पहुंचे हो।
2: बताने जैसा कुछ नहीं है आर्य, और ऐसा भी कुछ नहीं है जिसे छुपा कर रखना हो। हां, आपके संबंध में जिज्ञासा इसलिए है कि यह आश्रम आपकी कीर्ति का साकार साक्ष्य है। मुनि अनंत सागर इसकी प्रेरणा है और यहां के सब स्वयं समर्पित होकर अद्भुत कार्य कर रहे हैं।
0: त्रिलोचन, वह में तुम मेरे पुत्र से बड़े हो और भ्राता से छोटे, इस प्रकार मेरी पीढ़ी और मेरी अगली पीढ़ी के बीच तुम्हारी उपस्थिति एक संवाद सेतु के जैसी है। अपनी राम कहानी कहते हुए मुझे आंतरिक तृप्ति मिलेगी और कदाचित तुम्हारे सामने एक अनुभव पृष्ठ खुल सकेगा। अरे हाँ, यहां तो समूचा आश्रम ही एकत्र हो गया है, ये क्या हो रहा है?
2: सहज जिज्ञासा वश आर्य, अश्व जिन परिस्थितियों में पाया गया है वह रहस्यात्मक है, विशेष रूप से तब जब भटकने के बाद भी उसकी देह पर बहुमूल्य मणिमाणिक किसी ने छुए तक नहीं।
0: आश्चर्य तो है ही।
2: हटिए हटिए, आप लोग परे हटिए। हाँ हटिए, आचार्य श्री अश्व का अवलोकन करने पधारे हैं।
0: अरे ये नीलमणि, ये यहां कैसे आ पहुंचा?
4: अपना नाम सुनकर अश्व

0: आप इसे जानते हैं?
1: मैं ही क्या, पूरी उज्जैनी इसे जानती है। राज्य का रत्न, ये देश देशांतर में ख्यात, महाराज भर्तृहरि का अत्यंत प्रिय, उनका निजी अश्व।
2: किंतु इस अवस्था में कैसे?
1: हे देव, कुछ अमंगल ना घटा हो।
3: आचार्य, इसकी प्रारंभिक शुश्रूषा कर दी है, कीटों और मक्खियों से छुटकारा मिल गया है, इसे व्रणों पर मिट्टी चढ़ा दी है, चैन मिल गया है, अब ये उतना विकल नहीं है, आर्य त्रिलोचन इसे संभाल लेंगे।
1: त्रिलोचन ही क्यों, जब तक पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक इसकी परिचर्या का दायित्व तो तुम पर रहेगा चंद्रसेन।
3: जैसी आज्ञा।
1: इसे यहां से हटाकर मेरी पर्णकुटी तक पहुंचा दो।
3: जी जी।
1: वहीं रहेगा ये पूर्ण स्वस्थ होने तक, और तब तुम इसे अवंती ले जाकर महामात्य को सौंप देना।
3: अवश्य आचार्य श्री।
1: मैं पत्र दूंगा तुम्हें महामात्य तक पहुंचाने के लिए। मुझे जानते हैं वे, पता नहीं क्यों महाराज की कुशलता जानने के लिए मन व्यग्र हो रहा है।
3: आचार्य,
1: इस अश्व ने शंकाएं को शंकाएं उत्पन्न कर दी है। हाँ, तुम्हें एक पत्र और भी दूंगा, वसुंधरा के लिए।
3: वसुंधरा कौन देव?
1: चंद्रसेन अश्व को ले जाओ। आप सब यहां से जाएं, अपने अपने स्थान पर, अपने अपने काम पर जाएं। अश्व का प्रकरण समाप्त हुआ, चलो त्रिलोचन।
0: नीलमणि की दशा आपको विचलित कर गई है आर्य?
1: अन्य संदर्भ भी है त्रिलोचन, मैं उज्जैनी में रहा हूं, मुझे इसके प्रति राजा भर्तृहरि का अनुराग भली भांति विदित है। वो एक पल के लिए भी इसे आंख से ओझल नहीं होने देते थे। नीलमणि यहां है तो राजा भर्तृहरि कहां है? तुम जानते हो कि प्रजा और राज्य की नियति का सूत्रधार नरेश होता है। हाँ। नरेश की अनुपस्थिति संकट के आगमन का संकेत देती है।
0: मैंने उसे देखा है, घाव बताते हैं कि कहीं ना कहीं द्वंद हुआ है।
1: हाँ।
0: किसी शत्रु या दस्यु दल का कार्य हो सकता है, किंतु सारे के सारे घाव शरीर के निचले भाग में ही हैं। मुंह, ग्रीवा, पीठ पर खरोंच तक नहीं है, अतः अश्वरोही भी घायल हुआ होगा।
1: किंतु यहां बांधकर वो चला कहां गया?
0: बांधकर गया है तो लौटेगा भी? इतने हष्ट पुष्ट अश्व को कोई यूं ही नहीं छोड़ देता आर्य। फिर यह संकेत भी मिलता है कि यह दस्युजनों का कृत्य नहीं है, क्योंकि अश्व की संपदा यथावत है, शत्रु का भी नहीं, क्योंकि वह जीवित है और अपहृत भी नहीं हुआ। जो भी हो, अश्वरोही घायल तो हुआ होगा, किंतु जीवित अवश्य है, जो आश्रम की सुरक्षा में इसे छोड़ गया।
1: तर्कता तुम्हारे अनुमान विवेक सम्मत है त्रिलोचन। आओ कुछ पल यहां बैठे, यहां शीत मंद संचरण है वायु का, थोड़ी शांति मिलेगी, विचार स्थिर होंगे।
0: देव, जब भी अवंती और राजा भर्तृहरि का विषय आता है तो मुझे लगता है कि जैसे आपका स्वर करुणा से भर उठता है, कोई गहरा नाता है आपका इनसे, लेकिन शीघ्र ही आप सहज होने लगते हैं। क्या ऐसा कुछ है कि वहां की कुछ स्मृतियां अवसर पाते ही उभरने लगती हैं आपके मानस में?
1: हाँ अवंती, स्मृतियां साथ नहीं छोड़ती, स्मृति के गर्भ से बार बार कौंध कर बाहर आ जाती है। अवंती के एक मध्यवित परिवार में मैंने जन्म लिया था, ठहरा हुआ सा जीवन था, एक रस। लोग जन्म लेते, व्यवसाय में व्यस्त रहते, संतान उत्पन्न करते और मर जाते।
0: जी देव।
1: वंश की तीन पीढ़ियां मैंने जन्म मृत्यु के इसी क्रम में बीतते देखी।
0: जी।
1: धार्मिक वातावरण था परिवार का, स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, महादेव, सभी का क्रमबद्ध पूजन अर्चन, इस याचना इस अभीप्सा के साथ की धरती पर प्रचुर

0: दासियां, वैभव का विस्तार हो रहा था।
1: जी देव।
0: इस आपाधापी में मैं महीनों विदेश रहता प्रवास पर। पहले मैं सफल था, अब मैं विशिष्ट हो गया था। महीनों बाद अवंती लौटता तो जन समूह पथ पर पलक पावड़े बिछा देते, विरुद्ध गा रहे चारणों की भीड़ लग जाती, भिक्षुक याचना में खड़े रहकर सुख वैभव की आशीषें उछालती। वारांगनाएं प्रतीक्षातुर दृष्टि से मेरी भंगिमाओं को क्षुधित भाव से निरखती। ये सब सफलता का, विशिष्टता का ताम झाम था। मैंने ये सुख देखा है
1: जी।
0: और एक दिन 11 वर्ष पहले वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन मैं विपुल धन और वैभव के साथ देशांतरों से लौटकर अवंती पहुंचा था। मेरी अगवानी के लिए सदा नगर द्वार पर मेरी पत्नी मुझे मिला करती थी
1: जी।
0: उस दिन मैं उसे और अपने पुत्र को खोज रहा था, दोनों ही कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे।
1: फिर क्या हुआ देव?
0: मैं दुश्चिंताओं से घिर गया। तभी मेरा ध्यान एक जनसमूह की ओर गया, जहां बीच में अधपके बालों, चीकट कपड़ों वाला एक उन्मादी सा व्यक्ति लोगों की तालियों के साथ नाच रहा था। उसके कनसुरे गायन पर बाल वृद्ध नर नारी हंसते हुए तालियां बजा रहे थे। त्रिलोचन, जानते हो वो व्यक्ति कौन था?
1: कौन था महोदय?
0: महाश्रेष्ठी ऋतुर्पण, महाराज गर्भभिल के समय का धन कुबेर, जिसे कभी अपने ही धन का अनुमान नहीं था। मैं स्वयं भी कभी ऋतुर्पण बनने का सपना देख रहा था। बंधु, धन बहुत अस्थिर होता है, सफलता स्थायी होती है। मेरा आदर्श, मेरा स्वप्न सामने खड़ा था, विवर्ण, विक्षिप्त, विद्रूप ऋतुपर्ण। घर पहुंचा तो पत्नी वसुंधरा मिली, अनुचरी चेटियों से घिरी। मौन यांत्रिक स्वागत किया उसने मेरा, बिना किसी आवेग या उत्तेजना के। पुत्र वहां कहीं नहीं मिला, बताया गया कि अपने मित्रों के साथ बिहार के लिए कहीं चला गया।

0: नागदत्त के मानस पटल पर वह दृश्य सजीव हो उठता है जब उसकी पत्नी वसुंधरा ने उसे त्रास दिया था।
1: वत्स, अनुभव का एक बिल्कुल नया संस्करण तुमने सुना
2: जी।
1: काष्ठ पुतलिकाओं का एक विशाल संग्रहालय जहां प्रत्येक गति, हर एक भंगिमा यंत्र चालित है, भावना शून्य अस्तित्व, जाने क्या क्या सोचता रहा, खींचता रहा, कभी कभी हंस भी लेता। 11 वर्षों से यही कर रहा हूं मैं। पीड़ा को उस विस्मृत की खूंटी पर टांगे हुए मुनि श्री अनंत सागर के सामने ये सब कह देना चाहता था, पर अवसर ही नहीं मिला।
3: बूंदाबांदी प्रारंभ हो गई है आचार्य।
1: हाँ,
3: प्रतीत होता है कि वृष्टि अभी तीव्र हो जाएगी, चलें?
1: अवश्य चलना ही हो, और चंद्रसेन से कहना होगा कि नीलमणि के घावों पर पानी ना पड़ने दे। मेरी चिंता उचित है ना? वैसे चिकित्सा तुम्हारा

अभी आप महेश कटारे के उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो प्रस्तुति का तीसरा भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित।

0: भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। वाचक विनय।
1: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से, इस कार्यक्रम में कामनी काय कांतारे, इस धारावाहिक की तीसरी कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है इस घंटे की खास खबरों का।
2: संसद के सोमवार से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज भारत के पहले निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 ने अपनी पहली परीक्षण उड़ान भरी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह पहली बार है कि जब भारतीय निजी कंपनी द्वारा देश में ही डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है। श्री मोदी ने स्काई रूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हुए एक पोस्ट में इस मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया ऐतिहासिक अध्याय बताया। प्रदेश सरकार ने फिजूलखर्ची रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें सरकारी विदेश यात्रा, महंगे सरकारी कैलेंडर, डायरी, वीआईपी स्वागत समारोह, हवाई यात्रा, होटलों में होने वाली बैठकों सहित कार्यशालाओं पर पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ ही व्हीकल पूलिंग नीति भी अनिवार्य की गई है। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2026 के लिए चयनित अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थियों को आज से 20 जुलाई तक एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर प्रोफाइल पंजीयन और दस्तावेज अपलोड करना होगा। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि रोहित शर्मा लॉर्ड्स में होने वाले तीसरे वनडे मैच के बाद भी टीम इंडिया के लिए खेलते रहेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला कल लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन खुद को हमेशा खुश रखिए। इसी सुविचार के साथ हाजिर हूँ मैं कल्पना मिश्रा, आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा लेकर। तो स्वीकारिए हमारा प्यार भरा अभिवादन। नमस्कार बहनों, समय समय पर सरकार महिलाओं के उत्थान से जुड़े मुद्दों पर हमेशा से ही प्रकाश डालती रही है, जिसके लिए कई तरह के अभियान और कार्यक्रम चलाए जाते रहे हैं। तो महिलाओं को इन सब के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम रेडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने के छोटे छोटे प्रयास करते रहे हैं। और आज हम बात करेंगे शक्ति स्कॉलर्स फेलोशिप के बारे में। तो यह फेलोशिप भारत में महिलाओं के मुद्दों पर शोध करने वाले उभरते हुए विद्वानों को सहयोग देने के उद्देश्य से बनाया गया ये 6 महीने का कार्यक्रम है। बहनों, इस फेलोशिप का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा, इसके अलावा लिंग आधारित हिंसा, कानूनी अधिकार और न्याय तक पहुंच, साइबर सुरक्षा, यौन उत्पीड़न की रोकथाम, महिलाओं का नेतृत्व, राजनीतिक भागीदारी, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, श्रम भागीदारी, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं और कार्य जीवन संतुलन जैसे विषयों पर शोध करना है। इस फेलोशिप में पात्रता पाने के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से कम ग्रेजुएशन की डिग्री पा चुके 21 से 30 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिक इस पद के लिए पात्र माने जाते हैं। इसके साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर उच्च अनुसंधान योग्यता प्राप्त

कर रहे या पहले से ही योग्यता प्राप्त कर चुके उम्मीदवारों या मजबूत अनुसंधान अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी और बहनों इस फेलोशिप के तहत 1,00,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है। इसके सिलेक्शन की क्या प्रोसेस है वो भी हम जान लेते हैं। तो आवेदकों का मूल्यांकन एक विशेष समिति द्वारा किया जाता है और जो उम्मीदवार सिलेक्ट हुए हैं उनका चयन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाता है। बहनों, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW ने संकट में फंसी महिलाओं को तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए 24 आवर्स हेल्पलाइन नंबर 14490 शुरू किया है और राष्ट्रीय आयोग ने सामाजिक संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों से इस हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूकता बढ़ाने की अपील भी की है। तो बहनों, बातें और भी होंगी, इससे पहले आइए चलते हैं मनोरंजन की ओर इस गीत के साथ। फिल्म है मेरे सनम और गायक कलाकार हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी।

0: अभी हमने मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में मेरे सनम फिल्म का गीत सुना। बहनों, आज है हमारे बीच मंजुला मिश्रा, जिन्होंने कई वर्षों तक रेडियो में लोकगीतों के माध्यम से अपनी पहचान बनाई है। आज उन्हीं से बघेली लोकगीतों के महत्व और बारिश के मौसम में गाए जाने वाले लोकगीतों के बारे में चर्चा करेंगे।
1: आपका हमारे कार्यक्रम महिला सभा में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम।
2: नमस्कार
1: मैडम। हमारे बघेलखंड की परंपरा है कि कोई भी जैसे शुभ काम होते हैं उसमें जब तक बघेली लोकगीत ना गाए जाएं तब तक ऐसा लगता है कि प्रोग्राम अधूरे से लगते हैं।
2: सही बात।
1: तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
2: कितना भी बाहर के मतलब वो हो, कुछ भी लगाओ, लेकिन जब तक अपने पारंपरिक गीत, चाहे शादी हो चाहे किसी भी मौसम में हो, अपने जो पारंपरिक गीत होते हैं उनकी एक अलग ही महत्ता है।
1: जी जी जी।
2: और उसको मतलब लोग ज्यादा पसंद करते हैं।
1: जैसे कि वर्षों से लोग गीत गायन होता रहा है ना, बहुत पहले से ये परंपरा हमारे बघेलखंड में चली आ रही है और आज भी उसने समाज में एक अपनी अलग जगह बनाई हुई है, तो आपका इसके बारे में क्या विचार है?
2: आजकल लोकगीत का अपना एक अलग महत्व है, चाहे बाहर कितना भी ऑर्केस्ट्रा लोग चलाएं वो चले, लेकिन जब तक अपने पारंपरिक लोकगीत होते हैं और धीरे धीरे लोकगीत का महत्व बढ़ता जा रहा है। लोग अब कई जगह मतलब ऑर्केस्ट्रा में भी लोकगीत चलने लगे हैं।
1: जी जी। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि मतलब लोकगीत आज भी
2: जीवित है और ज्यादा बढ़ रहा है।
1: उनका
2: लोग पसंद कर रहे हैं।
1: जी जी, ये बड़ी बात है।
2: ये बड़ी बात।
1: जैसे कि मैडम, तीज त्योहार, शादी ब्याह के अलावा भी पारंपरिक गीतों का चलन है ना। अब जैसे ये बरसात का मौसम ले लीजिए, तो बरसात के मौसम में किस तरह के गीत गाए जाते हैं वो आप हमारी श्रोताओं को थोड़ा सा सुना दीजिए।
2: हर एक मौसम के अनुसार अलग अलग तरह के लोकगीत रहते हैं। जैसे अब बरसात का महीना अब आ रहा है, सावन भादो त्योहार भी मतलब आ रहे हैं, तो सावन में अपने यहाँ हिंदुली, कजली, झूला गीत,
1: जी जी,
2: ये लोग ज़्यादा गाते हैं और पसंद करते हैं।
1: जी जी।
2: इसी संदर्भ में मैं आपको कजली की चार लाइन
1: जी जी बहुत सुना। जी जी।
2: हरे राम घिर घिर आई घटाए बरसे राम।

0: के इस बस सबका रे हारी।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने इतना अच्छा गाया। इसके अलावा आप क्या सुनाना चाहेंगे हमारी श्रोताओं को? बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपका।
0: अब मैं आपको हिंदुली, जो इसी मौसम में गाया जाता
1: जी,
0: इसकी चार लाइन सुनाती।

0: जैसे कि अब सावन भी आने वाला है तो कोई सावन गीत आप हमारी श्रोताओं को चलते चलते सुना दीजिए।
1: अब मैं आपको इसी संदर्भ में झूला गीत, जो कि इसी मौसम में मतलब लेडीज लोग बहुत गाती हैं।
0: जी जी।

0: तो मंजुला जी, हम आपको थोड़ा और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई एक और गीत हमारी श्रोताओं को सुनाइए।
1: वर्षा गीत में हिंदुली सुनाए।
2: जी जी सुनाए।

0: ओ मंजुला जी, आपने हमसे बातें की और इतने खूबसूरत से लोकगीतों को सुनने का हमें मौका मिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार
2: बहनों। अब हम बात करेंगे भारत की पहली महिला डॉक्टर, मुखर कार्यकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी कादम्बिनी गांगुली के बारे में। तो आपको बता दें कि आज उनका जन्म दिवस है, तो ऐसी शख्सियत को याद करके नतमस्तक होकर हम सब नमन करते हैं। 18 जुलाई 1861 में ब्रिटिश शासन के दौरान भागलपुर में उनका जन्म हुआ था। बहनों, जिस समय केवल पुरुष ही मेडिकल की पढ़ाई करते थे, तब वह 1884 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाली पहली महिला थी। इन्होंने इतिहास में भी ग्रेजुएशन किया था और ऐसा करने वाली भी वो पहली महिला थी। बहनों, इनकी उपलब्धियों की बात करें तो ऐसी कई बातें हैं जो इन्हें और भी महान बनाती है। जैसे दक्षिण एशिया में यूरोपीय चिकित्सा में शिक्षा लेने वाली वो पहली महिला डॉक्टर बनी। इतना ही नहीं, राजनीति में भी उनका वर्चस्व बराबर से रहा है। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी और कांग्रेस सत्र के मंच पर आने वाली पहली महिला बनी। कादम्बिनी गांगुली ने मेडिकल की ट्रेनिंग विदेश में ली थी, मतलब 1892 में वह ब्रिटेन गई और वहां जाकर डबलिन, ग्लासगो और एडिनबर्ग से आगे की ट्रेनिंग ली और वहां से लौटने के बाद उन्होंने स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। कलकत्ता के लेडी डफरिन अस्पताल में आखिर तक काम किया और प्रैक्टिस जारी रखी। इसके बाद 3 अक्टूबर 1923 को उनका निधन हो गया। आज उनका नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। तो बहनों, अब वक्त भी है एक छोटे से अंतराल का, तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत जिसे हमने लिया है फिल्म असली नकली से, और गायक स्वर हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के।

तीखा चटपटा खाने का मन तो सबका करता है, तो ऐसे में बाहर के खाने के बजाय क्यों ना घर पर ही कुछ लजीज बनाया जाए। आज हम लेकर आए हैं सूजी के स्टफ्ड कचौरी। तो चलिए बनाते कैसे हैं वो हम बताते हैं। सबसे पहले स्टफिंग के लिए एक फ्राई पैन में 2 छोटे चम्मच तेल लेंगे, गरम होने देंगे। इसके बाद इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक और कटी हुई हरी मिर्च डालकर फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। हमने 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। इसे अच्छी तरह से मैश करके डालेंगे। साथ में मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, अमचूर मसाला, गरम मसाला डालकर अच्छी तरह से भूनते हुए चलाएंगे। फिर जब भून जाए तो इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिला देंगे। इस तरह स्टफिंग बनकर तैयार है। इसे ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। अब कढ़ाई में डालेंगे 2 कप के करीब पानी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा अजवाइन, 1 बड़े चम्मच तेल डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें 1 उबाल आने देंगे। अब डालेंगे हम 1 कप सूजी, लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि गुथे हुए आटे की तरह नरम ना हो जाए। अब इसे एक बर्तन में निकालकर हाथों से अच्छी तरह से सॉफ्ट आटा जैसा गूथ लेंगे। इसके बाद हाथों में तेल लगाकर आलू की स्टफिंग करके हाथों से ही कचौरी का शेप दे देंगे। याद रखिए, कचौरियों को फ्राई करने के लिए ज्यादा तेज आंच की जरूरत नहीं है। तेल हल्का सा गर्म होने पर ही इन कचौरियों को सुनहरा होने तक फ्राई कर लीजिए। अब इसे चटनी या सॉस के साथ सर्व कीजिए। ये ऐसा नाश्ता है जो आपका पेट ज्यादा देर तक भरा रखेगा। तो बहनों, आप ये स्वादिष्ट कचौरियां जरूर बनाइए, खाइए और खिलाइए। अब आखिर में आइए सुनते हैं एक और गीत। फिल्म है गीत गाता चल, जिसे अपनी खूबसूरत आवाज से गाया है आरती मुखर्जी ने।

0: अभी हमने आरती मुखर्जी का गाया गीत सुना, फिल्म थी गीत गाता चल। तो बहनों अब वक्त भी हो चला है कार्यक्रम के समापन का, तो दीजिए अनुमति कल्पना मिश्रा को फिर मिलने के वादे के साथ। नमस्कार।
1: कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक

0: स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: सुनते रहिए मालवा किसान, आकाशवाणी इंदौर।
3: बड़े अच्छे लगते हैं
4: क्या
3: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
4: और
2: आकाशवाणी इंदौर। सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
5: अरे रेवती ताई, या रविवारी आपल्याला उज्जैनला चलायचं आहे, तयार रहा बर का?
6: मी नाही येऊ शकणार।
5: अरे आपल्याला सकाळी चलायचं आहे, काय त्रास आहे त्यात?
6: रविवारी सकाळी रेडिओवर मराठी कार्यक्रम येतो 10:30 तो मी नक्की ऐकते, तो कधी सोडत नाही।
5: असं का? अरे पण आता आपल्याकडे मोबाईल आहे आणि रेडिओ आता मोबाईलवर सुद्धा ऐकता येतो।
6: अरे वा, हे तर खूपच छान, मग मी नक्की येणार।
5: तर मोबाईलवर ऍप न्यूज ऑन AIR डाउनलोड करा आणि त्यावर ऐका
6: मराठी कार्यक्रम।
5: तर नक्की ऐका प्रत्येक रविवारी सकाळी 10:30
6: मराठी कार्यक्रम।

0: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं,
0: और झूलते झूलते सुनते हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए आप सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा का योगदान है। पहले सुनिए प्रभा द्विवेदी के स्वर में ये रचना।

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा का योगदान था। लीजिए आप सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा का योगदान है। इस कार्यक्रम में पहले सुनिए राजकुमार तिवारी के स्वर में भजन।

0: इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, अब समय है अंतराल का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: सुनते रहिए मालवा किसान, आकाशवाणी इंदौर।
4: बड़े अच्छे लगते हैं
5: क्या
4: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
5: और
3: आकाशवाणी इंदौर। सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं,
0: और झूलते झूलते सुनते हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

ये गीत था फिल्म दिल तो पागल है, इस फिल्म से, जिसके लिए आवाज़ थी लता मंगेशकर, उदित नारायण की, गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत था उत्तम सिंह का।

ये गीत अभी आप सुन रहे हैं, फिल्म है लम्हे, आवाज़ है लता मंगेशकर, इला अरुण और साथियों की, गीतकार है आनंद बख्शी और संगीत है शिव हरिका।

0: इस गीत के साथ ही सुगम फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने इस रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। आज नई दिल्ली में फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
2: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
1: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत की इस नीति को देखा है और यह तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये यात्रा 25 जुलाई तक चलेगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अशोकनगर जिले के चंदेरी विधानसभा क्षेत्र के पतखेड़ा में 2,38,00,000 रूपये की लागत से निर्मित नवीन विद्युत उपकेंद्र को क्षेत्रवासियों को समर्पित किया। इस विद्युत उपकेंद्र से क्षेत्र के 7 गांवों के नागरिकों को निर्बाध गुणवत्तापूर्ण और बेहतर वोल्टेज के साथ बिजली की सुविधा मिलेगी। संसद के सोमवार से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। 13 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रकोष्ठ की स्थापना की है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार 22 जुलाई को एक कार्यशाला के दौरान इस प्रकोष्ठ का शुभारंभ करेंगे। पहले चरण में 341 सरकारी और निजी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके लिए 21 से 23 जुलाई तक 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इन कार्यशालाओं में संस्थानों के प्रतिनिधियों को मूल्यांकन मानदंड, गुणवत्ता मानकों और दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार इससे संस्थानों को राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रक्रिया यानी नैक के लिए बेहतर तैयारी में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी 2.0 के अंतर्गत प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं एवं आमजन को नशे के दुष्परिणामों से अवगत

आते हुए नशा मुक्त स्वस्थ एवं सशक्त समाज के निर्माण के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रहा है। आज भोपाल और इंदौर समेत प्रदेश के 44 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान डिंडौरी और उमरिया में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार 19 जुलाई से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से प्रदेश में लगातार तेज बारिश का सिलसिला शुरू होने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों में शामिल शिवपुरी रेलवे स्टेशन का लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से कायाकल्प होने से क्षेत्र के यात्रियों को अब नया और सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा। बुरहानपुर में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम अब उन लोगों तक पहुंच रही है जो बीमारी से अनजान है या लक्षणों को नजरअंदाज कर रहे हैं। और खंडवा जिले में संचालित दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तहत कलेक्टर ने ग्राम नागचून, सुरगांव, निपानी और पिपल्या तहार का दौरा कर अभियान का निरीक्षण किया। उन्होंने पशुपालक संगोष्ठी और पशुपालकों को कृत्रिम गर्भाधान, नस्ल सुधार, पशु पोषण और स्वास्थ्य प्रबंधन की जानकारी दी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। यह अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
3: भारत और पूरी टीम, बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम 1 की टीम को उनसे मिलने का निमंत्रण भी दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया

0: पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
1: Congratulations in space for facilitating
2: इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
1: इन द हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी
0: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में दो दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी।
3: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में दो दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है। कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
0: ये समाचार हमारे newsonair और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
4: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया। हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
4: ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
0: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने का भी संकल्प लिया है।
4: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में

0: भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए एक देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर छात्रों को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्त, सुशासन, वित्तीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतिभागियों को माईगव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अक्षित वैद्यान।
1: पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई है। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। हालांकि किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में

0: आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, उड़ीसा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दीं। ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए ये पहली फरमाइश है हमारे इन साथियों की। इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमीला बामनिया, नंदनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक कुणाल केतन और पंजाब रोपड़ से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेंग बिरक, मीका बिरक, उज्जैन से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह परिवार, दीक्षा कोश मूणत, आप सभी श्रोता साथियों ने पसंद किया है। किशोर कुमार की आवाज़ और साथियों की आवाज़ में फिल्म राजपूत का ये गीत, जिसके लिए गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

ये अगली फरमाइश है बलिया नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, नेवाडा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र, सन्विति पंचोलिया, सागर से तिलक राणा।

राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका, रॉबिन राणा, इन सभी श्रोता साथियों ने पसंद किया है हरे रामा हरे कृष्णा इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर, किशोर कुमार की, गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत है आर डी बर्मन का।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश है। बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभय नंद, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित। बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली, मीनूराज श्रीमाली। पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप आजोरिया, आरजू जाजोरिया। इन सभी साथियों ने सुनना चाहा है दो रास्ते इस फिल्म का गीत, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

और आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है फिल्म आंधी से, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर, किशोर कुमार के गीतकार हैं गुलजार, संगीत है आर डी बर्मन का, और इस गीत को सुनना चाहते हैं कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, सुनील सिंह, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, शेख जमील मंसूरी, अमलेश्वर छत्तीसगढ़ से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारिणी, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, नांदेड़ महाराष्ट्र से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। तो सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर आंधी फिल्म का ये गीत।

आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है, औरंगाबाद महाराष्ट्र से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश, और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान सारिका, सुरेखा सोनम बोड़खे, और इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश साक्षी, मनन तानिया, इन सभी साथियों ने सुनना चाहा है बॉबी फिल्म का गीत, जिसके लिए आवाज़ है शैलेंद्र सिंह की, गीतकार है आनंद बख्शी और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: इसके साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि स्वस्थ समाज मजबूत राष्ट्र की नींव है। नई दिल्ली में आज भारतीय चिकित्सा संघ के पुरस्कार समारोह में श्री सिंह ने कहा कि चिकित्सा पेशेवर न केवल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं बल्कि देश की विकास यात्रा को भी मजबूत कर रहे हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली के अनुसंधान भवन में विक्रम 1 का सफल प्रक्षेपण देखा। इसके बाद श्री सिंह ने कहा कि ये प्रक्षेपण अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की सार्वजनिक निजी भागीदारी की बढ़ती शक्ति को दर्शाता है। संसद के सोमवार से शुरू होने वाले मानसून सत्र के पहले केंद्र सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है।

0: 13 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये यात्रा 25 जुलाई तक चलेगी। प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी 2.2 के अंतर्गत प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने युवा शोधार्थियों के लिए देशव्यापी शोध लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान डिंडौरी और उमरिया में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब आपको बता दें हमारे शाम की सभा के कार्यक्रमों के बारे में।

शाम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगी। 5:33 शाम 6:00, 8:15 पर सुनिए फिल्म संगीत। 7:45 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, प्रायोजन विकास दर्शन।

रात 8 बजे सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में, 9:30 पर चित्र भारती। ये कार्यक्रम होगा जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। रात 10 बजे सुनिए संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में देवव्रत मिश्रा का सितार वादन, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

और 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम ग्राम सभा। ये थी जानकारी आज शाम के सभा के कार्यक्रमों की। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। 3:02 हुए हैं। हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम की सभा में 5 बजे हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, पर इस बीच DTH पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा। DTH के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम

हेलो, आवाज़ आ रही है सर आपको? टाइम मैच कर लीजिए, टाइम हुआ है 4 बजे। ओके, ठीक है। मैं लेफ्ट साइड के कंप्यूटर का आउटपुट सुनिए, पहले प्लेयर फिर कार्ड, राइट साइड का है।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। इस समय संध्या के 5 बजे हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा की शुरुआत करते हैं युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी से।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वैष्णवी।
1: और मैं हूं मार्गेशा। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में और आज के हमारे खास सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स में, जिसमें हम जुड़ेंगे हमारे श्रोताओं के साथ, करेंगे उनसे ढेर सारी बातें और सुनेंगे उनके पसंद के कुछ गीत। तो दोस्तों, जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए 0731 271 0223 पर, या आप हमें फोन कर सकते हैं 0731 271 0224 पर। तो देर किस बात की,
0: जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमें कॉल करिए, हमसे करिए बहुत सारी बातें और बताइए अपने पसंद का गीत जो आप सुनना चाहते हैं। हम अपने पहले कॉलर से जुड़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स।
2: हाँ नमस्कार
1: जी। नमस्कार,
2: मैं ग्राम बालोदा लखा से, जिला उज्जैन से कन्हैला प्रजापति बोल रहा हूँ।
0: जी, आप अगर अपने रेडियो सेट के पास है तो थोड़ा सा दूर हो जाइए ताकि आपकी आवाज अच्छे से आए।
2: नहीं मैडम, हमारे पास रेडियो नहीं है, पर इसमें क्या कि स्पीकर में डबल आवाज आ।
0: अच्छा, कोई बात नहीं, हो सकता है कोई टेक्निकल एरर हो। तो चलिए हमें बताइए कौन सा गीत सुनवाए हम आपको।
2: हाँ, चोर मचाए शोर का, एक डाल पर सोलर बोले एक डाल पर मैंने।
0: जी एक जी, तो हम आपका पसंद का गीत अपने सिस्टम पे ढूंढ रहे हैं और फिर आपको ज़रूर सुनवाएंगे। इससे पहले चलिए बताइए कैसे, क्या करते हैं आप और क्या है आजकल आपके शहर का हाल?
2: अरे शहर तो नहीं, गांव है, बालोदा लखा है।
0: जी
2: क्या है कि वो हम खेती का काम करते हैं।
0: जी अच्छा, खेती का काम करते हैं। तो अभी तो बारिश का मौसम आ गया है, तो अभी क्या चल रहा है खेतों में?
2: अभी तो सोयाबीन लगी हुई है।
0: अच्छा,
2: अभी निंदाई गुड़ाई चल रही है उसके अंदर।
0: अच्छा
2: हाँ, अब पानी का इंतजार में है, क्या पानी आ जाए तो बहुत बढ़िया।
1: जी जी
0: अच्छा, ये तो सही है, बारिश का इंतजार तो हम सब कर रहे हैं। चलिए आपसे बात करके अच्छा लगा, आप सुनवाते हैं आपको आपके पसंद का ये गीत।
2: ओके धन्यवाद।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: चलिए दोस्तों, फिर अब जुड़ते हैं हमारे एक और कॉलर के साथ। हेलो।
3: हेलो, नमस्कार मैम।
2: जी नमस्कार, आपका नाम बताइए।
3: मैं तहसील बहादुरपुर जिला अशोकनगर एमपी से सूर्य प्रताप यादव बात कर रहा हूँ।
2: अच्छा सूर्य प्रताप जी, तो कैसे हैं आप?
3: अच्छे हैं मैम, आप कैसी हैं?
2: जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आकाशवाणी में सभी बहुत खुश हैं। और तो बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
3: फिल्म का नाम है गोपी किशन और उसमें एक गाना है कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में, ये इश्क है क्या।
2: ये इश्क है, इनकी आवाज में आपको ये गीत सुनना है? जी बिल्कुल। तो ये गीत सुनने की कोई खास वजह?
3: वजह तो कोई नहीं है, बस मुझे 90 के दशक के गाने अच्छे लगते हैं इसलिए।
2: जी हमारे पास ऐसे कई सारे श्रोताओं के फोन आते हैं जिन्हें 90 के दशक के, किसी को 80 के दशक के गाने बहुत पसंद होते हैं और शायद सबका अपना अपना टेस्ट भी होता है। तो आपने जैसे कहा आपके 90 के दशक के आपको गाने सबसे ज्यादा पसंद है, तो आपके फेवरेट सिंगर कौन है या ऐसा कोई डुएट जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो?
3: खास तौर पर मुझे कुमार सानू और अलका याग्निक जी के गाने बहुत अच्छे लगते हैं।
2: जी कुमार सानू और अलका याग्निक तो शायद बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री में उन्होंने पता नहीं कितने हजारों गाने गाए हैं और हम सब उनके गाने भी सुनते सुनते बड़े हुए हैं और हर गाने की एक अपनी अपनी मेमोरी भी है।
3: हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं नई जनरेशन के गाने नहीं सुनता हूँ, नए गानों की अगर बात करी जाए तो अरिजीत सिंह से बेटर मुझे कोई सिंगर लगता ही नहीं है।
2: ये भी काफी कॉमन आंसर है कि अरिजीत सिंह इज बहुत बड़े सिंगर हैं और उनकी आवाज हम सबको बहुत अच्छी लगती है, उनके जो गाने हैं वो एकदम दिल को छू जाते हैं। तो वैसे ही कुछ यंग जनरेशन के साथ भी है कि हम जरूरी नहीं है कि नए गाने सुनते हैं, हम भी कुछ पुराने गाने सुनते हैं और शायद अलका याग्निक जी और कुमार सानू ये हमारी लिस्ट में भी काफी आगे आते हैं।
3: बिल्कुल, वो तो अपने मूड के ऊपर रहता है, अपन को किस दशक के गाने सुनने हैं उसमें कोई वो नहीं रहता है।
2: जी आपने बिल्कुल सही कहा कि मूड के हिसाब से गाने होते हैं। तो चलिए फिर हम भी आपके मूड के हिसाब से गीत सुनते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए।
3: जी थैंक यू।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: चलिए श्रोताओं, अब जुड़ते हैं हमारे आज के अगले कॉलर से। हेलो फ्रेंड्स, हेलो
2: हेलो
1: जी, नमस्कार।
2: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, राजस्थान, गांव का नाम अंतमल गोला।
1: जी बताइए, आज युवानी से आपको कौन सा गीत सुनवाएं?
2: जी मैडम, फिल्म का नाम रहेगा कुसूर और गाने के बोल रहे हैं कितना बेचैन है कोई तुमसे मिला।
1: अच्छा, कुसूर फिल्म से आपको ये गीत सुनवाएं। ये बताइए, आपने ये फिल्म देखी है?
2: जी मैडम, हम तो गाने के शौकीन है, तो क्योंकि दिव्यांग हो ना, यहाँ को दिखाई नहीं देता, तो इसलिए मैं आपका कार्यक्रम रेडियो में।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो एंटरटेनमेंट के लिए आप गीत और रेडियो पसंद करते हैं, तो आकाशवाणी से और भी कार्यक्रम सुनते हैं आप?
2: जी मैडम, हम सुनते हैं ना खेती बाड़ी के, मम्मी पापा है तो वो खेती बाड़ी करते
1: हैं। अच्छा,
2: तो किसानों के लिए कार्यक्रम आता है वो सुनता रहता हूँ, जो जानकारी भरा कार्यक्रम युवानी तो खास कर यही है।
1: अच्छा, युवानी आपका सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है?
2: जी, इसमें क्योंकि हर तरह की जानकारी हमें घर बैठे प्राप्त हो जाती है मैडम, चाहे पढ़ाई से रिलेटिव हो, चाहे अपने करियर से रिलेटिव, जो भी कार्यक्रम में जानकारी वो मिलती है।
1: जी जी जी, ये तो सुनकर हमें बहुत खुशी हुई और बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही और जानकारी भरे कार्यक्रम युवानी में आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत आज के कार्यक्रम में।
2: थैंक यू मैडम।
1: थैंक यू, धन्यवाद।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आइए बारी है हमारे एक और श्रोता से जुड़ने की। हेलो फ्रेंड।
3: हेलो, नमस्कार बहन जी।
2: जी नमस्कार, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: ग्राम सनोतिया, जिला गुना, मध्य प्रदेश से बहन जी आपका भाई मांगीलाल चंदेल बात कर रहा हूँ।
2: अच्छा, तो मांगीलाल जी आज आप युववाणी में कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
3: बहन जी फिल्म का नाम रहेगा धरती।
2: धरती फिल्म का नाम है
3: और गाने के बोल हैं ये मौसम भीगा भीगा है, हवा अच्छा। भी ज्यादा ज्यादा है।
2: ओहो, ये मौसम भीगा भीगा है। वैसे आपको बता दूं, इंदौर में तो कभी कुछ एक हफ्ता हो गया बारिश के तो नामो निशान नहीं है। गुना में और आपका जो आप

0: ग्राम
1: या
0: बताया, वहां
1: गोदाम में
0: पर
1: भी यही
0: कैसे
1: हो रहा
0: हाल
1: है
0: है
1: दीदी?
0: अभी?
1: गोदाम में भी यही हाल है,
0: ऐसे हाल है, शायद पूरे देश में ही ऐसा होता है कि
1: पूरे
0: जुलाई
1: देश
0: के
1: में
0: मिड
1: ही ऐसा
0: जुलाई के
1: हो
0: वक्त
1: रहा है,
0: बारिश एकदम कम हो जाती है।
1: कम हो जाती है। सही है
0: हाँ,
1: दीदी,
0: तो
1: सही है,
0: आपको पसंद है
1: सही
0: वैसे बारिश का मौसम?
1: है। हाँ, बारिश का मौसम तो बढ़िया है,
0: बढ़िया है
1: बढ़िया
0: तो
1: रहता है। हाँ, बढ़िया है।
0: मतलब पसंद है, कि कई लोगों को तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, जैसे मैं, मुझे बारिश का
1: अरे
0: मौसम इतना
1: अरे,
0: पसंद नहीं है।
1: वो तो अपनी अपनी वो है, ये तो सोच है, अपनी अपनी
0: हाँ,
1: अपनी
0: वो
1: अपनी
0: भी है,
1: पसंद है।
0: सोच भी है, लेकिन कई लोगों को ऐसा होता है ना कि
1: हाँ,
0: बारिश का मौसम बहुत अलग तरीके से लगता है, कभी रोमांटिक लगता है, कुछ को सैड लगता है,
1: जी।
0: कुछ को थोड़ा
1: नहीं,
0: हैपनिंग
1: कोई
0: सा लगता
1: इंसान
0: है।
1: तो
0: आपको
1: जे
0: कैसा लगता
1: कहता
0: है?
1: है कि ये नहीं, मेरे को तो बढ़िया लगता है। कोई इंसान ये कहता है कि बारिश का पानी से बीमारियां हो जाती हैं, और कोई इंसान ये कहता है कि बारिश का पानी में तो भीजना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है।
0: मतलब देखा जाए तो
1: अंतर
0: नजरिया और सोच का अंतर है,
1: है,
0: और अनुभव का
1: वेद
0: भी। ऐसी बात तो है
1: अनुभव।
0: कि जो लोग बारिश में कभी कभी भीगते हैं वो बीमार भी पड़ जाते हैं, तो कुछ
1: हाँ, पड़
0: गलत तो नहीं
1: जाती है
0: है
1: ना।
0: इसमें।
1: नहीं, मेरी कह रहा हूं मैं, अगर मैं बारिश में भीग जाऊं दीदी, मुझको बुखार आ जाता है।
0: हाँ, ये तो है।
1: हाँ, और
0: लेकिन
1: छोटे
0: फिर भी
1: छोटे
0: आपको
1: बच्चे
0: बारिश
1: मानते ही नहीं
0: पसंद
1: है।
0: है।
1: जब हाँ, जब
0: चलिए,
1: पानी बरसता है ना, जब छोटे छोटे बच्चे भीगते हैं, कूदते हैं, भागते हैं उस पानी में, उगाले होके।
0: हाँ, मज़ा तो बहुत आता है। तो चलिए, बारिश
1: मजा
0: पे तो
1: तो
0: बातें
1: आता
0: और होती ही रहेंगी,
1: है
0: तो धन्यवाद आज फोन
1: जी।
0: करने के लिए। तो
1: तो
0: आइए
1: मैं
0: सुनते हैं
1: कुछ
0: आपकी
1: मित्रों
0: पसंद का ये
1: को,
0: गीत।
1: बहन जी, मित्रों को याद कर सकता हूँ,
0: जी
1: मित्रों को याद कर सकता हूँ क्या?
0: जी
1: जी
0: जी
1: जी
0: जी कीजिए
1: बिल्कुल।
0: कीजिए, आपके मित्रों को याद।
1: नरेश प्रजापति जी हैं, गजराज लोधी जी हैं, बसंती लाल जी हैं, और केसरी सिंह राजपूत जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, रामबाबू शर्मा जी हैं, और रतलाम मध्य प्रदेश से हमारे हैदर खान भाई साहब भी हैं, वो भी सुन रहे हैं, बलवंत कुमार वर्मा जी सुन रहे हैं प्रेमलगंज आलोट से। इन सभी को ये गाना डेडिकेट रहेगा।
0: अरे वाह, क्या बात है! तो आपको, आपके दोस्तों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और फिर आइए फिर सुनते हैं।
1: जी।

0: चलिए अब जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से।
1: हेलो नमस्ते।
0: हेलो नमस्ते, किससे बात हो रही है मेरी?
1: ग्राम सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी, बोलिए कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: मैडम सुना दीजिए, फिल्म यादगार का गीत है लता जी का, आज मैं जिस पथ पर चला।
0: जिस पथ पर चला, जी बिल्कुल आपको सुनवाएंगे हम ये गीत। ये बताइए, इससे पहले आपके दोस्त ने ही आपको इसके पहले वाला गीत डेडिकेट किया था?
1: हाँ, हमारे दोस्तों, हमारा बहुत नेटवर्क है, बहुत बड़ा श्रोता
0: जी
1: संघ का है, तो मतलब ये मांगीलाल जी चंदेल है, राजू अग्रवाल है, असीना भी मंसूरी है, बलवंत कुमार वर्मा है
0: जी,
1: बहुत से श्रोता है।
0: अच्छा, तो आप सब रेडियो और आकाशवाणी सुनते हैं?
1: सुनते हैं ना मैडम, अभी फिलहाल आपका प्रोग्राम सुना मैं छत पर बैठकर रेडियो पर।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: तो आपको पसंद है आकाशवाणी के कार्यक्रम?
1: अरे मैडम, हम तो बहुत पुराने श्रोता है, हम तो लेटर भी लिखते रहते हैं, 1980 से जुड़े हुए हैं।
0: अरे वाह, ये जान के तो बहुत अच्छा लगा कि आप पुराने श्रोता हैं और अभी भी रेडियो से और आकाशवाणी से इसी तरह जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये गाना,
1: उम्र, हेलो
0: जी,
1: मेरी
0: जी
1: उम्र है 57
0: जी।
1: हाँ,
0: तो क्या ये गाना भी आप अपने दोस्तों के लिए ही सुनवा रहे हैं आज?
1: हाँ, सभी सुनेंगे मैडम, रेडियो पे तो सभी सुनते थे, और पुराने रेडियो मतलब पुराने जो गीत है ना उनके शौकीन हम तो।
0: अच्छा
1: हाँ
0: जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल वैसे भी अभी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पुराने गीत बहुत पसंद है, हमारे कई श्रोता ऐसे हैं जो अक्सर हमसे कहते हैं कि उन्हें पुराने गीतों का, पुराने गायकों का बहुत शौक है। तो चलिए
1: परिवार के लोग हैं, सकीना बानो है, शम्मी बानो है, मुश्किल
0: जी
1: है ना?
0: जी जी जी, चलिए सुनवाते हैं आपको और आपके सभी मित्रों और परिवार जनों को ये गीत।
1: ओके ओके
0: जी, धन्यवाद।

0: आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जुड़ते हैं एक और कॉलर के साथ। हेलो फ्रेंड्स।
1: जी नमस्ते मैम।
0: जी नमस्कार, आपका नाम बताइए।
1: जी मैं अरविंद अग्रवाल, श्रीनगर जिला महोबा से।
0: अच्छा, तो आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: जी फिल्म का नाम है स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ।
0: अच्छा जी। इस फिल्म का कौन सा गीत?
1: ये सूरज चांद सितारे।
0: ये सूरज चांद सितारे, ये गीत शायद हमारे सिस्टम में है नहीं, तो क्या आप कोई दूसरा गीत बता सकते हैं?
1: जी फिर ऐसा करिए, मेरे बेटे का आज जन्मदिन है
0: जी,
1: कोई अच्छा सा जन्मदिन का गीत सुना दीजिए।
0: अच्छा अच्छा, तो सबसे पहले तो आपके बेटे को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी की इंदौर की पूरी टीम की तरफ से।
1: जी और आपके आशीर्वाद की आकांक्षा रखते हैं।
0: जी जी,
1: सभी सुनने वालों का। और
0: जी जी, तो कैसे फिर बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे होता है आपके घर में? कुछ खास किया जाता है? कुछ खास पकवान बनते हैं?
1: जी आज वो गुड़ के पुए मालपुआ वहाँ प्रसाद में चढ़ गया बजरंगबली के यहाँ।
0: अरे वाह वाह वाह, तो मालपुए का जैसे आपने जिक्र किया, तो आपको क्या मतलब घर पे बनाते हैं, कहीं कोई फेमस जगह है जहाँ से लेते हैं?
1: हाँ घर ही पे बना लेते हैं महिलाएं।
0: अरे वाह क्या बात है, वैसे मालपुए बनाना भी बहुत मुश्किल होता है और बहुत अच्छी बात है कि वो घर पे भी बना सकती हैं। तो आपने जैसे और भी और क्या करते हैं बर्थडे के दिन, और आपने अपने बेटी को क्या गिफ्ट दिया आज बर्थडे वाले दिन?
1: कुछ नहीं, हम वो ज्यादा केक वेक वाला नहीं मनाते हैं कि मोमबत्ती जलाएं बुझाएं, ये वाला सिस्टम नहीं।
0: अच्छा, ये ऐसे नहीं करते जी, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना चॉइस होता है। गिफ्ट क्या दिया आपने?
1: कुछ नहीं, प्रेम
0: नहीं, ये तो सही है कि प्रेम दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, लेकिन गिफ्ट तो देना चाहिए, अभी भी देर नहीं हुई है। आप अपनी बेटी की पसंद का कुछ छोटा सा ही गिफ्ट उन्हें उसे दे देंगे तो काफी पसंद आएगा उसे।
1: उससे पूछा था कुछ चाहिए, वो बोला नहीं।
0: अरे तो वो तो नहीं बोलेंगे ना, आपको अपनी उससे देना चाहिए, हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब कोई गिफ्ट देता है
1: जी।
0: हाँ, तो फिर आपके बेटे को फिर से एक बार बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं, और ये गीत एक जन्मदिन का हमें मिल चुका है, ये गीत उनके लिए। धन्यवाद।

0: जुड़ते हैं आज के अगले कॉलर से।
1: हाँ नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार, किससे बात हो रही है मेरी?
1: मैम श्यामलाल कथीरिया बोल रहा हूँ, मंसूर जिले के गांव गोदियाना से।
0: जी बोलिए, कौन सा गीत सुनवाएं आज आपको?
1: मैम फसलों में ना पानी की जरूरत पड़ रही है
0: जी,
1: तो हम ये इस गीत से ये कहना चाहते हैं कि यार नदियों से जाके बाहर थोड़ा सुकून मिलेगा।
0: जी जी बिल्कुल, हम आपको आपके पसंद का ये गीत आपको सुनवाएंगे। लेकिन ये बात तो सही है कि पानी की बहुत ज़रूरत है इस दिनों इन दिनों देश में। कई जगह ऐसे है जहाँ पे बारिश नहीं हुई है, यहाँ तक कि इंदौर की हम बात करें तो लगभग एक हफ्ता हो गया है कि हमने बारिश नहीं देखी है, और गर्मी जो है वो हमें काफ़ी परेशान भी कर रही है। तो गर्मी का कैसा मौसम है आपके यहाँ?
1: हवा तो चल रही है लेकिन वो उमस बहुत ज़्यादा।
0: जी जी जी, उमस बहुत ज़्यादा है,
1: इससे फसलों में ना मुरझाने जैसी स्थिति हो रही है। और
0: जी
1: अभी मैं खेत में घूम रहा हूँ यहाँ पे, और मुझे याद आया कि प्रोग्राम चल रहा होगा
0: जी,
1: तो मैंने फिर कहा ट्राई करे, 6 महीने हो गए आज कोई लड़ेगा भी नहीं कि यार जो ये रोड लगाता है कि ये हर हफ्ते लगाता है।
0: अच्छा, तो आप खेतों में घूम रहे हैं जैसे कि आपने बताया, तो आप किसान हैं?
1: किसान है और सोयाबीन में घूम रहे, कल अपने डोरे कलवाए थे ट्रैक्टर से।
0: जी जी,
1: तो कोई सोयाबीन के पौधे पे कहीं मिट्टी गिर गई, तो मैं पेड़ से एक हाथ से मतलब पेड़ से वो मिट्टी अलग करके पौधों को कभी बाहर निकाल रहा हूँ जो छोटे उन पर गिर गई होगी।
0: जी
1: तो ये मैं खेत में घूम रहा हूँ यहाँ पे।
0: जी जी जी, ये बात तो सही है जो आप कह रहे हैं कि इन दिनों पानी की बहुत ज़रूरत है, लेकिन ये हमें भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि कभी बेमौसम बरसात हो जाती है और बरसात के दिनों में बारिश नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं हमें भी पर्यावरण के प्रति सजग होना पड़ेगा। हमारी छोटी छोटी गलतियाँ ही कहीं ना कहीं उनके ही रिजल्ट्स हैं ये सब। तो आप भी अपने आसपास अपने एरिया के लोगों को बताइए कि कैसे वो पर्यावरण के प्रति थोड़ा सजग रहें, इधर उधर कचरा ना करें, ग्लोबल वार्मिंग और इन सब चीजों पे भी थोड़ा ध्यान दें।
1: नहीं, इनके अलावा भी मैंने बेहताशा मतलब पेड़ों की कटाई हो रही है मैम ना।
0: जी जी, ये बात बिल्कुल सही है,
1: बहुत खतरनाक तरीके से कटाई हो रही है, लोग ये भी नहीं सोच रहे कि इनका परिणाम क्या होगा एक दिन।
0: जी बिल्कुल, और अगर आप वृक्षारोपण करते हैं, पौधे लगाते हैं, तो उनके पौधों के वृक्ष बनने तक उनका ध्यान जरूर रखिए। सिर्फ पौधे फोटोग्राफी के लिए लगाकर मत छोड़ के जाइए, उनका ध्यान भी रखिए।
1: मतलब आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि मैंने खुद ने मतलब लगभग 70 पेड़ बना दिए, मतलब 70 पेड़।
0: जी ये तो बहुत अच्छी बात है, और हम ऐसे ही आपके माध्यम से भी हम अपने श्रोताओं को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपसे ही सही प्रेरणा लेकर वो भी इस तरीके के काम में आगे आए।
1: जबकि मेरे खेत पे एक भी पेड़ नहीं था पहले।
0: जी जी,
1: तो मैंने 70-80 पेड़ मतलब ये अपने आंवला के, नीम के, अपने टेशु के, डिप्टिस के, मतलब

0: ये अपने क्या बोलते हैं वो जामफल के
1: जी, काफी अच्छी बात है और ये काफी बड़ा अचीवमेंट भी है, तो ये जान के बहुत अच्छा लगा।
2: और आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं, आप ऐसे ही ये करते रहिए अपने पर्यावरण की तरफ और अपने आसपास के लोगों को, चाहे कम लोगों को ही सही लेकिन आप सजग जरूर करिए। एक छोटी सी कोशिश भी काफी कुछ अच्छा कर सकती है। और
0: बच्चों को आज स्कूल से मतलब एक पौधा भी मिला ना
2: जी, जी
0: तो वो भी उन्होंने बोला कि ये लगा के इसका व्हाट्सएप करना फिर स्कूल में फिर हमारे पे।
2: जी ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप ऐसे ही अच्छे काम करते रहिए और आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी के माध्यम से ये गीत
0: जी।

0: तो दोस्तों, ये था आज का युववाणी कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो इसी के साथ घड़ी ने भी इशारा कर दिया है कि अब समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। तो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए,
1: और हम हर शनिवार आपके लिए ऐसे ही हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम लाते रहेंगे, जिसमें आप हमें कॉल करके हमसे बातें कर सकते हैं, हमारे श्रोताओं को अपना संदेश दे सकते हैं और ढेर सारे अपने पसंद के गीत सुन सकते हैं। चलिए अब दीजिए इजाजत, मैं वैष्णवी
0: और मार्गशीर्ष को
1: नमस्कार।

हमारे युवा साथी अभी सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत, और पहला गीत प्रस्तुत है आप सभी श्रोताओं के लिए आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार शकील बदायूनी, संगीत नौशाद का, और फिल्म का नाम संघर्ष।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने सुना जुल्म का बदला। इस फिल्म का गीत गीत और संगीत रविंद्र जैन का था।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम रात और दिन, गीतकार शैलेंद्र, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में अभी आपने सुना रात और दिन फिल्म का ये गीत। और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आपको याद दिला दी कि आज रात 8:15 पर आप सुनेंगे कुछ और फिल्मी गीत। कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया में और 9:15 पर चित्रगीत में। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम विकसित होता भारत। विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं सुषमा व्यास।
1: बढ़ते कदम बदलता भारत, विकसित होता भारत।

0: बढ़ते कदम, बदलता भारत, विकसित होता भारत।
1: श्रोताओं, भविष्य अचानक नहीं बनता, उसे तो हर दिन गढ़ा जाता है। आज जब हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं तो हमारी नजर 21 साल आगे चली जाती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या 2047 का भारत वास्तव में भविष्य में बनेगा या उसकी शुरुआत आज इसी पल हमारी सोच से होगी? नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं सुषमा व्यास, विकसित होता भारत का आज का अंक लेकर।
0: बढ़ते कदम, बदलता भारत, विकसित होता भारत।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे उस भारत की जो सिर्फ सपनों में नहीं बल्कि संकल्पों और कर्मों से आकार ले रहा है।

0: ऐसा भारत जो 2047 में अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करते हुए विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2047 यानी स्वतंत्रता के 100 वर्ष। श्रोताओं, ये केवल एक वर्ष नहीं बल्कि उस भारत की कल्पना है जो आत्मनिर्भर हो, समृद्ध हो, तकनीक और नवाचार में अग्रणी हो, अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करे और हर नागरिक के जीवन में सम्मान, अवसर और खुशहाली सुनिश्चित करे। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब विकास की इस यात्रा में सरकार के साथ साथ हर नागरिक की भागीदारी भी उतनी ही सशक्त हो। तो श्रोताओं, जाने उन प्रयासों, उन योजनाओं, नवाचारों और प्रेरक कहानियों को जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ा रही है। लेकिन पहले सुनते हैं ये गीत।
1: कांधे पे सूरज

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विकसित होता भारत। कहते हैं किसी भी देश का भविष्य उसकी शिक्षा व्यवस्था तय करती है। जब युवा शिक्षित, कुशल और आत्मनिर्भर बनते हैं तभी विकसित भारत का सपना साकार होता है। आज हम बात करेंगे उन शिक्षा योजनाओं की जो विद्यार्थियों को बेहतर अवसर, नई तकनीक, कौशल और आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती ममता चंद्रशेखर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रोफेसर ममता चंद्रशेखर, मैं एक शिक्षाविद और साहित्यकार हूँ और वर्तमान में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज इंदौर की प्राचार्य का पद संभाल रही हूँ। मैं PhD हूँ, DLit हूँ और एक शोध निर्देशक हूँ और साथ में चूंकि लिखती हूँ तो मेरी 27 किताबें पब्लिश हैं जिनमें से 2 पुरस्कृत हैं। ये सब परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है। बहुत अभिभूत हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया और श्रोताओं के सामने मैं अपनी बात, अपनी योजनाओं को रख पा रहे हैं। ये बहुत सौभाग्य का विषय है और विकसित भारत की राह में निश्चित तौर पर यह भी एक प्रयास है।
0: बहुत बहुत स्वागत है ममता जी आपका। चूंकि हम बात करते हैं विकसित भारत की, यानी जो विजन है हमारा 2047 की ओर है, तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि विकसित भारत के निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है।
1: देखिए, शिक्षा जिंदगी का आधार है, ये हमारे सुखद जीवन का मूलाधार है। व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसकी सोच को संचालित करने के लिए अगर कोई महत्वपूर्ण तत्व है तो वो है शिक्षा। शिक्षा भलीभांति हो, व्यवस्थित हो, इसके लिए हमारी सरकार तहे दिल से कोशिशें करती है, तमाम योजनाएं परियोजनाएं बनाती हैं और यही प्रयास किया जाता है कि शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान, विकास, कौशल, नैतिक मूल्यों और वैचारिक दृष्टिकोण का एक नपातुला सा, एक संतुलित आधार प्रस्तुत कर सके ताकि वो राष्ट्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का भूमिका अदा करते हुए आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़ सकें। साथ ही ये भी कोशिश करते हैं कि व्यक्तिगत विकास, जैसे कि आप जानते हैं, अगर आपका व्यक्तिगत विकास बहुत अच्छा है तो राष्ट्र का और समाज का विकास भी अच्छा होगा। तो ये बेस है शिक्षा, जिसके आधार पे हम विकसित भारत की अवधारणा को आगे बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा ममता जी आपने। वर्तमान समय में सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका लाभ जो है वो कॉलेज के विद्यार्थियों को मिल रहा है अभी, आज की अगर हम बात करें तो?
1: हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया।

0: और हमारी सरकार, खास करके हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी, दोनों ही बहुत संवेदनशील हैं कि हम अपने स्तर पे विद्यार्थियों के लिए ऐसी शिक्षा योजना बना सकें जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आयाम है वो ये है कि हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक नया, मत कहना चाहिए, एक नवाचार, एक प्रकार का, एक ऐसा एक मील का पत्थर है जो निश्चित तौर पे विकसित भारत की ओर हमको ले जाएगा। तो पहला प्रयास तो यही है। दूसरा, और आप जानती होंगी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
1: जी
0: है।
1: जी जी बिल्कुल
0: एक और है स्टार्टअप इंडिया, ये
1: हाँ
0: बहुत महत्वपूर्ण है, और अटल इनोवेशन मिशन भी है, और प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना भी है। ये बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, और डिजिटल इंडिया अभियान भी हम चला रहे हैं सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप की बात करते हैं, ये सब सेंटर के लेवल पे, केंद्रीय लेवल पे प्रसारित हो रही हैं, संचालित हो रही हैं, इनका आयोजन हो रहा है। लेकिन हमारी मध्य प्रदेश सरकार भी बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं। उसमें से महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, गांव की बेटी, प्रतिभा किरण, विक्रमादित्य छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक, अनंत योजनाएं हमारी सरकारें चला रही।
1: बहुत सारी योजनाएं, यानी विद्यार्थी अगर चाहे तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाओं का लाभ लेकर अपने आप को कौशल से परिपूर्ण करके आगे बढ़ सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
1: अच्छा, नई शिक्षा नीति की अगर हम बात करें तो उसने विद्यार्थियों के लिए क्या नए अवसर खोले हैं? क्या इसमें पढ़ाई को अधिक व्यावहारिक बना दिया है?
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बिल्कुल, हमने जो हमारी सरकार ने बहुत चिंतन मनन के उपरांत 2020 में नई शिक्षा नीति शुरू की, आज के विद्यार्थी बहुत भाग्यशाली हैं कि उनको इतनी अच्छी शिक्षा नीति मिली। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं हुआ करता। एक बार अगर हमारी शिक्षा ब्रेक हो गई,
1: हाँ
0: टूट गई, तो दोबारा अवसर नहीं मिलता था। कई लोग ऐसे हैं जो BA फर्स्ट ईयर कर पाए तो सेकेंड ईयर नहीं तो फाइनल नहीं। अब ऐसा नहीं है। आपको जान के अच्छा लगेगा, अगर कोई विद्यार्थी पहले साल की परीक्षा पूर्ण करने के बाद अपनी शिक्षा छोड़ देता है या छूट जाती, मजबूरी जो भी
1: मजबूरी
0: हो,
1: वश। हाँ
0: तो उसको 1 साल का भी प्रमाण पत्र मिलेगा,
1: अच्छा
0: और अगर वो 2 साल पढ़ लेता था उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल पढ़ लेता है तो उसको डिग्री मिल जाएगी, और अगर 4 साल तक पढ़ लेता है तो उसको डिग्री विथ रिसर्च मिलेगी। एक और अच्छी बात इसमें यह है कि अगर आपका 1 साल आपने पढ़ा, आपने ब्रेक कर लिया या हो गया, तो
1: हाँ
0: आपके मार्क्स जो हैं वो क्रेडिट में बदल जाते हैं, और वो एक बैंक में, इसको ABC कहते हैं हम, उसमें जुड़ते जाते हैं। और कभी भी 5 साल बाद जब भी आपका मन करे, आप फिर से जब पढ़ेंगे तो मार्क्स जुड़ जाएंगे और आपको डिग्री मिल
1: तो
0: जाएगी।
1: ये वाकई में बहुत अच्छी बात आप बता रही हैं ममता जी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो किन्हीं कारणों की वजह से, या शादी विवाह की वजह से, जिनकी पढ़ाई छूट जाती है और वो आगे पढ़ना चाहती है, उनके लिए इस तरह की योजनाएं, ये जो सुविधाएं हैं, ये बहुत अच्छी है उनके लिए।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही। एक और बात है, जैसे कई बार होता है ना, हमारे टाइम में ये होता कि अगर हमने राजनीति विज्ञान लिया सपोज, तो मुझे समाजशास्त्र, साइकोलॉजी ये सब पढ़ना है, अर्थशास्त्र पढ़ना है, लेकिन अब ऐसा नहीं, मैं डेटा एनालिसिस भी पढ़ सकती हूँ, मैं
1: हाँ
0: कंप्यूटर भी ले सकती हूँ, तो ये और अच्छी बात है। मतलब मल्टीपल पर्पजेस के जो सब्जेक्ट्स हैं, संकाय के जो सब्जेक्ट्स हैं, उन सबको मिला के भी हम अपनी शिक्षा का तो अध्ययन अध्यापन कर सकते हैं।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: तो बहुविषयक शिक्षा प्रणाली भी अपने आप एक बहुत अच्छी चीज है, जो एक नवाचार है हमारे अपने शिक्षाविदों।
1: वाकई बहुत अच्छी बात आप बता रही हैं ममता जी। हम बात करें सरकार की कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट पर, जो आजकल सरकार है वो कौशल विकास पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है। कॉलेज स्तर पर विद्यार्थियों को रोजगार और स्वरोजगार के लिए किस प्रकार से तैयार किया जा रहा है?
0: देखिए, अपनी सरकार का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको डिग्री दे दी और आप घर जाएं, आपको रोजगार मिले। और इसके लिए हम लोग जैसे डिजिटल साक्षरता की बात करते हैं, कंप्यूटर शिक्षा की बात करते हैं, संचार कौशल की बात करते हैं, व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं, उद्यमिता विकास की बात करते हैं, वित्तीय साक्षरता देते हैं, और सॉफ्ट स्किल, इन सब का प्रशिक्षण देते हैं, और एक इंटर्नशिप प्रोग्राम रखते हैं, साथ में करियर काउंसिलिंग रखते हैं, प्लेसमेंट की बात करते हैं, वहीं पे कॉलेज में बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं ताकि वो रोजगार प्राप्त कर सकें। और सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि वो अपने आप को एक ऐसे इंसान बना सके जो राष्ट्र के निर्माण में भी सहयोग प्रदान करे। तो कौशल विकास में जो उसके अंदर का इनर है, जो जो उसकी अपनी अभिरुचि का विषय है, उसको हम इन्हेंस करते हैं सरकार की योजनाओं के तहत, और विद्यार्थी इससे बहुत बड़ी संख्या में प्रभावित हो रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है।
1: क्योंकि सिर्फ शिक्षा ग्रहण करना ही काफी नहीं होता है, उस शिक्षा को स्वरोजगार में बदलना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा है कि जो सरकार है कौशल विकास पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है, स्किल आनी चाहिए।

0: हर विद्यार्थी को कोई न कोई नई। और देखिए आजकल का जो भारत है वो डिजिटल युग में हम प्रवेश कर ही चुके हैं, तो
1: सही बात है।
0: डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, क्या ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा पा रहे हैं?
1: बहुत सही बात कही आपने। डिजिटल शिक्षा तो हमारा अब ये कहें कि मेरुदंड बन गया है,
0: हाँ
1: आज हमारे समाज के, राष्ट्र के विकास का मूलाधार बन गया है। तो निश्चित तौर पे हमारी सरकार ने इस बात को समझते हुए या विकसित भारत की अवधारणा को और गति प्रदान करने के लिए, दुनिया के साथ में कदम से कदम मिला के चलने के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई है, जिसमें से प्रमुख है दीक्षा पोर्टल है हमारा एक, फिर इसी प्रकार से स्वयं पोर्टल है, फिर स्वयं पोर्टल प्रभा है हमारे पास, स्वयं प्रभा जिसको हम कहते हैं, DTH चैनल है जो 24/7 चलता रहता है, फिर EPG पाठशाला है, आपने नाम सुना होगा, एक और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी
0: हाँ
1: है ना, और ई शोध सिंधु है, शोध गंगा है, और वर्चुअल लैब्स भी हो गए आजकल तो। अगर कोई ऐसी महिला है, ऐसा कोई विद्यार्थी है जो गांव में रहता है, नहीं आ सकता शहर में, तो ये सारी सुविधाएं वो वहीं पे अवेल कर सकता है, आवश्यक नहीं कि शहर ही आए या
0: हाँ
1: कस्बे में, बड़े कस्बों में जाए। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये आज आधुनिक भारत के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहल है हमारी सरकार की। और अच्छी बात ये कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में जैसे कि कनेक्टिविटी का इशू रहता है, बिजली की समस्याएं रहती है, नेट की, तो इसको सॉल्व करने के लिए, इस समस्या से पार पाने के लिए कनेक्टिविटी का और विस्तार किया गया है सरकार के द्वारा। भारत नेट परियोजना है एक जो संचालित हो रही है, फिर कॉमन सर्विस सेंटर्स भी खोले गए हैं
0: क्या बात है।
1: जी, और डिजिटल उपकरण की उपलब्धता भी करवा रही है सरकार हमारी, ताकि विद्यार्थियों को कोई तकलीफ ना हो। साथ में टेलीविजन और हमारा अपना रेडियो,
0: हाँ
1: इसके
0: ये तो
1: द्वारा,
0: माल
1: यस,
0: जी।
1: रेडियो के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा भी ये डिजिटल इंडिया का जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए सरकार पूरे दिलो जान से उस चीज को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, तत्परता दिखा रहे
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: यानी देश का हर बच्चा पढ़ना चाहिए, कोई शिक्षा से वंचित ना हो सके, इस बात का सरकार जो है पूरा पूरा प्रयास कर रही है।
1: बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ऐसा ही है बिल्कुल। तो देखिए आपने जो कहा है कि कोई बच्चा वंचित ना हो, बस यही तो हमारी मंशा है
0: बिल्कुल
1: और यही सरकार की मंशा है, यही समाज को आगे बढ़ाने वाला मूल तत्व है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम बात करें छात्राओं की, तो छात्राओं के उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
1: सही प्रश्न है आपका। देखिए बेटी का संरक्षण, उसका सशक्तिकरण और उसकी प्रगति एक ऐसा केंद्र बिंदु है जो समाज और राष्ट्र से बहुत गहरी जड़ों से जुड़ा हुआ है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम सब जानते हैं, है ना। साथ में हम बेटियों के लिए ऐसी नेशनल जो छात्रवृत्ति का जो पोर्टल है उसमें हमने उनको समानता की बात करी, जो नेशनल हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हम समान अवसर प्रदान करते हैं। फिर अगर कोई लड़की है जो कॉलेज में आके पढ़ी, तो प्रतिभा किरण के द्वारा, गांव की बेटी के द्वारा हम स्कॉलरशिप्स उनको देते हैं। फिर सबको हम आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं, फिर महिला अध्ययन केंद्र बनाया गया है, फिर महाविद्यालय में ही हम लोग उनके लिए एक अलग गर्ल्स कॉमन रूम बनाते हैं, तो उनको परामर्श की व्यवस्थाएं देते हैं। ऐसी अनंत योजनाएं हैं जो सरकार चाहती है कि हमारी बेटियां सशक्त हों, और महिला सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कई सारी बच्चियां सिर्फ पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाती हैं कि उनके पास उचित मार्गदर्शन नहीं होता है या उचित व्यवस्थाएं नहीं होती है, लेकिन सरकार जो है वो पूरा पूरा प्रयास कर रही है कि हमारी हर बेटी पढ़े। अच्छा, आर्थिक रूप से जो बच्चे कमजोर हैं, उन विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति या अन्य सरकारी सहायता योजनाओं की विषय में कोई योजनाएं हैं?
1: हाँ, बहुत सारी योजनाएं हैं। दरअसल हम सभी का, हम जितनी मानव जाति, हम सबका प्रयास रहता है, खासकर भारतीय सरकार, हमारी प्रदेश सरकार का ये परम कहना चाहिए, एक मूल जो हमारा उद्देश्य है, ध्येय है, वो यही है कि कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी सिर्फ इसलिए पढ़ाई ना छोड़े कि उसके पास पैसा नहीं है
0: बिल्कुल
1: या
0: बिल्कुल
1: धनाभाव में किसी की शिक्षा छूटे ना।
0: बिल्कुल
1: तो ये जो छोटा से गैप है समाज का, जिसमें हम निर्धनता कहते हैं, गरीबी कहते हैं, ये कभी बाधक ना बने शिक्षा में,
0: बिल्कुल
1: शिक्षा के
0: बिल्कुल
1: विकास में। इसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं और उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक केंद्रीय योजना है और दूसरा राज्य स्तर की योजना है। तो अगर हम केंद्रीय योजनाओं की बात करते हैं तो आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि एक समग्र ऑनलाइन पोर्टल हमारे यहाँ, जिसको हम राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल कहते हैं, इसमें ऑनलाइन पारदर्शिता के साथ विद्यार्थी अपने फॉर्म्स भरता है और जिसमें वो एलिजिबल है उसकी वो छात्रवृत्ति पाता है, और सेंट्रल सेक्टर्स का स्कॉलरशिप देते हैं। साथ में प्रधानमंत्री उच्चता शिक्षा प्रोत्साहन योजना है, SC ST OBC इन सब के।

0: लिए तो है ही,
1: हाँ
0: और जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जिसको हम कहते हैं आर्थिक रूप से जो कमजोर
1: हाँ
0: वर्ग के
1: जी
0: लोग
1: हाँ
0: हैं, जिनको अपनी टेक्निकल भाषा में EWS कहते हैं, उनके लिए, फिर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, या कोई शारीरिक तौर पे कोई बाधक है कहीं, कोई चाहे दृष्टि का हो या अस्थि का हो, उन सब के लिए भी सरकार बहुत सारी योजनाएं देती हैं ताकि उनका समग्र विकास हो सके शिक्षा के माध्यम से। अगर हम अपने प्रदेश सरकार की बात करें तो हमारे यहाँ पे भी SC ST OBC EWS इनके लिए योजना है ही। साथ में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि हमारे यहाँ गांव की बेटी, प्रतिभा किरण और विक्रमादित्य योजनाएं भी हैं, जो हमारे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देते हैं, सहायता करते हैं और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कई ऐसी योजनाएं भी हैं जो विदेश भी जा सकते हैं हमारे बच्चे, और विदेश में जाके भी उन छात्रवृत्तियों के माध्यम से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सरकार हर स्तर पे विद्यार्थियों के साथ है, चाहे वो धन से हो, चाहे मन से हो, चाहे तन से।
1: क्या बात है, इस तरह की योजनाएं वाकई बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार आर्थिक रूप से जब बच्चे कमजोर होते हैं, पढ़ने में सक्षम नहीं होते हैं, ऐसे में अगर स्कॉलरशिप मिल जाती है बच्चों को, तो वो बहुत बड़ी सहायता मिल जाती
0: सही कह रही हैं,
1: है ना।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं।
1: आगे अगर हम बात करें बच्चों के लिए, तो आज के युवाओं में स्टार्टअप और नवाचार की जो सोच है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। क्या सरकार की ऐसी कोई पहल है जो विद्यार्थियों को उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित करती हो?
0: हाँ हाँ बिल्कुल है, ऐसी योजना है ना, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम रोजगार लेने वाले तो ठीक है, उसके लिए तो सारी सुविधाएं हम दें, लेकिन जॉब क्रिएटर बने।
1: हाँ
0: क्योंकि देखिए, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, देखिए हर किसी में हुनर है, कौशल है, उसको विकसित बस करने की जरूरत है, उसको मोटिवेट करने की जरूरत है, उसको एक अवसर देने की आवश्यकता है। और अगर ऐसा दे पाते हैं हम, सरकार कोशिश कर ही रही है, और अगर किसी के अंदर कोई योजना है, कोई विचार है, कोई दृष्टि है, और अगर वो उसको वास्तविकता के धरातल पर उतार, कोई स्टार्टअप करता है, स्टार्टअप इंडिया योजना है, आपको
1: हाँ
0: पता
1: हाँ
0: ही है,
1: हाँ
0: तो उसके तहत सरकार बहुत कम, मतलब उसमें आपको ऋण भी देती है, व्यवस्थाएं भी देती, मोटिवेट भी करती, ताकि आप जॉब क्रिएटर बने।
1: बिल्कुल
0: तो ये बहुत अच्छी योजना है, स्टार्टअप इंडिया। फिर एक अटल इनोवेशन मिशन भी है, साथ में अटल टिंकिंग योजना लैब्स भी है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी है, जिसमें बिना गारंटी के छोटे मोटे लोन दे दिए जाते हैं। फिर उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ भी है, साथ ही एक ऐसी योजनाएं भी हैं जहाँ पे अगर विद्यार्थी चाहे तो अपने यहाँ पे, जैसे उद्योग केंद्र है, लघु उद्योग है, मध्यम है, उच्च का, आप जानते
1: हाँ
0: होंगे
1: हाँ
0: हर
1: हाँ
0: जिलों में रहते हैं, वहाँ जाके विद्यार्थी जाके प्रशिक्षण लेके, सर्टिफिकेट लेके, उसको बैंकों से लोन दिया जाता है उसकी आवश्यकता के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार। कोशिश ये रहती है कि वो अपना कुछ शुरू करे।
1: बहुत अच्छी बात है कि सरकार इस दिशा की ओर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। हम बात करें विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, आज के विद्यार्थियों को किन कौशलों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अगर आपसे हम पूछें तो?
0: देखिए, मैं ऐसे सोचती हूँ कि जिंदगी में हर चीज का, हर पक्ष का एक केंद्र बिंदु है, और वो है मन। सबसे पहले मन हारे सो हार, मन जीते सो जीत। तो मेरा ऐसा मानना है कि सबसे ज्यादा शहर की सरकार फोकस दे रही है, लेकिन मैं भी उसी का समर्थन करती हूँ, ये पहला पॉइंट यही रखना चाहूंगी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर फोकस किया जाए, जिसको हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंसी। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, बच्चे स्थिर हैं, तो बहुत सारी जो घटनाएं घटित होती हैं समाज में, वो कम होंगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जब हम इमोशनल अपने आप को थोड़ा, इंटेलिजेंसी को थोड़ा स्ट्रांग कर लेंगे, तो हमें थोड़ी सी अनुकूलन की क्षमता आ जाएगी, और हम ये जान पाएंगे कि जिंदगी के उतार चढ़ाव में विद्यार्थी कई बार फेल होता है, कई बार पास होता है, कई बार नौ नौ बार वो इंटरव्यूज देता है, फिर वो नहीं हो पाता सिलेक्शंस, कई बार कोई रोजगार लगाया और वो उसमें नहीं सफल हो पाया।
1: हाँ
0: कई जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जबकि आपको थोड़े से सहारे की आवश्यकता पड़ती है। तो
1: बिल्कुल
0: मैं ऐसा
1: बिल्कुल
0: सोचती हूँ कि जो इमोशनली जो इंटेलिजेंसी, पहले हमें उस पर फोकस करना चाहिए। एवरीथिंग इज इन आवर माइंड, और सरकार इसमें कर भी रही है शिक्षा नीति पे, तो मुझे लगता है ये पहला पॉइंट तो होने चाहिए हर विद्यार्थी के लिए। दूसरा, मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस करना चाहिए, जिसको हम अभिव्यक्ति की बात कहते हैं। आपको चाहे कैसे भी हो, आपका क्रिटिकल हो, सकारात्मक हो, नकारात्मक, लेकिन अंदर के भाव बाहर आना चाहिए हर विद्यार्थी के। तो
1: बिल्कुल
0: ऐसे परामर्श केंद्र हम लोगों ने खोले हैं, कम्युनिकेशन सेंटर भी कॉलेजेस में होते हैं, जहाँ हम ये बात सिखाते हैं, उनको गाइड करते हैं, गाइडेंस देते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, जब अभिव्यक्ति की बात होती है, तो पहले तो कोशिश करें मातृभाषा में हो, सरकार भी ये चाहती है कि हर विद्यार्थी की शिक्षा उसकी अपनी मातृभाषा में हो। लेकिन मेरा एक और उसमें एडिशन है, मेरा सबमिशन है, वो ये कि भाषा एक तो आए ही, लेकिन मोर देन टू होना चाहिए सबको। हमें बहुत पहले के लोगों को नौ नौ भाषाएं आया करती थी, आजकल में एक दो भाषा के बाद ही सब लोते बहुत हो गया। हर विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीखना चाहिए, इससे बहुत सारे फायदे हैं होंगे, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे करियर से रिलेटेड, चाहे मानसिक हो। तो मोर देन टू लैंग्वेजेस हर किसी को आए ऐसी कोशिश करना चाहिए। तीसरी बात, मुझे ऐसे लगता है कि डिजिटल साक्षरता पे हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना की आवश्यकता है। जैसे कृत्रिम बुद्धि, उसको हम AI कहते हैं, और जैसे हम डेटा विश्लेषण की बात करें, साइबर सुरक्षा की बात करें, कोडिंग की बात करें, नई तकनीकी की समझ विकसित करने की बात करें, हर विद्यार्थी को इस स्तर पे करना चाहिए कोशिश। एक और बात है, हमारे अंदर जो अभिरुचि है उसको रचनात्मकता की धरातल पे तौलते हुए हमें कौशल विकास को महत्व देकर नवाचार भी करना चाहिए। होता क्या है, हम चाइना की या बाकी दूसरे राज्यों की जो भी बनी हुई चीज़ें हैं उसको लेते हैं और फिर उसी में अपना लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। हम खुद भी विकसित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, दूसरे देशों से क्यों लेना जब हम खुद कर सकते हैं।
0: स्वदेश को हम बढ़ावा दे सकते हैं, या बाकी जो राज्य हैं वो भी तो कुछ ना कुछ नवाचार ही तो करते हैं, कुछ इन्वेंशंस करते हैं, आविष्कार करते हैं, हमारे विद्यार्थी भी कर सकते हैं। तो वो उनमें सोच होना चाहिए कि जैसे हम क्या अपने क्षेत्र में जहाँ पर हैं वहाँ पे हम क्या बेहतर कर सकते हैं, हम क्या नया कर सकते हैं, वो उनमें एक सोच होना चाहिए। और वित्तीय साक्षरता की बात भी मैं करती हूँ, क्योंकि धन सब कुछ तो नहीं जीवन में, लेकिन बहुत कुछ है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
0: तो ऐसी स्थिति में हमारे विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता भी होना चाहिए कि कैसे हम अपनी लाइफ को किस तरीके से इस क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे ये लगता है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अंत में मैं यही कहूँगी मोटे तौर पर कि जो भी आपका पाठ्यक्रम है वो आपकी रुचि के अनुरूप, आपके करियर के अनुरूप हो, आपके परिवेश के अनुरूप हो, चयन करने के उपरांत आप उसमें अपना 100% दें, और आपका जो ज्ञान है, कौशल है, नवाचार और चरित्र है और सामाजिक दायित्व की जो भावना है, इस सब का एक सुंदर सा ताना वाना हो, एक ऐसा ताना वाना जहां आप विकसित भारत की राह की ओर अग्रसर हो सकें, खुद का विकास करें और राष्ट्र का भी करें।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। आखिर में चलते चलते हमारे युवा श्रोताओं के लिए आपका कोई संदेश, ताकि वे अपने सपनों के साथ साथ देश के विकास में भी योगदान दे सके।
0: ये तो आपने मेरी मन की बात छीन ली। मैं सोच ही रही थी कि मैं अपनी तरफ से कोई ऐसी बात कहूँ शायद किसी के काम आ जाए, किसी का जीवन बदल जाए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, या यूं कहें हमारे देश के जो युवा साथी हैं, उन सब से मेरा यही कहना है कि खुद पर भरोसा करो। आप में अपार क्षमताएं हैं, आप अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के केंद्र बिंदु हैं। आप में वो सब चीजें हैं जिनकी राष्ट्र को अपेक्षा है। आप राष्ट्र के निर्माता हैं, इसलिए अपना हर कदम सोच समझ के रखें, आगे बढ़ें, खुद के रिस्पेक्ट करें। और स्वामी विवेकानंद जी का वो कोटेशन याद रखें कि उठो चलो जब तक कि लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए, और साथ में जिम्मेदारी का बोध आपके अंदर होगा। आप हर जिम्मेदारी को अगर अपने कंधों पर उठाएंगे तो मान के चलिए आप और ज़्यादा हुनरवान और सक्षम बनेंगे। और अगर आप ऐसे करते हैं तो मान के चलिएगा कि आपको इस दुनिया में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। जब कभी कोई मुश्किल आए, कोई समस्या आए, तो खुद से कहना आई कैन डू, मैं हर समस्या का समाधान कर सकता हूँ, मैं अपना विकास और अपने राष्ट्र की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ, और मैं एक ऐसे विकसित भारत का निर्माण कर सकता हूँ जो मेरे सपनों का है। एक और बात कहूँ, सपना ऊंचे ही देखिए, लेकिन ऊंचे सपने जितने हो उतनी बड़ी हमको प्रयास भी करना पड़ते हैं, कोशिशें भी करना पड़ती हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपका सतत प्रयास, परिश्रम, अनुशासन और निरंतर सीखने की आदत। इन सब का खूबसूरत सा संयोजन आप ऐसे बनाएं कि आने वाला वक्त आपका तो खुश रहे, साथ में हमारा राष्ट्र भी खुशहाल राष्ट्र बने, और हैप्पी वाले राज्य में जैसे स्वीडन है ऐसे हमारा विकसित राष्ट्रों में शामिल हो, और 2047

0: कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए सुषमा व्यास को, नमस्कार।
1: बढ़ते कदम, बदलता भारत, विकसित होता भारत।

अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत, प्रस्तुतकर्ता थी सुषमा व्यास। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। आकाशवाणी इंदौर आप गूगल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं, और साथ ही अपने मोबाइल के गूगल में सर्च करें आकाशवाणी इंदौर लाइव, तब भी आप आकाशवाणी इंदौर सुन सकते हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अखलाक वारसी की गाई गजलें, तो आइए सुनते हैं इनकी आवाज़ में कार्यक्रम की पहली और बहुत ही खूबसूरत गज़ल।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अखलाक वारसी की गाई गजल, और आइए इन्हीं की आवाज़ में सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल। रचनाकार हैं अहमद फरहाज।

अखलाक वारसी की गई गज़लें आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम में। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे इंदर सिंह चौधरी और साथियों के गाए मालवी लोकगीत। लीजिए सुनिए मिट्टी की खुशबू से सरोबार और कबीर वाणी से भरपूर ये कार्यक्रम का पहला लोकगीत।

इंदर सिंह चौधरी और साथियों के गाए लोकगीत आप सुन रहे हैं लोक संगीत के कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में आइए सुनिए ये अगली रचना।

मालवी लोकगीत आप सुन रहे हैं लोक संगीत के कार्यक्रम में। कलाकार हैं इंदर सिंह चौधरी और साथी। इनकी आवाज में सुनिए कार्यक्रम की अंतिम रचना।

0: इंदर सिंह चौधरी और साथियों के गाए मालवी लोकगीत आप सुन रहे थे लोक संगीत के कार्यक्रम में। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब समाचार दिल्ली से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एरो स्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरो स्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
1: भगवान

0: पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, गृहमंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस उपलब्धि पर स्काई रूट एयर स्पेस को बधाई दी है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 8 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। यह हादसा रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुआ। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई बल और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के साथ बचाव अभियान में जुट गई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के जुमागाछ स्थित सीमा सुरक्षा बल शिविर का दौरा कर बीएसएफ कर्मियों से बातचीत की। श्री शाह ने एक पौधा भी लगाया और प्रहरी सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने, जन्म और मृत्यु पंजीकरण तथा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा पर चर्चा हुई। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन का पुरस्कार कन्नड़ भाषा की पुस्तक नानी रुविदे निमा गागी नादी रुविदे नाना गागी के लिए प्रदीप कुमार शेट्टी को दिया जाएगा। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिन्दी फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। न्यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में शिवपाल सिंह कंग को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक और आनंद एल राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिलेगा। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन युफेई को पहले गेम में हरा दिया। दूसरे गेम में चेन युफेई की चोट के कारण सिंधु को वॉक ओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र और आकाशवाणी इंदौर आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर और अपने मोबाइल के गूगल पर आकाशवाणी इंदौर अगर लाइव सर्च करेंगे तब भी आप इसे सुन सकते हैं। संध्या के 7:05 और 17 सेकंड हो चुके हैं। श्रोताओं, ये वक्त है आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी देने का, तो सुनिए कार्यक्रम विवरण में। पहले हमारी सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में आपको बता देते हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे खेती गृहस्थी कार्यक्रम। आज की बात होगी फसल बीमा योजना पर। प्राकृतिक खेती कैसे करें, इस विषय पर दुर्गा शंकर बारचे से बातचीत सुनवाई जाएगी। रात 8 बजे सुर्खियों में रिले होगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। 8:15 पर सुनिएगा कुछ फिल्मी गीत, कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया में। 9:15 पर सुनिएगा चित्र गीत। 9:30 बजे राष्ट्रीय चित्र पत्रिका चित्र भारती आकाशवाणी दिल्ली से रिले होगी और यहीं से रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रिले होगा। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारी सभा के शेष कार्यक्रमों की।

0: अब देते हैं जानकारी कल यानी 19 जुलाई के कार्यक्रमों की। सवेरे 6:35 पर सुनिएगा खेती की बातें, बरसात में किसान भाई क्या सावधानी रखें, इस विषय पर जानकारी दी जाएगी। 7:20 पर सुनिएगा कार्यक्रम योग निरोग, मधुमेह और योग पर योगाचार्य नितिन राठौर से चर्चा सुनवाई जाएगी। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरे पल होगा हमेशा की तरह 7:35 पर। कल रविवार को हमारा विशेष कार्यक्रम होता है बच्चों के लिए, जी हाँ श्रोताओं, सवेरे 8:30 सुनिएगा कल के सितारे बच्चे हमारे। चर्चा होगी मौसम में ना बरतें लापरवाही और असावधानी, साथ ही मंगल पांडे की पुण्यतिथि पर चर्चा की जाएगी बच्चों के मुख से। इस क्रम में आरव, कुबेर, आदिरा, हितार्थ, अदिति और अनिका, ये बच्चे हमारे स्टूडियो में उपस्थित होंगे अपनी बातों के साथ। साथ ही जिज्ञासा और समाधान क्रम भी सुनवाया जाएगा। लोक संगीत का समय रहेगा 9:00 का और शाम को भी आप लोक संगीत सुन सकते हैं, और शाम का समय रहेगा 6:45 का। कलाकार होंगे अरुण कुमार गोयल। सुगम संगीत में नरेंद्र चंचल को सुनिएगा 9:15 पर और शाम 6:30। 9:30 शास्त्रीय संगीत में नयनिका नंदी का गाया राग बिलास खानी तोड़ी सुनिएगा। हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन होगा 10:05 से हमेशा की तरह 11:00 तक। आप अगर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं और अपनी पसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर है 2710224, इंदौर का STD कोड है 0731। समय याद रखिएगा 10:05 से 11:00 तक MH हॉटलाइन कार्यक्रम में। हमारी सांध्यकालीन सभा की शुरुआत होगी युवावाणी कार्यक्रम से। आरंभिक चर्चा होगी बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस पर और आज का क्रम के तहत युवा तरंग कार्यक्रम होगा। 5:45 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। 7:20 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम होगा जिसमें आज की बात होगी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना पर। वृक्षारोपण पर प्रगतिशील कृषक कमलेश पारे की वार्ता सुनिएगा, साथ ही एक और वार्ता सुनिएगा किसानों के उपभोक्ता अधिकार और नकली बीज से कैसे बचें, इस विषय पर वार्ताकार होंगी अधिवक्ता पूर्वी पगारे। 8:00 सुर्खियों में रिले होगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। 8:15 पर डगर विकास के कार्यक्रम रिले होगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। 8:30 फिल्म संगीत, 9:15 पर चित्रगीत और 9:30 दिल्ली से संसद के समक्ष मुद्दे प्रसारित होंगे। 10:00 अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा रिले होगी। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारी कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की, और इससे पहले हमने हमारी सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में आपको बताया था। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। संध्या के 7:10 होने वाले हैं। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से रिले होंगे, कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।
1: प्रादेशिक, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में प्रसारित किए जाएंगे।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक कल भोपाल के ग्राम जगदीशपुर में। मुख्यमंत्री ने की विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा। संसद का मानसून सत्र सोमवार से। केंद्र सरकार ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चंदेरी में विद्युत उपकेंद्र का किया लोकार्पण।

0: और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित निवास में आयोजित बैठक में कल 19 जुलाई को भोपाल के ग्राम जगदीशपुर में होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक और 20 जुलाई से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए गए जाने वाले विधेयक प्रस्तावों की विस्तार से जानकारी भी प्राप्त की। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील करेगी। 13 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये यात्रा 25 जुलाई तक चलेगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अशोकनगर जिले के चंदेरी विधानसभा क्षेत्र के पथखेड़ा में 2,38,00,000 रूपये की लागत से निर्मित नवीन विद्युत उपकेंद्र को क्षेत्रवासियों को समर्पित किया। इस विद्युत उपकेंद्र से क्षेत्र के 7 गांवों के नागरिकों को निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण और बेहतर वोल्टेज के साथ बिजली मिलेगी। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि जिस चंदेरी और मुंगावली में कभी 1 या 2 विद्युत सब स्टेशन होते थे, वहां आज 15 सब स्टेशन हैं।
1: मेवनावाड़ा से अमरोहा की सड़क और उसी के साथ मेवनावाड़ा से रसूला बदर का 10 करोड़ का पुल भी मैंने आप लोगों के बनाया। मड़ी में रिंग रोड बन गई, घटावना में बन गई और सब स्टेशनों की तो हम बात करें तो जिस चंदेरी और जिस मुंगावली में 1 या 2 सब स्टेशन होते थे, आज उसी चंदेरी और मुंगावली में 15-15 सब स्टेशन मैंने आप लोगों के लिए स्थापित कर दिए।
0: मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी 2.0 के अंतर्गत प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। जबलपुर पुलिस ने इस अभियान के तहत आज स्कूलों के आसपास तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं एवं आमजन को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशा मुक्त, स्वस्थ एवं सशक्त समाज के निर्माण के लिए जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। विद्यार्थियों में गुरु के प्रति सम्मान एवं भारतीय संस्कार और सांस्कृतिक परंपरा विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों में 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान एक गुरु एक वृक्ष अभियान के अंतर्गत पौधरोपण किया जाएगा, पालक शिक्षक बैठक होगी। इसके साथ ही उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों का सम्मान होगा। वहीं स्वच्छता अभियान एवं जन जागरूकता रैली निकाली जाएगी। 29 जुलाई को समापन समारोह में विजेताओं और 90% से अधिक परिणाम देने वाले शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि स्वस्थ समाज मजबूत राष्ट्र की नींव है। आज नई दिल्ली में भारतीय चिकित्सा संघ के पुरस्कार समारोह में श्री सिंह ने कहा कि चिकित्सा पेशेवर न केवल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं बल्कि देश की विकास यात्रा को भी मजबूत कर रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि डॉक्टर अपने समर्पण और सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित किए गए रॉकेट विक्रम 1 ने आगमन मिशन के अंतर्गत पेलोड को पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में 450 किलोमीटर दूर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया है। यह प्रक्षेपण आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12:05 पर हुआ। इसके साथ ही भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का 3रा देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विक्रम 1 का सफल प्रक्षेपण अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की सार्वजनिक निजी भागीदारी की बढ़ती शक्ति को दर्शाता है।
3: Congratulations InSpace for facilitating.
4: InSpace और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।

0: एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी।
1: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय युवा शोधार्थियों के लिए देशव्यापी शोध लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता 4 प्रमुख विषयों पर आधारित होगी, जिनमें वित्तीय संघवाद और सुशासन, कौशल विकास, रोजगार और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, सामाजिक क्षेत्र का व्यय तथा शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण शामिल है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है, जबकि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए 30 सितंबर तक प्रविष्टियां भेजी जा सकती हैं। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रकोष्ठ की स्थापना की है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार 22 जुलाई को एक कार्यशाला के दौरान इस प्रकोष्ठ का शुभारंभ करेंगे। पहले चरण में 341 सरकारी और निजी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके लिए 21 से 23 जुलाई तक 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। श्रीकांत ने फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता। वहीं यामी गौतम ने फिल्म आर्टिकल 370 के लिए बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल का पुरस्कार जीता। ममूटी और कार्तिक आर्यन ने अपनी फिल्मों ब्रह्मयुगम और चंदू चैंपियन के लिए बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल का पुरस्कार साझा किया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आनंद एल रॉय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए दिया जाएगा। अब रुक करते हैं खेल की खबर का। पीवी सिंधु ने टोक्यो में खेले जा रहे जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल्स में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन के विश्व की नंबर 4 खिलाड़ी चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान डिंडौरी और उमरिया जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार 19 जुलाई से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से प्रदेश में लगातार तेज बारिश का सिलसिला शुरू होने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने वन क्षेत्रों में विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रायसेन वन परिसर में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत सांची विधायक ने सिंगल क्लिक के जरिए योजना के 305 पात्र हितग्राहियों को पहली किस्त की राशि ट्रांसफर की। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर नर्मदापुरम में जिला न्यायाधीश ने छात्र छात्राओं को शिक्षा के अधिकार, पॉक्सो एक्ट, श्रम कानून के साथ जरूरी जानकारियां प्रदान की। शिवपुरी जिला अस्पताल ने कायाकल्प अवार्ड के तहत प्रदेश में पहला स्थान हासिल कर 15 लाख रूपये का पुरस्कार जीता है। राजगढ़ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील समितियों में नए पैरा लीगल वॉलंटियर्स की भर्ती के लिए साक्षात्कार 24 जुलाई को आयोजित किए जाएंगे। खंडवा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के अंतर्गत छात्र छात्राओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। धार जिले में आज जिला मुख्यालय एवं तहसील न्यायालयों में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया और जबलपुर पुलिस ने नशे से दूरी अभियान के तहत स्कूलों के आसपास तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक कल भोपाल के ग्राम जगदीशपुर में। मुख्यमंत्री ने की विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा। संसद का मानसून सत्र सोमवार से। केंद्र सरकार ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चंदेरी में विद्युत उपकेंद्र का किया लोकार्पण और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं खेती गृहस्थी कार्यक्रम।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी यानी AIC द्वारा मध्य प्रदेश के आगरमालवा, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, भिंड, भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, डिंडोरी, गुना, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी, मैहर, मंडला, मंदसौर, मऊगंज, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, पांडुर्णा, पन्ना, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, अरहर, तुअर, ज्वार, कोदो कुटकी, मूंगफली, तिल, कपास, मूंग, उड़द की फसल का बीमा किया जा रहा है।
3: किसी भी प्रकार की जानकारी, मार्गदर्शन, आवेदन से जुड़ी सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 1-4447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है।
2: 7-0-6-5-5-1-4-4-4-7 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल हाय या नमस्ते लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलें, क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। सुरक्षित फसल, खुशहाल किसान। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
4: खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनवाड़ा हमारा सब किसान भाई बहन का संध्या कोठारी को राम राम। मैं हूँ खेतीबाड़ी का काम तो बढ़िया चली रहा है, बोनी भी हुई गई ना, देखो पानी बाबू आई भी गयो ना, अब घना दिन होगा कि पानी आई नहीं रहे हैं, पर घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा मौसम विभाग कह रोज कि अगला 24 घंटा में अपना यहाँ पानी भी आई जाएगा। पर भाई हूँ प्रकृति पर हम निर्भर हाँ और वसोज हम सब काम भी कराएं, पर फिर भी हम हमारी सावधानी का लें, अगर हम योजना न को लाभ लेवा तो निश्चित रूप से हमको नुकसान कम होएगो न फायदा में हम रवांगा। ऐसी छे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या कृषि मंत्रालय का कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाने वाली यह एक फसल बीमा योजना छे। एका अंतर्गत कदी प्राकृतिक आपदा होए और ओलावृष्टि हो, सूखो अकाल पड़ी जाए, कीट अन बीमारी न का कारण फसल का जो नुकसान होगा भाई उन ओकार वित्तीय सुरक्षा या अपन का प्रदान करेगी। तो फसल बीमा योजना जो छे एक आखिरी तारीख जो छे 31 जुलाई छे। तो हमारा सभी किसान भाई बहन से हम अपील करूँगा कि आप 31 तारीख को रस्तों मत देखो, हमारी फसल हो गई, फसल हमारा खेती बाड़ी का काम कर ही लिया है, तो यह बीमा जरूर हम करार लेवा। साथ में आपको हो यो बते दूँ कि यो जो बीमो हमको करान लो, जो हमारा ऋण धारक कृषक छे जिन्ना अपनी खेती बाड़ी पर कुछ ऋण लियो होगा, उनको तो एक आम देखो यो बीमो बैंक द्वारा हो जाएगा, पर अगर जो किसान ने यो बीमो ऋण नहीं लिए है वो भी अपनो बीमो फसल बीमा ले सकज। साथज में यो भी ध्यान रखो कि कोई भी किसान हो, छोटो हो, बड़ो हो, अधिक जमीन वाला हो, सबका लेन यो एक समान छे। आप फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री का अंतर्गत यो ले सको। साथज में आपको बता दूं कि बहुत कम

प्रीमियम एक ही आवगी और बाकी जो पैसों छे वो सरकार द्वारा हमको दियो जाएगो। अब अगर हम बीमो कराना जावा तो हमको काई काई कागज लगेगा वो भी हम आपको बता दूँ कि कोई खास ज़्यादा कागज नहीं है, अपना आधार कार्ड तो देखो सब दूर चले, तो आधार कार्ड दे देवा, बोई हुई फसल को प्रमाण पत्र लगेगा वो हमारा कृषि राजस्व विभाग से हम ले सकें, साथ में एक घोषणा पत्र रहे उनको कि भाई आपने कितो पट्टा में कितनी भूमि में हमने यह बुआई करी उन्हें हिसाब से चाहिएगा। और बैंक पासबुक की फोटो कापी चाहिएगा कि भगवान न करे कभी कहीं भी अपने नुकसान नहीं होए, फसल अच्छी आवे और हमारा घर में धन धान्य से भरपूर हो न फसल आवे। हम तो याजज भगवान से प्रार्थना करांगा, पर कभी कहीं दिक्कत आवे तो सरकार जो पैसे डाले वो हमारी पासबुक में बैंक में तुरंत आई जाए, ओका लेने की कापी भी हमको लगेगी। एक अलावा आपका और भी कोई जानकारी भाई होना चाहिए तो एक ही एग्रीकल्चर इंश्योरेंस प्रतिनिधि या क्षेत्रीय कृषि विस्तार अधिकारी या वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी या जो अपना पास में बैंक शाखा हो वहाँ जाए ना हम यो पत्र लगा ही सकें कि हमको किस प्रकार से यो बीमो कराना। और ओका अलावा भी कभी ऑनलाइन का आजकल तो काम ही गए तो एका में भी कृषि रक्षक जो पोर्टल छे ओका में छे 1447 वो भी खोली ना हम एक भी जानकारी रह सकें और यो बीमो हम हमारो कराड़ी सकें। तो भाई हूँ 31 जुलाई आखिरी छे, आखिरी को रस्तो नहीं देखा और हम हमारी जो फसल छे वो को बीमो जरूर करा लेवा। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ावांगा न हमारा सभी किसान भाई बहनों को सुनाऊंगा एक लोकगीत, एक गायोज शारदा पगारेना।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: किसान भाइयों, खेती करने की बात ना आवे, रासायनिक खाद डालान, रासायनिक दवाई ना को छिड़काव करान, जब कहीं जाए ना अपनी फसल अच्छी आवे, पर भाई असोनी है प्राकृतिक खेती भी हम करी सकें। अब हमारा सभी किसान भाई बहनों का मन में होगा कि भाई प्राकृतिक खेती करा कैसे, बीज कहाँ से लावा, पछा वापिस से किस प्रकार से हम ये सब करी सकांगा। तो प्राकृतिक खेती कैसी करा, एक ही जानकारी देना का लिए आज हमारी चौपाल पायल छे श्री पूर्णाशंकर बारचे। ऊँचे रिटायर्ड कृषि विस्तार अधिकारी अन प्रशिक्षण प्राकृतिक खेती को भी देश अन संचालक छे देशी बीज बैंक खरगोन का। तो भाई आएगा तो इनका से बात कर लें, आप भी सुनो अन लाभ जरूर लेजो।
3: भाइयों, विषय छे कि प्राकृतिक खेती कसी करा न एका में देशी बीज न को काई महत्व छे। आज हमको जानकारी देगा पूर्णाशंकर जी बर्वे, जो कि रिटायर्ड कृषि विस्तार अधिकारी भी छे न प्रशिक्षण प्राकृतिक खेती एवं संचालक देशी बीज बैंक और इच्छे अपना खरगोन से। तो भाई राम राम।
4: राम राम।
3: आप हमको बताओ कि जो प्राकृतिक खेती सभी दूर खूब शोर मचीरो देखो कि प्राकृतिक खेती करा प्राकृतिक खेती करा, तो यह छे काई।
4: सबसे पहले तो सभी किसान भाई बहनों का मारो राम राम, हो भी निमाड़ को आए लेकिन मैं हिंदी में बात करूंगा।
3: बिल्कुल बिल्कुल। ये
4: जो जी ये जो प्राकृतिक खेती है,
3: हाँ,
4: इसका मतलब ये कि इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवा,
3: अच्छा,
4: ना कोई बाजार के कोई केमिकल।
3: अच्छा।
4: तो इस खेती को बोलते प्राकृतिक खेती। इस प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, जैसे देशी गाय का गोबर, गोमूत्र, हाँ, और जो जंगल में पाए जाने वाली वनस्पति है उससे, अच्छा, कीटनाशक दवाएं बनाई जाती है। जी
3: अच्छा। हाँ, जैसे आपने कहो कि भाई प्राकृतिक खेती के कई ने एका में संसाधन भी हमको काई काई लगेगा, ये भी आप हमारा किसान भाई बहन का जैसे आपने बताया ना, और एक अलावा काई लगेगा।
4: जी, प्राकृतिक खेती यदि आप कर रहे हैं तो आपके पास देशी गौ माता होना बहुत जरूरी है।
3: अच्छा,
4: देशी गाय का गोबर गोमूत्र होना बहुत जरूरी है। जी
3: अच्छा अच्छा। जैसा ये लोग कोई जर्सी गाय वापरज या कोई बाहर की गाय न वापरज, ओको गोबर नहीं काम देगो?
4: जी नहीं।
3: अच्छा।
4: जो भी क्रॉस ब्रीड है, क्रॉस ब्रीड जो गाय है,
3: हाँ,
4: उसके गोबर गोमूत्र में वो शक्ति नहीं होती जो देशी गाय में होती है।
3: अच्छा।
4: मैं आपको बता दूं,
3: हाँ,
4: कि देशी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से 500 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं।
3: ओहो हो।
4: ये खेत में काम आते हैं जीवाणु।
3: अच्छा।
4: तो ये जो है हाइब्रिड किसी भी गाय में नहीं पाए जाते। जी
3: अच्छा। देखो आपने इतनी अच्छी बात बताई जो शायद हमारा बूढ़ा मनुष्य न कभी न मालूम होगा कि जो देसी गाय भी वापरता था अपनो घोड़ो भी वो जो इकट्ठो करता था, खाद भी अपना गाय न की गोबर को उस टो जो ठो जो भी अपनो निकलते थो छिलका इनका खाद बने ना ओका से देखो खेती करता था।

0: जमच कहूँ कि बूढ़ा लोग अपना कितना अच्छा स्वस्थ रहता था।
1: जी जी जी जी
0: बिल्कुल भाई। बर्चे साहब, प्राकृतिक खेती में देशी बीज नो को भी कई महत्व छे?
1: देखिए, बीज बहुत महत्वपूर्ण जो है कृषि में अपना योगदान देता है।
0: अच्छा।
1: अभी वर्तमान में जितने बीज आए हैं वो सब जो बो रहे हैं लोग बाग, वो सब हाइब्रिड है।
0: अच्छा।
1: सब संकर बीज है। तो संकर बीज और देशी बीज में बहुत अंतर है। संकर बीज को एनपीके चाहिए, उनको रासायनिक खाद चाहिए।
0: अच्छा।
1: तो वो उत्पादन नहीं देंगे।
0: अच्छा।
1: संकर बीज जो है संवेदनशील होते हैं, उनमें बहुत जल्दी कीट बीमारी आते हैं।
0: हाँ।
1: और उनमें पोषक तत्व और स्वाद की बहुत कमी होती है।
0: अच्छा।
1: और सबसे अभी जबकि अपन बोलते हैं कि पहला सुख निरोगी काया।
0: बिल्कुल भाई,
1: हमें सबसे पहले तो हमारे शरीर के लिए अच्छा पोषण चाहिए, हमें अच्छा स्वाद चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: हमारा अच्छा पोषण रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो ये सारे संकर बीजों में नहीं पाए जाते हैं।
0: अच्छा।
1: बीज वो होता है जिसमें उत्पादन करने की क्षमता बार बार हो।
0: अच्छा।
1: एक साल नहीं, बारंबार।
0: तो यह तो
1: ये देसी बीज, प्राकृतिक खेती में देसी बीज का उपयोग होता है तो उसका रिजल्ट सही मिलता है जी।
0: अच्छा, तो भाई मैं ये पूछूंगा कि फिर देसी बीज कहाँ से लावा?
1: नहीं, देसी बीज के लिए कई हजारों भाई बहन पूरे देश में काम कर रहे हैं।
0: अच्छा।
1: जिसमें से एक मैं भी हूँ।
0: अच्छा।
1: 2010 से मैं भी लगातार, अभी 17 साल हो गए, मैं जो बिल्कुल आदिवासी अंचलों से मैंने देसी बीजों को खोजा है।
0: अच्छा।
1: हमारे आदिवासी भाई बहनों ने जो दूरांचल में रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, उन्होंने स्वाद को नहीं बदला, उन्होंने देसी बीजों को अभी तक संभाल कर रखा है। क्योंकि और बाकी हाइब्रिड बीजों को वो इतना नहीं अपनाते जितना देसी बीज। तो मेरे जैसे कई भाई बहन उन लोगों के पास जाके देसी बीजों को लेके आए और पूरे देश में इसको भी फैला रहे हैं। कई बहनों को, भाइयों को देसी बीज के लिए जो है पद्मश्री भी सरकार ने दिया है जी।
0: अच्छा अच्छा, तो जैसे देसी बीज हमारा किसान भाई अगर जैसा एक बार ले आना खेती करे तो बाद में वो बीज बना ही सके कि नहीं, हर बार देसी बीज खरीदना पड़ेगा?
1: बिल्कुल, आप आदिवासी अंचलों में जाओ तो मक्का के भुट्टे टंगे हुए मिलेंगे आपको।
0: अच्छा।
1: उन बुजुर्गों से, एक बुजुर्ग से मैंने पूछा कि भाई वो 70 साल का था, ये मक्का के भुट्टे आपने क्यों उतार कर रखे हैं? तो बोले ये अगले साल बोने के लिए। इनके ये बीज आपके पास कब से है? तो बोले मेरे दादाजी के टाइम से। मतलब ये वर्षों से ये बीज जो है चला आ रहा है, और इसके लिए बाजार जाना नहीं पड़ता, कंगनों में मटकों में इसको संभाल के रखते हैं। और यही देसी बीज अगले साल भी काम आता है बोने के लिए जी।
0: अच्छा, तो या तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अपन का बीज खरीदना नहीं जानो ना, अपना आज खेत का बीज अपन आज अपना खेती में अगले साल पछा अपन लगाई सके। तो
1: जी जी,
0: या तो बहुत अच्छी बात है ना। आपको जैसे जैसे पूछूंगा कि प्राकृतिक खेती हमारा किसान भाई बहन का हम करना कल्याण कही रहा है कि भाई प्राकृतिक खेती करो, तो काई किसान की आय काम बढ़ेगी?
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसमें लागत कम लगती है। प्राकृतिक खेती में आपको बाजार जाना ही नहीं है।
0: अच्छा।
1: किसी भी दुकान पे जाना नहीं है, है ना। तो
0: हाँ,
1: जैविक खेती के बहुत सारे उत्पाद मार्केट में है।
0: अच्छा।
1: तो जैविक खेती अलग है और प्राकृतिक खेती का मतलब ये कि आपको आपको किसी भी मार्केट में किसी भी दुकान पे नहीं जाना है।
0: ठीक।
1: सारी सारी दवा, कीटनाशक दवा, फफूंद नाशक दवा, ये सारी प्राकृतिक संसाधनों से, गोबर से, गोमूत्र से, है ना, सीताफल के पत्ते, नीम के पत्ते, है ना, करंज के पत्ते, इनसे सब चीज घर में बनती है। इसमें छाछ का उपयोग होता है, इससे फफूंद मरती है। तो जब हमको बाजार जाना ही नहीं है, न बीजों के लिए बाजार जाना है, न हमको कीटनाशक दवा लेने बाजार जाना है, तो हमारा पैसा तो बचा।
0: बिल्कुल,
1: किसान के जेब का पैसा तो पूरा बचा।
0: बिल्कुल।
1: और इसमें उत्पादन यदि आप 100% करेंगे, क्योंकि इसमें जो है प्राकृतिक खेती में जो जो भी चीजें बताई जाती है, जीवामृत बनाना, घन जीवामृत बनाना, कीटनाशक बनाना, तो ये पूरी चीजें जो है अच्छे तरह से हम लोग सिखाते हैं।
0: अच्छा।
1: ये सभी तरह से आप ये जो किसान भाई बहन सीख जाएंगे और उसको 100% करेंगे तो इसमें उत्पादन बिल्कुल नहीं कम होगा। और रही बात इनकम की, तो इनकम के बारे में आपको बता दूं कि अभी पूरा देश और पूरा यूरोप, पूरा वर्ल्ड जो है जैविक उत्पाद के लिए एक अच्छी खासी मार्केटिंग है।
0: अच्छा अच्छा।
1: इसकी कीमत किसान तय करता है। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो गेहूं बिकता है ना, जो केमिकल वाला है, वो 30 रुपए किलो बिकता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन यदि आप प्राकृतिक खेती से गेहूं उत्पादित कर रहे हैं

0: तो हमारे भारत में ही जो मार्केट है उसमें जो देशी बीज है बंसी गेहूं, इसकी कीमत 6,000 रुपए कुंटल है। सोना मोती गेहूं है, इसकी कीमत 7,500 रुपए कुंटल है। और एक खपली गेहूं आता है जो कि ग्लूटेन फ्री आता है, फाइबर ज्यादा आता है। खपली गेहूं की कीमत 10,000 रुपया कुंटल है जो लोग खरीद के खा रहे हैं।
1: अच्छा,
0: तो इससे अच्छी खासी इनकम हो सकती है। कई किसान भाई लोग इसको जो है, कई किसान जो है ऐसे नौजवान किसान है जो नौकरी छोड़ के, अच्छे अच्छे पैकेज की नौकरी छोड़ के और जो है प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उससे अच्छी खासी कमाई हो रही है। जी
1: बढ़िया, या तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, पर एक फिर भी हमारा मन में कुछ संदेह छे कि कई प्राकृतिक खेती किसान ना अपन का कही दियो कि प्राकृतिक खेती से हमारा बनायेला ये गेहूं है, पर अपन का प्रमाणित काई रहेगा कि हाँ ये वसा गेहूं है।
0: देखिए शुरुआत में मैं किसान भाई बहनों को केवल एक चीज बोलना चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती की शुरुआत अपने किचन के लिए करें,
1: बिल्कुल
0: उसके स्वास्थ्य के लिए और अपने किचन अपने परिवार के सदस्यों के लिए। इसमें आपका एक एकड़ आधा एकड़ में काम हो जाएगा।
1: ठीक,
0: जब आप हिम्मत करेंगे 2 एकड़ की 5 एकड़ की, तो इसमें दो चीज है। एक तो आपको मार्केट खुद बनाना पड़ेगा, आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारे पास अमृत तुल्य फल सब्जी अनाज और मसाले के उत्पाद है, और लोगों को बताना पड़ेगा कि ऐसा आप बीमार नहीं पड़ोगे, इससे आपको पोषण मिलेगा। धीरे धीरे आपका नेटवर्क होगा, नेटवर्क जब अच्छा खासा हो जाएगा, आप जो है फेसबुक के माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से का नेटवर्क बनाएंगे, क्योंकि सरकार ने अभी तक जैविक का कोई मार्केट नहीं दिया है।
1: अच्छा,
0: तो इससे सरकार पे डिपेंड नहीं रहना हमको। किसान का अपना एक मार्केट होगी, एक पहचान बन जाएगी, तो लोग अपने आप उससे बुलाएंगे। और एक दूसरा एक जो है तरीका और है, यदि कोई 5 एकड़ 10 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहा है तो उसको एपिडा एक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है।
1: अच्छा।
0: एपिडा को पूरा वर्ल्ड मानता है उसके नियमों को, वो जैविक खेती पे प्रमाण पत्र देता है।
1: बिल्कुल,
0: इसमें ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अपने भोपाल में भी मध्य प्रदेश जैविक प्रमाणीकरण संस्था जिसको MPSOCA MP सोका के नाम से है, जिससे कि हमारे मध्य प्रदेश के और देश के कई किसान उससे प्रमाणीकरण करवाते हैं। वो 3 साल में प्रमाण पत्र मिलेगा। उसको अपनी वेबसाइट पर डाल दो और अपने उत्पाद आप वेबसाइट पर डाल दो, तो पूरे इंडिया से नहीं, आपको यूरोप से और बाहर से भी ऑफर आएंगे कि हमको ये चीज चाहिए और भाव आपका रहेगा।
1: यह बात आपने बहुत अच्छी बताई, क्योंकि सबका मन में संदेह रहे, और प्रमाणिकता तो एक ऐसी चीज की अगर अपन का प्रमाणित मिली जाए कि नहीं यह चीज बिल्कुल अच्छी चीज मिलेगी, तो आप 1 रुपया छोड़ो, 1 रुपया छोड़ी ना आदमी 10 रुपया भी देना खा लेना तैयार रहे।
0: और अच्छा
1: है नी, और पौष्टिक खानो के करनी चाहिए है नी।
0: और बता दूं आपको कि हमारे यहाँ पे टाटा और रिलायंस नाम की दो बड़ी बड़ी कंपनियां,
1: बिल्कुल
0: आप बड़ी बड़े शहर में जाओ, मुंबई अहमदाबाद, आप पुणे में जाओ, इंदौर में जाओ, तो रिलायंस ऑर्गेनिक और टाटा ऑर्गेनिक के नाम से आपको दुकानें दिखाई देगी।
1: अच्छा,
0: वहाँ पे किसानों की एक लिस्ट रहती है कि मध्य प्रदेश या भारत के ये किसान के उत्पाद हमारे पास हैं, और वो परमिशन ले लेते हैं एपिडा से बेचने के लिए।
1: ठीक,
0: वो टाटा और रिलायंस कमा रहे हैं और वो किसान भी कमा रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: और अच्छे बड़े बड़े लोग कार लेके और ये लेके जाते हैं और जो कीमत लिखी रहती है उसको देते हैं।
1: अच्छा, तो भैया
0: किसान का भी फायदा है। जी
1: हाँ हाँ हाँ भैया, खास बात ये नहीं कि किसान बेचना कहाँ जाए भाई, किसान का तो जो अनाज निकले फट से वो कोई का दे दे और वो खेरची दिया कर, तो किसान का भी फायदा और ना व्यक्ति का भी फायदा मिली जाएगा और किसान को समय बचोगे।
0: जी बिल्कुल,
1: और आय में बढ़ोतरी, पैसों बचेगा, आय में भी बढ़ोतरी होगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और हमारी
0: एक किसान है, मैं आपको बता दूं, एक किसान है संकल्प शर्मा विदिशा का।
1: अच्छा,
0: उसने बड़े पैकेज की नौकरी करी, वो 20-22 लाख की पैकेज पे नौकरी था। उनने मेरे जो गुरुजी हैं सुभाष पालेकर जी, पद्मश्री जिनको मिला है
1: जी जी,
0: उनसे ट्रेनिंग लेने के बाद प्राकृतिक खेती सीखी और अभी वो विदिशा में जो खेती कर रहे हैं, उनका उत्पाद खेत में ही रहता और बुक हो जाता है। जैसे वो शरबती गेहूं पकाते हैं, वो 6,000 रुपये कुंटल में शरबती गेहूं कटता भी नहीं।
1: अच्छा,
0: उसके पूरे पहले ही पूरा गेहूं बुक हो जाता है।
1: बढ़िया, या तो आपने बहुत अच्छी बात बताई
0: जी।
1: और जैसे आप थोड़ी सी यो भी बता दो कि लोग जैविक खेती करे तो प्राकृतिक और जैविक में काय अंतर है।
0: ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैंने 38 साल कृषि विभाग में नौकरी करी है और उसमें हमको 2000 जो है दस तक मैं तो कहता हूँ अभी 3-4 साल ही हुए प्राकृतिक खेती चालू हुई है। तो हमको पहले वैज्ञानिक लोग जैविक खेती सिखाते थे।
1: अच्छा।
0: जैविक के नाम से कई कंपनियां देश की विदेश की दुनिया भर के टॉनिक ग्रेनुल्स खाद मार्केट में पैकेट बना बनाकर बेच रही है।
1: अच्छा।
0: तो और वैज्ञानिकों ने भी राइजोबियम कल्चर पीएसबी कल्चर ये बनाए और ये भी खरीदना पड़ते थे किसान को। तो वर्मी कंपोस्ट एक आया, वो ऑस्ट्रेलिया का केचुआ आया, वो वैज्ञानिकों ने सिखाया कि आप केचुआ खाद बनाओ, जबकि वो ऑस्ट्रेलियन केचुआ उसके बॉडी से जो है लेड और आर्सेनिक निकलते हैं। वो प्राकृतिक खेती में उसका उपयोग नहीं किया जाता।
1: अच्छा।
0: तो कोई भी पहले खर्चा होता था जैविक खेती के नाम पे, क्योंकि बाजार से चीजें खरीदनी पड़ती थी।
1: बिल्कुल।
0: वो प्राकृतिक खेती में तो सभी चीज आपको अपने खेत में आपके खलियान में ही बनानी है।
1: बिल्कुल, वो तो स्वयं अपने घरों में ही सारी मिल जाएगी चीजें।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में ये अंतर है।
1: अच्छा, आपने तो को बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को और भी कुछ कहना चाहें तो
0: मैं तो एक ही चीज बोलूंगा।
1: हाँ।
0: कि हमें सबसे पहले अपने अपने जीवन अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है।
1: बिल्कुल।
0: किसान भाई भी बीमार है, किसानों को भी कैंसर हो रहा है, डायबिटीज किडनी खराब हो रही है, हार्ट अटैक आ रहे हैं। मैं जानता हूँ, मैंने नौकरी की है गांव गांव जाके, गांव में भी लोग बीमार है, किसान बीमार है, उनका परिवार बीमार है। आप शुरुआत एक एकड़ से करें, पहले अपने परिवार के लिए पूर्ति पूरी कर लें। हर किसान भाई बहन अपने परिवार के लिए अपने किचन में 100% जो है जो कोशिश करे कि हर चीज फल सब्जी अनाज और मसालों की फसल लगा के, मल्टी लेयर मल्टी क्रॉप लगा के, एक ही एकड़ में सभी तरह की फसल लगा के, और अपने अपने परिवार को सुरक्षित करे, स्वयं को, और उसके बाद पूरी दुनिया उनका उनकी तरफ निगाह करके खड़ी है कि उनके उत्पाद अच्छी कीमत में देने के लिए तैयार है। मेरा केवल यही संदेश किसानों को देना चाहता हूँ।
1: देखो, आपने इतनी अच्छी बात बताई कि पहले अपन अपना घर से चालू करा, और पहले घर का बचावा, फिर परिवार का भी और फिर समाज का भी। तो इस प्रकार
0: मैं बता दूं कि अभी जी वर्तमान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये भी चूंकि रासायनिक खाद बहुत महंगा हो रहा है, यूरिया की बहुत कमी हो रही है देश में, इफको की कमी हो रही है, तो अब हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री, हमारे राज्य के कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री सभी एक ही उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं कि आप प्राकृतिक खेती करो।
1: बिल्कुल।
0: एक पूरी जो केंद्र सरकार की आत्मा प्रोजेक्ट है वो भी जो है पूरे किसानों को ग्रुप बना बना के गाँव में जा जाकर सारे वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र के ये सब प्राकृतिक खेती सिखा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इसको सीखे और करें।
1: बिल्कुल। देखो, आपने हमारा किसान भाई बहनों को इतनी अच्छी जानकारी दी। पूर्णा शंकर जी बारचे आज हमारे चौपाल पाया और हमारा किसान भाई बहनों को जानकारी दी। पर हमारा किसान भाई बहन सब एक समझ कर और लाभ ले, एक कारण आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई, देखो इतनी अच्छी जानकारी हमको मिली, तो निश्चित रूप से हमको जानकारी राखन अगर काम करांगा तो सबसे पहलो सुख निरोगी काया, हम तो हमारी काया सुधारी लेवांगा और बाकी सब न कभी सुधारा न प्राकृतिक खेती जरूर करा न। अब सुने लेवा संदेश।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: मनोरंजन की बात रुकरा ने एक लोक गीत सुनांगा, एक गायोज नारायण लाल सिसोदिया ने।

अभी हम सुन रहा था यो लोकगीत एक गायो तो नारायण लाल सिसोदिया जी ना न भाई उन शनिवार को दिन छे आना आपका सब नक सुनूंगा सुंदरकांड यो गायो मुकेश ना।

किसान भाइयों, अभी हमने यो रामायण पाठ सुनियो, एक गायो थो मुकेश ना। तो देखो काल भी ऐसा हम मिलांगा, वात भी करांगा, लोकगीत भी सुनांगा, पर अब हम आपसे सब न सिलूंगा विदा, न कहूंगा राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में कार्यक्रम सुर्खियों में रिले होगा आकाशवाणी भोपाल से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है कार्यक्रम सुर्खियों में।
0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए नीति आयोग का निवेश अनुकूलता सूचकांक और राज्यों में प्रतिस्पर्धा और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निशीत कुमार।
2: नीति आयोग ने 17 जुलाई को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स नामक एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शुभमय भट्टाचार्य जी। शुभमय, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्कार
2: शुभमय। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स यानी कि निवेश अनुकूलता सूचकांक क्या है और इससे हम क्या समझें?
3: अगर हम सहज भाषा में इसकी बात करें तो कोई अगर किसी राज्य में जाके अपना बिजनेस करना चाहता है तो वो स्टेट में करना कितना संभव है और या कितना असंभव है, बस यही है इन फ्रेंडलीनेस इंडेक्स। हम इसको आगे इस पर बहुत सारे बिंदु पर ध्यान दे सकते हैं कि जब हम कहते हैं कि करना संभव है, करना असंभव है, तो संभव का मतलब क्या होता है, असंभव का मतलब क्या होता है, किस जगह पे कौन सा राज्य क्या सुविधा देती है, कहाँ पे अड़चने आ जाते हैं, इन सब चीजों के बारे में अगर हम बात भी करें तब भी बात वहीं पे से शुरू होती है कि स्टेट में

0: करना आराम है, आसान है या दुष्कर है। तो दैट इज द इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स का बेसिक या जिसे कहते हैं अंडरलाइंग पॉइंट।
1: जी
0: और आपने जैसे बताया सही कि ये नीति आयोग ने ये इन्वेस्टर फ्रेंडलीनेस इंडेक्स एक जारी किए हैं, और ये सिर्फ जैसे आपको मैं बता दूं ये वाला चीज इज पहली बार इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स, बट इस तरीके का स्टेट्स की से मैं कहूं कि स्टेट्स का कितना यूजफुल है, कितना किस तरीके का स्टेट्स के पॉलिसीज हैं, इस पर बहुत सारे चर्चाएं हुई हैं। नीति आयोग की तरफ से ही कई सारे रिपोर्ट्स पिछले सालों में आ चुके हैं। एक रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि वो भी मोर और लेस सेम चीजों को ही दर्शाता है। एक रिपोर्ट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, या किस स्टेट्स किसने तरीके से अपने पॉलिसीज को बनाए हैं ताकि इन्वेस्टर को पता चले कि भाई यहाँ जाना चाहिए या यहाँ पे जाने से क्या क्या संभावनाएं या क्या क्या सहायता मिल सकती है।
1: लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें शुभमय, तो कहाँ तक ये जो इंडेक्स सामने आया है, इस ग्राउंड रियलिटी को कहाँ तक दर्शाता है, किस हद तक सफलतापूर्वक दर्शाता है, अगर मैं पूछूं आपसे?
0: अशीत जी, ग्राउंड रियलिटी की ही इसमें ये मापदंड है या इसका ही अनुसरण किया गया है। सिंपल बात है कि अगर एक निवेशक किसी राज्य में जाते हैं तो उस राज्य में उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से प्रोडक्ट्स हैं या कौन से सर्विसेज हैं जिसपे वो स्टेट माना जाता है, अगर है तो उन प्रोडक्ट्स के बिजनेस में स्टेट कितनी सहायता देती है या कितने तरीके का अपॉर्चुनिटीज सामने प्रदान करते हैं। एक तरफ होता है इसमें कि हम अगर मोटा मोटी अगर इन चीजों को देखें कि एक तरफ तो होता है इंडिया में कि राजतंत्र यानी कि ब्यूरोक्रेसी वो कितना सहायक है या वो कितना दुष्कर है हैंडल करने में, म्यूनिसिपल गवर्नेंस म्यूनिसिपल लॉज किस स्टेट्स के कितने अच्छी तरह से बने हुए हैं, एक शहर से दूसरे शहर तक की यात्रा में कितने जिसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस है या कितनी
1: सुविधाएं हैं।
0: आसानी से जा सकते हैं। तो दीज आर द ग्राउंड रियलिटीज। एंड फिर नेक्स्ट स्टेज में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से है कि भाई बिजली का लाइन, पानी की सप्लाई, वर्कर्स आएंगे सर्विसेज के लिए या फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उनके लिए रहने का जगह, वो जो रहने का जगह होगा उसमें क्या सुविधाएं पॉसिबल है नहीं है, कितना किस तरीके का मेडिकल सपोर्ट है, अगर इस बिजनेस में कुछ अगर रिस्की प्रोडक्ट चल रहा है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके स्ट्रक्चर ही बहुत फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या दूसरे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, उसको हैंडल करने के लिए किस तरह के सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं, ये सारी चीजें ही हमें दर्शाता है। और इसी चीजें से एक बिजनेस पर्सन को पता चलता है कि भाई इस स्टेट में काम करना मुनासिब है या इसमें मुनासिब नहीं है। जी
1: अनुकूलता की बात जहां आती है, वहां एक तरह से अगर ये कहें तो इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों के बीच में, स्टेट्स के बीच में एक प्रतिस्पर्धा भी हो सकती है। हालांकि ये बहुत हेल्दी कंपटीशन भी हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें कि क्या ये सूचकांक में आगे बढ़ने के लिए या बिल्कुल ऊपर जाने के लिए एक रेस टू द बॉटम जिसे कहें, रेस टू द बॉटम का मतलब ये है कि क्या स्टेट्स ऊपर पहुंचने के लिए सूचकांक में कुछ ऐसे अनसस्टेनेबल फिस्कल इन्वेस्टमेंट या इंसेंटिव नहीं देंगे जो कि एट द कॉस्ट ऑफ लेबर या एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स होगा? आपको क्या लगता है कि क्या इसमें कुछ कहीं पर ऐसी कुछ गुंजाइश बन सकती है जहां पर कि राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए कुछ ऐसे बहुत ही अनसस्टेनेबल फिस्कल इंसेंटिव दे देंगे जिसमें कि एट द कॉस्ट ऑफ लेबर या एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स होगा?
0: हम अगर देखें तो राज्यों में जो टैक्स की जो स्टेट लेवल टैक्सेस है, मैं म्युनिसिपल लेवल जो लेवीज है उसको मैं इससे अलग रख रहा हूँ, स्टेट लेवल टैक्सेस है उसको करीब करीब इक्वलाइज कर दिया गया है जीएसटी के चलते। अभी किसी भी राज्य के लिए जीएसटी के अलावा कोई दूसरा सपोर्ट मैकेनिज्म देना लगभग असंभव है। और चूंकि जीएसटी इज अ नेशनल लेवल, तो जो भी स्टेट जो भी करेंगे वो जीएसटी के तहत ही आएंगे, तो एक तो वो चीज है। दूसरी तरफ है इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स वगैरह, ये सारे टैक्सेस भी राज्य नहीं केंद्र सरकार तय करते हैं। कस्टम्स ड्यूटी भी राज्य सरकार नहीं स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं। कुछ कॉमोडिटीज ऐसे हैं जिनके कस्टम्स ड्यूटी पर राज्य का बनता है, तो उस पर जरूर कुछ कुछ कर सकते हैं। बट लेकिन स्मार्ट स्टेट्स वही हैं जो टैक्सेस को इस तरह से चलाते हैं ताकि अपना बजट भी सही रहे और आगे जिसे कहते हैं रेस टू द बॉटम का गुंजाइश ना आए। तो ये तो रही फिस्कल चीजों की बातें अगर हम इसको छोड़े। अगर हम दूसरी तरफ देखें कि बाकी और क्या चीजें हो सकता है, किसी भी इंटरप्राइज को, किसी भी कंपनी को, किसी भी छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, खासकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की ही बात करें, तो किसी भी

0: एंटरप्राइज को चार चीजों की जरूरत होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एक रिस्क कवर। अगर हम इन चारों चीजों को अगर हम एक एक करके देखें, लैंड में इनफैक्ट इसमें तो प्रतिस्पर्धा उल्टा होना चाहिए। ज्यादातर राज्यों में अभी भी लैंड मामले में बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस है। किसी भी राज्य में आप भारत में पहुंच जाइए, जमीन खरीदना किसी भी इंडस्ट्री के लिए और खासकर ये स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत बड़ा बाधक होता है। बड़े इंडस्ट्रीज तो अपना लॉयर्स लगा के ये लगा के वगैरह करके निकल जाएंगे, लेकिन छोटे जो उद्योग है, खुद जो उद्योग है, जो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि छोटे उद्योग जो होते हैं उनके लिए शहर से दूर बैठ के कोई काम करना असंभव है। उनको शहर के पास ही नहीं, शहर में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास वो उनका वो टर्नओवर में उनके पास कैपेसिटी नहीं होगा कि वो अपना चीज लेकर शहर तक जाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन किसी भी शहर में, राज्य में, अगर कितना बारीकी से वो इन चीजों को देखे हैं, उस पर काफी संदेह है। राज्य लैंड इज समथिंग जिस पर लोग स्टेट्स ने अटेंशन नहीं दिया है, और बहुत सारे वजह से इसको इस पर काम करना बहुत जरूरी है। सो इन्वेस्टर फ्रेंडली इंडेक्स में एक ये चीज उभर के सामने आता है कि लैंड इश्यूज में स्टेट्स ने कितना काम किए हैं, और आप देखेंगे कि जिस स्टेट्स ने काम किए हैं, थोड़ा बहुत भी अगर काम किए हैं, तो वहां पे स्मॉल इंडस्ट्रीज पहुंच जाते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज की सक्सेस या फेलियर में लैंड का अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। दूसरा होता है लेबर। हमारे देश में इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि औसतन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे देश में हर टेक्सटाइल यूनिट में एवरेज एम्प्लॉयमेंट इज 1.5, यानी कि सिर्फ आदमी खुद और किसी से पार्ट टाइम हेल्प ले रहा है, बस यही है इंडस्ट्री कंपनीज में एम्प्लॉयमेंट का चित्र। और वो चित्र इसलिए है क्योंकि लेबर को इम्प्लॉय करना, लेबर को किसी काम में रखना हमारे लिए इतना दुष्कर बना हुआ है। और इसीलिए में ये भारत सरकार की अभी का जो पहल लेबर कोड्स, जो चार लेबर कोड्स आए हैं, वो एक बहुत ही बड़ा सुदूर प्रसारी सुदूर काम है कि उसने काफी हद तक ये लेबर लॉस को रिलैक्स किए हैं। अभी भी देखिए, जैसे हमारे देश में कोई, जैसे टेक्सटाइल की हम बात कर रहे थे या दूसरे इस तरह के यूनिट्स में, लोगों की जरूरत होती है। मतलब अगर यूनिट अगर सच में अगर कामकाजी का हो तो करीब 10 से 15 हजार लोगों की जरूरत होती है एक यूनिट में। 10 से 15 हजार से नीचे कोई यूनिट चल ही नहीं सकता है अगर वो सच में अगर एक्सपोर्ट मार्केट में चलेंगे। आप सोचिए 10 से 15 हजार लोग, कितने एम्प्लॉयमेंट, कितना बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र खुल जाता है। लेकिन अभी भी भारत सरकार के उद्योग के बावजूद रूल ये है कि सिर्फ कि जिस यूनिट में 300 लोग हैं, यानी कि रिलैक्सेशन दिया गया है कि अप टू 300 पीपल का हायर तक रूल्स रिलैक्स किए गए हैं, लेकिन 300 से ऊपर जाते ही रूल्स काफी कठिन है। तो अब भारत सरकार की तरफ से प्रॉब्लम यह है कि भारत सरकार सिर्फ यहीं तक कर सकते थे, लेकिन इसके आगे कि 300 तक इंडिया गवर्नमेंट ने कर दिया है, केंद्र सरकार ने कर दिया है, तो आगे चल के जो रिलैक्सेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को करना है।
1: बिल्कुल।
0: अब हम बात कर रहे हैं 10,000 या 15,000 लोग जैसे लोगों के एम्प्लॉयमेंट का, वहां पे 300 लोग आए या ना आए उसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यही सारे जो रिलैक्सेशन है ये बहुत बड़ी जरूरी है, तो एक वो बड़ी चीज है। तो ये रेस टू द बॉटम नहीं, ये तो रेस टू द पीक ऑफ प्रॉस्पेरिटी है अगर स्टेट्स अगर इन चीजों को समझे। तो एक हुआ लैंड, दूसरा हुआ लेबर, तीसरा है कैपिटल। कैपिटल के मामले में मैं समझता हूँ कि स्टेट्स को एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कैपिटल ज्यादातर आते हैं बैंक से या बड़े बड़े कंपनी से, एनबीएफसी से, जिन पर राज्यों का बहुत ज्यादा हाथ नहीं होता है। हालांकि वहां भी कुछ कुछ काम कर सकते हैं, जिसे कहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन, वो जरूर दे सकते हैं। दूसरे जैसे फ्रीबीज वगैरह आपने टिप्पणी किया और वो बात सही है कि वो फ्रीबीज वगैरह देने के बजाय अगर इंटरेस्ट सबवेंशन दे तो बहुत काम हो सकता है। एक पॉजिटिव चीज जो स्टेट्स ने किए हैं, कुछ कुछ स्टेट्स ने किए हैं, वो है कि वुमेन ट्रेवल बहुत सारी जगह पे उसको फ्लेक्सिबल कर दिए हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस में। अब जैसे बिहार में अभी शुरू हो गया है पिंक बसेस, बाकी बहुत सारे स्टेट्स में भी ये कदम लाया जा रहा है। दिल्ली में भी शुरू हुआ है कि वुमेन के लिए एक फ्री ट्रेवल का एक प्रोग्राम चल पड़ा है बहुत सारे स्टेट्स में, और वो बहुत अच्छा चीज है कि वुमेन को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो खर्चा है वो खर्चा कम हो जाए। लेकिन साथ में चीज है सिक्योरिटी, कि वुमेन जब शाम को ऑफिस घर से फैक्ट्री से आएंगे तो उस वक्त उनको सिक्योरिटी कहां तक मिलता है। अब हर वुमेन के पीछे तो एक पुलिस पर्सन नहीं खड़ा सकता है ना, लेकिन ओवरऑल सिक्योरिटी का जो एनवायरमेंट है वो सिक्योरिटी का एनवायरमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। और ये तो केंद्र सरकार नहीं कर सकते ना, ये तो राज्य सरकार को करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा सिक्योरिटी का एस्टेब्लिशमेंट पुलिस में किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है, ताकि वुमेन वर्कफोर्स काम में कर सके। ग्राउंड रियलिटी की आप जो बात कर रहे थे बहुत सही है कि ग्राउंड बहुत सारे स्टेट्स

0: अपने इस मामले में बहुत अच्छे अच्छे कदम अपनाए हैं और इस वजह से उस स्टेट्स में वुमेन एम्प्लॉयज का संख्या एकदम जिसे कहते हैं तेजी से आगे बढ़ा है। मैं एक एग्जाम्पल दूं दो स्टेट्स का, गुजरात और तमिलनाडु, इन दोनों स्टेट्स में वुमेन सिक्योरिटी इतना स्ट्रांग किया गया है, इन दोनों स्टेट्स में वुमेन एम्प्लॉयमेंट और खासकर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी जहां पे वुमेन की जरूरत खास ज्यादा होती है, सेमीकंडक्टर से बोलिए या इवन सिंपल घड़ी मैन्युफैक्चरिंग, वॉच मैन्युफैक्चरिंग में बहुत जरूरत होती है, तो वहां पे वो लोग कर पाए हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव प्रोवाइडेड कंसिस्टेंट लेवल ऑफ वुमेन सिक्योरिटी। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लैंड डेवलप कैपिटल रिस्क वाली चीज हम बाद में बात कर सकते हैं, बट ये तीनों चीजों में ही अगर स्टेट्स अगर ध्यान दे तो बहुत कुछ अट्रैक्टिव सॉल्यूशंस उनके सामने निकल के आएंगे।
1: में अगर हम बात करें ये कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेट्स, तो नेचुरली ये होगा ही होगा इनटू टीयर्स, लाइक टॉप परफॉर्मर्स, कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो एस्पायरिंग स्टेट्स होंगे, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ऊपर के ब्रैकेट में होंगे, कुछ बीच में होंगे, कुछ नीचे होंगे। तो आपको क्या लगता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर ऐसा क्या करें जिससे कि जो एस्पायरिंग स्टेट्स हैं, जो नीचे हैं सूचकांक में, वो भी उसी जगह पर आकर के खड़े हो जाएं?
0: बिल्कुल, और इसमें सबसे बड़ी जरूरी चीज जिसका हम पहले ही जिक्र कर रहे थे कि केंद्र सरकार कर रहे हैं, नीति आयोग खासकर इसमें बहुत काफी काफी काफी अच्छे काम किए हैं। नीति आयोग ने बहुत सारे स्टेट लेवल में क्या काम सफल हुआ है, किस स्टेट में कौन सा वाला काम सफल हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा लिस्ट ही नहीं, बार बार उस लिस्ट को आगे रिवाइज करते जा रहे हैं। तो वो केंद्र सरकार से एक बहुत बड़ा सक्षम कार्यक्रम है कि नीति आयोग का जो देखें डेटा एनालिस्ट केस स्टडीज और काफी डिटेल्ड मात्रा में उन्होंने काम किया है इसमें। अभी उन्होंने म्यूनिसिपल गवर्नेंस के ऊपर भी रिपोर्ट्स निकाले हैं, इस तरह से बहुत सारे रिपोर्ट्स। दूसरी बात यह है कि स्टेट्स जब काम कर रहे हैं, जो स्टेट्स पीछे हैं, बहुत सारे टाइम में स्टेट सोचते हैं कि हमें पैसा चाहिए। इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स का जारी करने का वजह यही है। ये बात सिर्फ कैश सपोर्ट की नहीं है, इनफैक्ट कैश सपोर्ट से ये काफी दूर है। ये है टू डू स्मार्ट पॉलिसीज, जैसे स्मार्ट पुलिसिंग या स्मार्ट एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। ये कोई कैश वाली बात नहीं है, इट इज सिंपली अबाउट कि हम स्टेट्स अपना अपना जो कैपेसिटी है उसको काम में लगाएं।
1: आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी जानकारी दी, अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे नीति आयोग का निवेश अनुकूलता सूचकांक और राज्यों में प्रतिस्पर्धा और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शुभमय भट्टाचार्य जी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
5: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

दिल की बातों का नजराना लेकर हाजिर है आपकी दोस्त विजया जैन। तो स्वीकारें मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, प्यार की दुनिया कितनी खूबसूरत है ये बताने की आवश्यकता नहीं। सच कहें तो जब से प्यार आपकी जिंदगी में आ जाता है ना, आपकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। हर लम्हा बस उनका ही ख्याल रहता है, उनकी वो बातें, उनका वो मुस्कुराना और हर छोटी बात पर हमारा ख्याल रखना, ये सब हमारे दिल को एक अजीब सा सुकून देते हैं। सच कहें तो ऐसा लगता है कि ईश्वर ने उन्हें सिर्फ हमारे लिए ही बनाया है। जब वो साथ होते हैं तो दुनिया में किसी डर का एहसास नहीं होता और उनके पास होना सबसे ज़्यादा सुकून देता है। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती

मुझे तुमसे कितना प्यार है। मेरी सुबह तुम्हारे ख्याल से शुरू होती है और मेरी रात तुम्हारी यादों के साथ ख़त्म होती है। अब तो आईने में भी मुझे तुम्हारा चेहरा कम और अक्स ज़्यादा नज़र आता है। तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी इबादत भी बन चुके हो।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी यानी AIC द्वारा मध्य प्रदेश के आगरमालवा, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, भिंड, भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, डिंडोरी, गुना, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी, मैहर, मंडला, मंदसौर, मऊगंज, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, पांडुर्णा, पन्ना, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, मक्का बाजरा, अरहर, तुअर, ज्वार, कोदो कुटकी, मूंगफली, तिल, कपास, मूंग, उड़द की फसल का बीमा किया जा रहा है।
3: किसी भी प्रकार की जानकारी, मार्गदर्शन, आवेदन से जुड़ी सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 1-4447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है।
2: 7-0-6-5-5-1-4-4-4-7 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल हाय या नमस्ते लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलें, क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। सुरक्षित फसल, खुशहाल किसान। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।

जानते हो, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, हर छोटी सी बात में खुशी सी घुल गई है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि तुम्हें कैसे बताऊँ कि तुम मेरे लिए कितने खास हो। कभी-कभी शब्द भी कम पड़ जाते हैं, पर तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल जैसे ठहर सा जाता है। मुझे तुम्हारी हर वो बात पसंद है जो सिर्फ तुमसे जुड़ी है। तुम्हारा मुझे देखना, मेरी बेवकूफियों पर हंसना, मेरी छोटी छोटी शरारतों पर मुस्कुराना और हर हाल में मेरा साथ देना। आज बस मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारी और मेरी खुशी बनकर।

सच पूछो ना तो तुम्हारे बिना मेरी दुनिया कुछ भी नहीं। तुमसे दूरदानी की सोच भी मुझे अंदर तक डरा देती है। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। तुम्हारे पास होने से ही मुकम्मल हूँ मैं। दूर जाने की सोचूं तो अंदर से बिखर जाती हूँ। जुदा होने का ख्याल तो बहुत दूर की बात है। तुम बिन जीने की सोचूं तो सांसें थम जाती है। जिस्म से रूह अलग हो जैसे, तुमसे दूर होने का ख्याल भी वैसा ही दर्द देता है। पता नहीं क्यों, जब भी तुम्हारे बिना जीने का ख्याल आता है, मेरी आंखें खुद ब खुद भर जाती है। तुम मेरी वो आदत हो जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहती। तुम और सिर्फ तुम ही तो प्यार हो।

सुनिए साहिब, आप जानते हैं ना कि मैं तो बहुत हिम्मत वाली हूँ, लेकिन बात जब तुमसे दूर जाने की आती है तो मेरी सारी हिम्मत टूट जाती है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद ही नहीं हो। लोग कहते हैं कि दूरियों से प्यार बढ़ता है, लेकिन मैं वो दूरी सहने की हौसला ही नहीं रखती जो तुमसे दूर जाने से मिले। तुम्हारे पास आकर जो सुकून मिलता है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं है। मेरा तो हर दिन तुमसे शुरू और तुम पर ही खत्म होता है। तुमसे दूर जाना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए तुम सिर्फ मेरे हो और हमेशा मेरे रहना, और इसीलिए अभी ना जाओ हमें छोड़कर।

जानते हो, तुम मेरे लिए सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि मेरे जीने की वजह भी हो। जैसे सांसों के बिना जिंदगी मुमकिन नहीं, वैसे तुम्हारे बिना भी मेरा कोई अस्तित्व नहीं। दूरी का ख्याल आए तो दिल सहम जाता है, तुम्हारे बिना हर लम्हा जैसे ठहर जाता है। अलग होने की बात तो बहुत दूर है, तुमसे जुदा होकर तो मेरा वजूद ही बिखर जाता है। खुदा से हर दुआ में बस तुम्हें मांगा है, तुम्हारी चाहत को ही अपना खुदा माना है। मरते दम तक ना छोड़ेंगे साथ तुम्हारा, हमने तो तुम्हारे साथ ही जीना और मरना जाना है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु, प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान और अमेरिका का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
2: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती है।

0: सेम सिचुएशन वैली में।
1: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
2: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमीदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। कल की 2898 AD को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना UBT सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
3: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी बसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरो स्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
4: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम वन में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम वन से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
0: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
1: होर्मुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमरीका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसैलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले 2 दिन में डिसैलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसैलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंताएं बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के 2 विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में 1 व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पत्नी चिनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चिनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थीं। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं। श्री देवेगौड़ा HD कुमारस्वामी और पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम को शहीद के बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन के को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने

0: पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य पर अमरीका और ईरान का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस्ड। Yami Gautam wins Best Actress Award for Article 370, Mammootty for Brahmayugam and Kartik Aaryan for Chandur Champion share Best Actor Award. 20 rebel TMC MPs who joined National Citizens Party of India get Lok Sabha Speaker's approval for separate seating in the House. Massive fire at a firecracker factory in Ahmedabad claims 5 lives. Prime Minister Narendra Modi expresses grief. US-Iran fighting over Strait of Hormuz escalates with attacks on key infrastructure and military targets. Olympic medalists Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain to be India's flag and baton wearers at opening ceremony of Commonwealth Games in Glasgow. And in FIFA World Cup, France to clash with England for third place at Miami Stadium tonight. Hindi film Article 370 has won the Best Film Award in the 72nd National Film Awards. Announcing the awards today in New Delhi this evening, Chairman of Jury Feature Film Jairaj said Mammootty and Kartik Aaryan have won the National Film Awards in Best Actor category for their movies Brahmayugam and Chandur Champion. He said Yami Gautam will be given the Best Actress Award for her performance in the film Article 370.
2: Best actress in leading role, Article 370, Hindi film. Renowned performance that portrays a law enforcement agent's unwavering pursuit of truth and justice with sensitivity, courage and compassion. A performance that leaves a profound and lasting impact. Actress Yamini Gautam. Best actor in a leading role, Shade, Chandu Champion, Hindi, for a performance that transcends the conventions of a sports biopic, bringing an unsung hero story to life with dignity, sincerity and lasting impact.

0: भाभी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की है, संगीत चित्रगुप्त का और गीत के बोल लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: तलत महमूद की आवाज़ में अभी आपने सुना आरजू फिल्म का गीत, संगीत अनिल बिजवास का था।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे हैं अमीर आदमी गरीब आदमी फिल्म का गीत, गीतकार निदा फाजली, संगीत आर डी बर्मन का।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही चित्रगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर है, इंदौर केंद्र है। रात्रि के 9:30 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से होगा।
1: राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
2: साइंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के इस महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में स्मृति शेष में नमन, फिल्म जगत की कुछ ऐसी हस्तियों को जो इस बीच हमसे बिछड़ गईं, जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशक विजया मेहता।
1: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, सवाल उठाना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़ी काबिलियत के साथ किया।
0: जानी माने फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी, जाने माने फिल्मकार, अभिनेता, गायक और संगीतकार के भाग्यराज, और जाने माने फिल्म निर्देशक, निर्माता, लेखक और अभिनेता भारती राजा।
2: हे

सबसे पहले संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष हैं। 31 जुलाई 1880 को उनका जन्म हुआ था। जुलाई का महीना प्रेमचंद की याद का महीना होता है, इसलिए

संपादकीय में आज हम चर्चा कर रहे हैं उन फिल्मों की जो प्रेमचंद की कृतियों पर आधारित हैं। प्रेमचंद का लेखन भारतीय समाज, भारतीय ग्रामीण जीवन, किसानों की पीड़ा और स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का बाकायदा यथार्थवादी चित्रण करता है। आज भी प्रेमचंद उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं। शायद यही वजह है कि विभिन्न भाषाओं के फिल्मकार अपनी फिल्मों के लिए प्रेमचंद की कृतियों को चुनते रहे हैं। उनकी कृतियों पर बनी फिल्मों की बातें हम आगे करेंगे, पर पहले एक दिलचस्प बात। मुंशी प्रेमचंद स्वयं भी मुंबई सिनेमा जगत से जुड़े रहे थे। असल में हंस और जागरण पत्रिकाओं के संपादन की वजह से उन्हें जो नुकसान हुआ, उसके बाद उन्होंने फिल्मों के लिए लिखने और कमाई करने का मन बनाया था। सन 1934 में आर्थिक तंगी के चलते वे बंबई आए और फिल्म कंपनी अजंता सिनेटोन में लेखक के रूप में काम करने लगे। यहां उन्होंने दो फिल्में लिखी, मिल मजदूर और नवजीवन। अपने समय के विख्यात फिल्मकार नानू भाई वकील ने 1934 में उनके प्रख्यात उपन्यास सेवा सदन पर इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आई थी। उन्हें फिल्म जगत का काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपना अनुबंध तक पूरा नहीं किया और साल भर के अंदर ही बनारस लौट गए। मशहूर तमिल फिल्मकार कृष्ण स्वामी सुब्रमण्यम ने सन 1938 में सेवा सदन पर तमिल भाषा में इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी। हिंदी फिल्म के उलट तमिल फिल्म मूल कृति के प्रति ज्यादा ईमानदार थी। इस फिल्म में प्रसिद्ध गायिका एमएस सुब्बलक्ष्मी ने नायिका सुमन की भूमिका निभाई थी। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि पर इसी नाम की फिल्म बनी सन 1941 में। मुंशी प्रेमचंद भले ही वापस लौट गए हों, लेकिन मुंबई में उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1959 में प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा पर कृष्ण चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई, हीरा मोती। इस फिल्म में बलराज साहनी और निरूपा राय मुख्य भूमिका

मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति गोदान सन 1936 में प्रकाशित हुई थी। इस उपन्यास पर सन 1963 में इसी नाम की फिल्म आई, जिसे त्रिलोक जेटली ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थीं राजकुमार, कामिनी कौशल, शशिकला और महमूद की। इस फिल्म के गाने अनजान ने लिखे और संगीत दिया जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने।

सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी ने प्रेमचंद के उपन्यास गबन पर इसी नाम की फिल्म बनाई थी। कलाकार थे सुनील दत्त, साधना, मीनू मुमताज, लीला मिश्रा और कन्हैया लाल वगैरह। संगीत शंकर जयकिशन का था।

0: बांग्ला के महानतम फिल्मकारों में गिने जाते हैं सत्यजीत रे। उन्होंने पूरे करियर में सिर्फ दो हिंदी फिल्में बनाई और संयोग देखिए कि दोनों ही फिल्में मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित थीं। सन 1977 में सत्यजीत रे ने बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये सत्यजीत रे की पहली हिंदी फिल्म थी जो प्रेमचंद की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। इसमें अवध के दो कुलीन मित्रों मीर और मिर्जा की कहानी है, जो शतरंज में इतने डूबे रहते हैं कि अंग्रेजों के हाथों अपने राज्य के पतन की परवाह तक नहीं करते। मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार, सईद जाफरी, अमजद खान और शबाना आजमी वगैरह।
1: प्यादे तो ठीक है
2: जी,
1: तो वजीर और बादशाह भी ठीक है, लेकिन ये पीले घोड़े और रुख में गड़बड़ ना कीजिएगा।
2: तो सुन लीजिए ना,
1: पीला टमाटर, नींबू घोड़ा, मिर्ची रुख।
0: सत्यजीत रे की दूसरी हिंदी फिल्म थी प्रेमचंद की कहानी सतगति पर आधारित इसी नाम की फिल्म। इस फिल्म में ओमपुरी, स्मिता पाटिल और मोहन अगाशे ने अभिनय किया था।
3: विजया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, आप दया करके चले चलते और इसका साइड छगन बिचार।
4: क्या खड़ा हो गया?

0: अब आगे आ गया, मैं यहाँ खाली बैठा हूँ कि जब जो जहाँ बुलाए उसी दम चल पड़ो।
1: ये कहानी जातिगत शोषण की एक क्रूर और मार्मिक कथा है। बांग्ला के दिग्गज निर्देशक मृणाल सेन ने प्रेमचंद की मशहूर कहानी कफन को आधार बनाकर 1977 में तेलुगु की एक फिल्म बनाई, ओका उरी कथा। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। छोटे पर्दे पर मुंशी प्रेमचंद की कहानियां खूब लोकप्रिय हुई। दूरदर्शन के सुनहरे दिनों में उनके उपन्यास पर आधारित एक धारावाहिक आया निर्मला, जिसे बहुत पसंद किया गया। इसके अलावा गुलजार ने दूरदर्शन पर प्रेमचंद की चुनिंदा कहानियों को लेकर एक धारावाहिक बनाया, तहरीर मुंशी प्रेमचंद की। ये सीरियल भी काफी चर्चित रहा। इसके तहत पूस की रात, ईदगाह, ठाकुर का कुआं और नमक का दरोगा जैसी कई कहानियों को छोटे पर्दे पर शिद्दत से पेश किया गया था। भले ही प्रेमचंद को जीते जी बंबई की फिल्मी दुनिया रास नहीं आई, पर कमाल की बात यह है कि उनके जाने के बाद सत्यजीत रे और मृणाल सेन जैसे कालजयी फिल्मकारों ने उनकी कहानियों को वो सम्मान और गहराई दी जिसकी वे हकदार थी। मुंशी प्रेमचंद की स्मृति को हमारा नमन। ये था संपादकीय मुंशी प्रेमचंद की कृतियों पर बनी फिल्में। और अब स्मृति शेष। स्मृति शेष। स्मृति शेष में आज हम चार हस्तियों को नमन करने जा रहे हैं जो हमसे बीते दिनों बिछड़ गईं। सबसे पहले नमन करते हैं जानी मानी अभिनेत्री और फिल्मकार विजया मेहता को, जिन्होंने 30 जून को इस असार संसार से विदा ली। बरसों पहले की बात है, तकरीबन 90 का दशक, दूरदर्शन पर एक सीरीज आती थी लाइफलाइन। अस्पतालों के जीवन, डॉक्टरों और इंटर्न्स के जूझने और मरीजों से जुड़े अनुभवों पर केंद्रित था ये धारावाहिक। इसकी निर्देशक थी विजया मेहता। एक से बढ़कर एक कलाकार थे इस सीरीज में। तन्वी आजमी, के रैना, मोहन जोशी, शफी नामदार, इला अरुण, पंकज कपूर, ए के हंगल जैसी नामी हस्तियों का जुड़ाव था इस धारावाहिक से। विजया मेहता की पहचान सिर्फ लाइफलाइन टीवी सीरियल नहीं है, उन्होंने भारतीय फिल्म जगत को कुछ कालजयी और बेहद कलात्मक फिल्में दी हैं, पिस्टन जी, राव साहब और हमीदा बाई की कोठी वगैरह। उन्होंने रुपहले पर्दे पर कई बार अभिनय किया, खासतौर पर श्याम बेनेगल की फिल्म कलयुग में, गोविंद नेहलानी की फिल्म पार्टी में दमयंती राणे की उनकी भूमिका सबको याद है। उनकी निर्देशित फिल्म राव साहेब सन 1985 में आई थी और जयवंत दलवी के मराठी उपन्यास पर आधारित थी। इसी उपन्यास पर जयवंत दलवी ने बैरिस्टर नाम का एक नाटक भी रचा था। इस फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। विजया मेहता को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इसी फिल्म के लिए श्याम भूतकर को मिला सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1988 में विजया मेहता ने पिस्टन जी नामक फिल्म बनाई। असल में ये फिल्म मुंबई में 50 और 60 के दशक में मौजूद पारसी समुदाय की कहानी है।
2: तूने जरू की सूरत देखी है? उसकी आवाज सुनी है? 5 वर्ष के अंदर जरू की क्या हालत बना दी तूने? बच्चा मर गया, पप्पा स्ट्रोक थी बीमार, अरे तू सुख नहीं बात करे? उस औरत ने तेरे को इतना सेल्फिश बना दिया है, पन खुदा सब देखता है, याद रख जे।
1: इस फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम का राष्ट्रीय पुरस्कार।
3: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी,
1: जाने माने फिल्मकार और अभिनेता अमोल पालेकर
3: से दिग्गज कहना भी कम होगा। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया, अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, अलग किस्म के सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया। मैं इतना ही कहूंगा कि विजया जी मेरी सीनियर थी, क्योंकि मैं सत्यदेव दुबे ग्रुप से था, उसको राइवल ग्रुप माना जाता था। मेरी और विजया जी की एक बड़ी प्यारी सी दोस्ती थी, एक बहुत अच्छा गहरा रिश्ता था।
1: विजया मेहता को हमारा विनम्र नमन। जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज नेहलानी का 4 जून को निधन हो गया। पहलाज नेहलानी की कहानी संघर्ष की दास्तान है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1948 को सिंध पाकिस्तान में हुआ था। विभाजन के बाद परिवार सब कुछ छोड़कर आ गया। पहलाज नेहलानी का बचपन मुंबई के कोलाबा में बीता। घर की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए पहलाज नेहलानी ने पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे काम पकड़ लिए। फिल्मों से बचपन से उन्हें लगाव रहा था। वे कोलाबा की टॉकीजों के बाहर घंटों खड़े रहते। जेब खर्च के लिए वो कभी कभी फिल्मों के टिकट ब्लैक किया करते थे। इसी रास्ते उनकी मुलाकात सिनेमा जगत के कुछ लोगों से हुई और वे फिल्म संसार में बतौर क्लैपर बॉय शामिल हो गए। यहां उन्हें समझ में आया कि अगर अच्छी जिंदगी बितानी है तो फिल्मों से जुड़ा कोई बिजनेस करना होगा। धीरे धीरे पैसे जमा करके उन्होंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। वे छोटी फिल्मों के राइट्स खरीदते और उन्हें छोटे थिएटर्स में लगवाते। कुछ ही सालों में पहलाज नेहलानी बंबई और गुजरात सर्किट के एक बड़े वितरक बन गए। सन 1982 में उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी शुरू की, चिराग दीप इंटरनेशनल। उनकी पहली फिल्म थी हथकड़ी, साल 1982। हथकड़ी कामयाब रही और पहलाज नेहलानी फिल्म जगत के दिग्गज प्रोड्यूसर्स में शामिल हो गए। सन 1985 के आसपास उन्होंने विरार के एक दुबले पतले लड़के को देखा जो कमाल का डांस करता था। उसका नाम था गोविंदा आहूजा। पहलाज नेहलानी ने इस नौजवान को लेकर 1986 में बनाई फिल्म इल्जाम। इस फिल्म ने गोविंदा को सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ कई फिल्में की। 1992 शोला और शबनम, 1993 आंखें,
4: लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता।
1: पहलाज नेहलानी की प्रमुख फिल्में हैं आग ही आग, पाप की दुनिया और अंदाज 1994।
5: किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो।
1: पहलाज नेहलानी भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे। विनम्र नमन। 27 जून को हमसे विदा हो गए तमिल सिनेमा के जाने माने फिल्मकार, गायक और संगीतकार के भाग्यराज। भारतीय सिनेमा, विशेषकर तमिल और हिंदी सिनेमा के इतिहास में के भाग्यराज एक वन मैन आर्मी रहे। एक ही समय में फिल्म के लेखक, निर्देशक, अभिनेता और संगीतकार, सब कुछ एक साथ। मणिरत्नम से लेकर शोमैन राज कपूर तक पटकथा की उनकी जादुई समझ का लोहा मानते थे। जब रजनीकांत और कमल हासन अपनी अपनी स्टाइल से अभिनय की दुनिया पर राज कर रहे थे, तब के भाग्यराज एक साधारण, सीधे साधे और डरपोक आम आदमी के रूप में तमिल सिनेमा में दर्शकों के दिल में उतर गए। के भाग्यराज का जन्म 7 जनवरी 1993 को तमिलनाडु के इरोड जिले के एक साधारण गांव में हुआ था। भाग्यराज का मन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वे अक्सर स्कूल से भागकर सिनेमा घरों में पाए जाते थे। उनकी इस आदत से परेशान होकर उनके पिता ने एक बार हताश होकर कह दिया था, ये लड़का जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाएगा। पिता की ये कड़वी बात उनके दिल को चुभ गई। उन्होंने ठान लिया कि वे फिल्मी दुनिया में नाम कमाकर सबको दिखा देंगे। कॉलेज के दिनों में असफल होने के बाद अपनी जेब में कुछ रुपए और दिमाग में ढेर सारी कहानियां लेकर वे चेन्नई आ गए। यहां भाग्यराज ने कई हफ्तों तक निर्देशकों के दफ्तरों के चक्कर काटे। उन दिनों तमिल सिनेमा में एक नए निर्देशक अपनी यथार्थवादी फिल्मों से धूम मचा रहे थे। नाम था भारती राजा। भाग्यराज जब भारती राजा से काम मांगने गए तो उन्होंने कोई भारी भरकम डायलॉग नहीं सुनाया। उन्होंने भारती राजा को अपने गांव के किरदारों और वहां के लोगों के बात करने के अजीबोगरीब लहजे को इतने मजेदार ढंग से सुनाया कि भारती राजा हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने तुरंत के भाग्यराज को अपना सहायक निर्देशक बना दिया। के भाग्यराज ने भारतीय सिनेमा की कल्ट फिल्म 16 वैथिनीले में बतौर सहायक निर्देशक काम किया। इस फिल्म के कलाकार थे कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा रोल भी किया था। 2 सालों के अंदर भाग्यराज ने अपनी काबिलियत साबित की और साल 1979 में फिल्म सुवरिल लाद सिथी रंगल में बतौर निर्देशक और अभिनेता के रूप में एक शानदार शुरुआत की। ये फिल्म सुपरहिट रही। अस्सी के दशक में भाग्यराज का नाम फिल्म हिट होने की गारंटी बन गया था। उन्होंने तमिल सिनेमा को दो ऐसी फिल्में दी जो आज भी फिल्म मेकिंग के छात्रों को दिखाई जाती हैं। मौन गीतोंगल सन 1981 में आई ये फिल्म पति पत्नी के अहंकार पर बनी एक परिपक्व फिल्म थी।

सन 1987 में आई अनिल कपूर की फिल्म जुदाई के कई हिस्से इसी फिल्म से प्रेरित थे। सन 1983 में के भागीराज की फिल्म आई मुंथा नई मुदीचू। एक शिक्षक और गांव की शरारती लड़की की इस कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया।

0: उनकी कुछ कामयाब फिल्में हैं चिन्ना वीडू और इधू नम्मा आलू। बहुत कम लोग जानते हैं कि 80 और 90 के दशक की हिंदी सिनेमा की कई हिट फिल्में के भाग्यराज के दिमाग की उपज थी। अमिताभ बच्चन के डबल रोल वाली फिल्म थी आखिरी रास्ता। ये फिल्म असल में के भाग्यराज की फिल्म ओरू कैथियन डायरी की आधिकारिक रीमेक थी। इस फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और निर्देशन तीनों की बागडोर खुद के भाग्यराज ने संभाली थी।
1: गोरी

हरियाणा की फिल्म राजा बाबू के भागीराज की सुपरहिट तमिल फिल्म रासुकुट्टी की रीमेक थी। जितेंद्र की फिल्म मास्टर जी के भागीराज की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुथानई मुदुचू पर आधारित थी। 27 जून 2026 को भारतीय सिनेमा का ये चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। विनम्र नमन।

के भागीराज को याद करते हुए हमने जिक्र किया उन्हें पहला मौका देने वाले निर्देशक भारती राजा का। कैसी विडंबना है कि इसी महीने भारती राजा भी हमसे बिछड़ गए। 10 जून को उन्होंने आखिरी सांस ली। भारती राजा भारतीय सिनेमा के उन गिने चुने निर्देशकों में से एक हैं जिन्हें 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। महान निर्देशक मणिरत्नम से लेकर पटकथा के जादूगर के भाग्यराज तक बहुत सारी फिल्मी हस्तियां हैं जो भारती राजा को अपनी प्रेरणा मानती रहीं। भारती राजा तमिल सिनेमा के वो क्रांतिकारी फिल्म मेकर हैं जिन्होंने बंद स्टूडियो के शीशों को तोड़कर फिल्मों को गांव की असली मिट्टी, खुली हवा और यथार्थ की खुशबू से सराबोर कर दिया था। 70 के दशक के दक्षिण भारतीय सिनेमा का मतलब था भव्य सेट और स्टूडियो के भीतर पूरी शूटिंग।

लेकिन भारतीय राजा ने आकर तमिल सिनेमा का पूरा भूगोल बदल दिया। भारतीय राजा का जन्म 17 जुलाई 1941 को तमिलनाडु के थेनी जिले के एक खूबसूरत गांव अल्ली नगरम में हुआ था। उनका असली नाम था चिन्नासामी। गांव के खेतों, तालाबों, लोकगीतों और ग्रामीण संस्कृति ने उनके मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ी। वे अक्सर गांव के लोगों के बर्ताव को बहुत बारीकी से देखते थे। फिल्मों में आने से पहले वे स्वास्थ्य विभाग में एक क्लर्क की नौकरी पर थे, पर उनका दिल थिएटर में धड़कता था। आखिरकार नौकरी छोड़कर वे चेन्नई आ गए। सन 1977 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई 16 वैथिनिले। इस फिल्म ने तमिल सिनेमा के सारे पुराने नियम तोड़ दिए। जब भारती राजा ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से आउटडोर की तो चेन्नई के कई बड़े स्टूडियो मालिकों ने कहा, ये पागल लड़का पूरी फिल्म खराब कर देगा, आउटडोर में न अच्छी लाइटिंग होती है न आवाज साफ आती है। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने इतिहास रच दिया। इस फिल्म में भारती राजा ने कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी को कास्ट किया था।

इस फिल्म में पटकथा के बेताज बादशाह के भाग्यराज उनके सहायक निर्देशक थे। भारतीय राजा की फिल्में सिर्फ गांव की खूबसूरती नहीं दिखाती, वे गांवों में फैली रूढ़िवादिता और जातिवाद पर करारा प्रहार भी करती हैं। किसक के पोगुम रेल 1978 में आई ये फिल्म एक बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी है, जो अलग अलग गांवों में सामाजिक ताने बाने और रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द घूमती है। 1978 में आई सिगप्पू रोजक्कल, ग्रामीण फिल्मों के उस्ताद भारती राजा ने सबको चौंकाते हुए कमल हासन और श्रीदेवी को लेकर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाई थी। ये फिल्म बहुत कामयाब रही। 1987 में आई वेदम पुदिथु, ये फिल्म जाति व्यवस्था और धार्मिक पाखंड पर तीव्र प्रहार करती है। तमिल सिनेमा में इतिहास रचने के बाद भारती राजा ने हिंदी सिनेमा का रुख किया। 1986 में उन्होंने बनाई सवेरे वाली गाड़ी, ये उनकी तमिल कल्ट फिल्म किसक के पोगुम रेल का हिंदी रीमेक था। कलाकार थे सनी देओल और पूनम ढिल्लो।

0: सन 1980 में भारतीय राजा ने अपनी फिल्म सिगप्पू रोज़ाक्कल का हिंदी रीमेक किया रेड रोज के नाम से।
1: हम जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी से अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते।
2: पिछले एक हफ्ते से मेरी बहन घर वापस नहीं लौट।
0: 1984 में आई आज का एमएलए राम अवतार। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शबाना आजमी ने काम किया था। 1983 में आई कुमार गौरव और पद्मिनी कोल्हापुरे के अभिनय वाली फिल्म लवर्स।

1984 में आई कानून क्या करेगा। सितारे थे सुरेश ओबेरॉय और दीप्ति नवल। भारती राजा को 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे। 1982 में फिल्म अनाथा रथम के लिए, 1986 में फिल्म मुथल मरियाथाई के लिए, 1988 में फिल्म वेदम पुदिथु के लिए, 1985 में फिल्म करुथम्मा के लिए, 1996 में फिल्म अंथी मंथराई के लिए और साल 2001 में कडाल पुक्कल के लिए। भारत सरकार ने सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें साल 2004 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। विनम्र नमन।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है देवव्रत मिश्र का सितार वादन। वाराणसी के प्रतिष्ठित संगीत घराने में जन्मे देवव्रत मिश्र ने अपनी मां प्रमिला मिश्रा से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और अपने पिता पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र के मार्गदर्शन में सितार की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार देवव्रत मिश्र ने ठुमरी परंपरा और बनारस घराने के गायकी की विशिष्ट बारीकियां अपने दादाजी ठुमरी सम्राट पंडित महादेव प्रसाद मिश्र से सीखी। इस प्रभाव ने उनके सितार वादन को एक अनूठी पहचान दी। सितार वादन की शिक्षा में पोस्ट ग्रेजुएट और गोल्ड मेडल के साथ संगीत प्रवीण देवव्रत मिश्र ICCR के सूचीबद्ध कलाकार भी हैं। उन्होंने भारत और विदेशों में कई प्रतिष्ठित मंचों पर सितार वादन की सफल प्रस्तुतियां दी हैं। इनमें तानसेन संगीत समारोह, संकट मोचन संगीत समारोह, सप्तक संगीत समारोह और अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला प्रमुख हैं। उन्होंने अमेरिका, कनाडा, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे कई देशों में अपने सितार वादन से संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया है। देवव्रत मिश्र को नेशनल यूथ फेस्टिवल अवार्ड, स्वरमणि अलंकरण, काशी रत्न संगीत शिखर सम्मान, BHU कौस्तुभ सम्मान, जर्मन बेस्ड जैज क्रिटिक अवार्ड और वर्ल्ड म्यूजिक विजनरी अवार्ड USA से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार प्रशांत मिश्र। देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का आरंभ राग जोग से कर रहे हैं। विलंबित और द्रुतगत 3 ताल में निबद्ध हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक टुनाइट वी ब्रिंग यू सितार रिसाइटल बाय देवव्रत मिश्रा। बॉर्न इनटू डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिक घराना ऑफ वाराणसी, देवव्रत मिश्रा रिसीव्ड इनिशियल म्यूजिक ट्रेनिंग फ्रॉम हिज मदर प्रमिला मिश्रा and underwent formal training in the sitar under the guidance of his father, Padmashri Pandit Shivnath Mishra. An A-grade artist of Akashwani, Devvrat Mishra received distinctive lesson of Thumri tradition and vocal style of the Banaras Gharana from his grandfather, the great Thumri exponent Pandit Mahadev Prasad Mishra. An influence that lent a unique identity to his sitar playing. Postgraduate in sitar and Sangeet Praveen with gold medal, Devvrat Mishra is also an empaneled artist of ICCR. He has delivered successful sitar performances on numerous press

0: आप सुन रहे थे राग जोग। देवव्रत मिश्र अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग गोरख कल्याण में सितार वादन। मध्य लय रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत तीन ताल में है।
1: यू जस्ट हर्ड राग जोग। देवव्रत मिश्रा इज नाउ प्रेजेंटिंग सितार रिसाइटल इन राग गोरख कल्याण। मध्य लय इज सेट टू रूपक ताल एंड द्रुत इज इन तीन ताल।

0: राग गोरख कल्याण के बाद देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का समापन दादरा ताल में निबद्ध राग मिश्र पीलू में धुन से कर रहे हैं।
1: आफ्टर राग गोरख कल्याण, देवव्रत मिश्रा इज कंक्लूडिंग हिज सितार रिसाइटल टुनाइट विथ धुन।

0: ये थी सितार पर प्रस्तुत राग मिश्र पीलू में धुन। कलाकार थे देवव्रत मिश्र। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आपके साथ तबले पर संगति की प्रशांत मिश्र ने। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर रिकॉर्ड इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: दिस वॉज धुन इन राग मिश्र पीलू प्लेड ऑन सितार बाई देवव्रत मिश्रा इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। अकम्पनींग हिम ऑन तबला वॉज प्रशांत मिश्रा। अर्लियर रिकॉर्डेड एट आकाशवाणी वाराणसी, दिस प्रोग्राम केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब समाचार दिल्ली से रिले होंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई है। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
4: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान इसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
3: ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नबीदास और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर को और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा कांडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गातात्र रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
2: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वस्त्राल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय डीआरआई ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए। इसके अंतर्गत

से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पवित्र अड़प्पा विजय अनुष्ठान आज पुरी के श्री गुंडीचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच देर रात 2:30 बजे से अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।